0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

अलयम। नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सुपाल मिश्र का अभिवादन। श्री कृष्ण एक प्रेरक व्यक्तित्व, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ऐसे महापुरुष की गौरव गाथा की पावन स्मारक तिथि है, जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानवता के कल्याण हेतु समर्पित रहा। मानवीय स्तर पर यदि विचार करें तो समग्र सृष्टि की पीड़ा को ही आत्मसात करके हुए तत्कालीन तातई युग से संघर्ष करने की प्रस्तुत हो जाते हैं। शवह से ही उन पर होने वाले प्राणातक पर्यंतों का कर्म कम विवस्तिकारिक एवं रोमांचक नहीं है। इन सब पर उनके द्वारा सशैव में ही विजय प्राप्त कर लेने का वर्णन भले ही चमत्कारिक प्रतीत होता हो, किंतु उनके ये सारे प्रयत्न तत्कालीन सत्ता को कांपा देने वाला कांतकारी के सदृश है। वर्षा के लिए इंद्र पूजा के स्थान पर वे कृषि और गोपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इनके लिए ग्रामवासियों का अपेक्षित जन सहयोग प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। शनै शनै वे बाल्यकाल में ही इतनी लोकप्रियता अर्जित कर लेते हैं जिससे मथुरा का क्रूर शासक कंस, जो उनका मामा है, भयग्रस्त हो जाता है एवं उसे उस बालक को अपने काल स्वरूप की प्रकृति दृष्टिगोचर होने लगती है। परिणाम स्वरूप भयभीत मानसिकता आक्रमों का सहारा लेते हैं। वह किसी भी प्रकार इस किशोर बालक श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए संलग्न हो जाता है। कंस आए दिन अपने प्रतीक्षित सेना अधिकारियों को छद रूप धारण करके वहां भेजने लगता है, जहां श्री कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ खेल रहे होते हैं। व्रजवासियों के स्नेहिक वातावरण में पल रहे उन निर्भय तेजस्वी बालक के समक्ष उन सैन्य अधिकारियों का सारा षष्ठयंत्र अनावृत हो जाता है एवं उन्हें मृत्यु की गोद में भी जाना पड़ता है। इस प्रकार उस समय के लोक प्रसिद्ध शक्तिशालियों के नष्ट हो जाने से किशोर कृष्ण की यश पताका संपूर्ण उत्तर भारत में फैलाने लगी है। इसके पश्चात छल पूर्वक कृष्ण को मथुरा आमंत्रित किया जाता है। वहां पहुंच करके वे राजसभा में ही सिंहासन से खींचकर भारी जन समुदाय एवं सभासदों तथा सेनाधिकारियों के समक्ष कंस का वध कर देते हैं। इससे वे लोक रक्षक के रूप में समाज के समक्ष उपस्थित दिखाई देते हैं। मथुरा के राज सिंहासन पर महाराजा उग्रसेन को पुनः आसीन कर देते थे। तत्कालीन

समाज में उनका यह निर्णय सर्वथा विलक्षण एवं विश्वकारी थे। श्री कृष्ण यदि स्वयं वहाँ के शासक बनते तो कुछ भी प्रयत्नशील नहीं था, क्योंकि अब तक की यही परंपरा थी, विजेता का राजा बनना स्वाभाविक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी द्वारा लंका का राज्य स्वयं न स्वीकार करने की एकमात्र घटना को छोड़ करके अन्य कोई घटना भारत की क्या विश्व की घटाक्रमों में कहीं न थी। श्री कृष्ण मथुरा का राज्य इस प्रकार त्याग दिए जाने पर धर्म प्राण जनता पर पुलकित होना स्वाभाविक था एवं श्री कृष्ण में राम के स्वरूप का दर्शन करना भी केवल श्रद्धा का अतिरिक्त न होकर के तत्पूर्वक एवं सुगंधता तथा इसके पश्चात के सारे घटनाक्रम उनके सर्व प्रमुख व्यक्तित्व का परिचय करते हैं। मगध के राजा जरासंध का मथुरा पर आक्रमण, श्री कृष्ण द्वारा मथुरा की सेवा को स्वयं संगठित करने से उस विशाल सामग्र्य वाला शक्तिशाली शासक को अपने नेतृत्व के परास्त करना, जरासंध के पुनः पुनः के आक्रमों एवं पराभव के घटनाओं के पश्चात श्री कृष्ण स्वयं को अपराजय के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, वे इस प्रकार से हमेशा सबके कल्याण किया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: सुप्रभात श्रोताओं, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

0: PMQT में निवेश, कैसिनो, चुनावी जांच और एड्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी. साथ ही जोरी शोंगो के इस्तीफे के बाद फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सदस्य चेतन बाबूलाल पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से अपना पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन पूछेंगे. संसद में पेश होने वाले रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाना और घातक हादसों पर सजा सख्त करना है. आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर कमेटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसरी पढ़त में के लिए आएगा. नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जीआरए से इस्तीफा देकर पुल बिहोंजे के फॉर्मिलिटों प्रोग्रेसिस एफएमपी में शामिल हो गए हैं. उनका कहना है कि ये फैसला पैसे या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करने के एक नए तरीके के उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए है. साबलुनो में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने चार चीनी मजदूरों से पूछताछ की है. मृतक आदम शेहम जुबा के परिवार का आरोप है कि मौत से पहले विदेशी मजदूरों ने उस पर हमला किया था. इस घटना और स्थानीय लोगों की असुरक्षा की भावनाओं ने नागरिकों और विदेशी श्रमिकों के बीच सह अस्तित्व पर बहस को फिर से छेड़ दिया है, जहां समाजशास्त्री राजेंद्र संतू ने श्रमिकों को स्थानीय संस्कृति और कानूनों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया है. आज 1 सितंबर से एमओआरए ने डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल और नमूनों पर 150 रुपये का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर दिया है. 1,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं पर ये शुल्क कुरियर एजेंट द्वारा वसूला जाएगा, जबकि इससे अधिक मूल्य की शिपमेंट पर यह राशि सीधे कस्टम क्लियरेंस घोषणा में शामिल होगी. एमओआरए के अनुसार इसका उद्देश्य आयातित सामानों की प्रोसेसिंग लागत को पूरा करना है. और विदेश में इंडोनेशिया ने बोर्नियो और सुमात्रा में जंगलों की आग और धुएं को रोकने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिससे ओरांगुतान का आवास नष्ट होने से उनकी प्रजाति खतरे में है. और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल. जोरदार एंटीसाइक्लोन अब मस्कोरिंस के दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है. दिन के दौरान बादलों के कारण चलती हवाओं का असर पड़ेगा. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटो पर हल्की बारिश होगी. अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. रात के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी, अन्य इलाकों पर बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा. हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है. सूर्योदय 6:18 पर और आज शाम 6:01 पर सूरज ढल जाएगा. तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस.
3: सुप्रभात श्रोताओं, सुबह के ठीक 6:04 हुए हैं. जी हाँ, इसी के साथ आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कुछ विज्ञप्तियों पर नजर डालते चलिए. ये विज्ञप्ति है क्लोजेल, फिनिक्स के आसपास के कुछ इलाके, जिनमें है कुछ इलाके लेवेन्यू रेमियोलिए, कुछ इलाके इंदिरा गांधी रोड, क्लोजेल लेन नंबर 1, कुछ इलाके इंडिपेंडेंस स्ट्रीट, शिवानंदा एवेन्यू और महंत कपीर रोड के निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 4 सितंबर को सुबह 8:30 से लेकर दिन के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी. साथ ही साथ हाईलैंड्स के कुछ इलाके, जिनमें है बासें रोड, किनिजिया लेन, हाईलैंड्स के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार यानी कि कल 2 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी. मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल

0: इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: आप सभी का हम स्वागत करते हैं सुप्रभात। और इसी के साथ सुबह के ठीक 6:05 ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। सितंबर का महीना आज से शुरू हो रहा है। आप सभी को इस महीने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का दिन है तो इसी के साथ रत्ना आप सभी की सेवा में उपस्थित हो चुकी हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल हम सजाते चलेंगे संतवाणी कार्यक्रम के साथ। अभी थोड़ी ही देर में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये कार्यक्रम कबीर मंदिर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज। कुछ सदाबहार गीतों के साथ सुबह को और भी सुरीली बनाएंगे। 6:30 हम पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ। और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम में लाजवाब गीतों के साथ सुबह को और भी मनमोहक और ऊर्जाजनक बनाने का हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। तो आइए आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं आज के सुविचार के साथ। श्रोताओं, श्रेष्ठता मिलती है संस्कारों से, पर अवश्य ये सिद्ध होती हैं हमारे व्यवहार से। तो बस अपने व्यवहार को बिल्कुल निर्मल और दिल को एकदम नियत से साफ भरा हुआ रखें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। आइए इसी के साथ आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज का स्वागत करते हैं संतवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत।
2: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी।
3: बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन करनिकर भ्रमतम देत नशाय।

कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोनतेर वाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम बीजक का एक शब्द है जिसमें सद्गुरु कबीर साहब ने उलटवासी के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। शब्द है, संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी हैं, शब्द ही कोई न विचारे, पहले जन्म पुत को भयऊ, बाप जन्म या पाछे, बाप पुत की एक ही नारी, ई अचरज कोई काछे, कागद कार कार कुट आगे, बैल करे पटवारी, कहाँ है कबीर सुनो हो संतो, भैसे न्याय नवेरी, संतों बोले ते जग मारे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों, मैं सत्य उपदेश करता हूँ तो अज्ञानी लोग मेरे साथ झगड़ा करते हैं, अतः बिना कहे कैसे बोध होगा, कहने पर भी तो मेरे वचनों को कोई नहीं विचारता है। सदगुरु कबीर साहब अपने साथी साधु संतों को जगत के लोगों की मूढ़ता की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इन्हें भली बात बताओ तो सुनने और समझने के बजाय उल्टे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। साहेब ने अन्यत्र भी कहा है, साँच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाई। इन्हें इनके हित की बातें अच्छी नहीं लगती।

सकती है। और मेरी मुश्किल यह है कि बिना बोले बनता भी नहीं। जैसे घर के बूढ़े बुजुर्ग मुखिया को बीता हुआ कल कहकर परिवार के अन्य सदस्य उनकी उपेक्षा करते हैं, किंतु घर का बुजुर्ग सदस्य होने के नाते वह चाहता नहीं कि कुछ बिगाड़ हो, इसीलिए उसे बोलना भी पड़ता है। साहेब तो सदगुरु थे, संत थे, वे तो मनुष्य ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र का अहित होते नहीं देख सकते थे। उनमें जीव मात्र के प्रति करुणा थी, दया का भाव था, पिता के समान सबके लिए हित और कल्याण की चाहना थी। मनुष्य को जीते जी अभ्युदय और निःश्रेष की प्राप्ति हो, यही उसके इस धराधाम में आने का उद्देश्य था। फिर वे अपने उद्देश्य से कैसे विमुख हो सकते थे। सच्चा हितैषी संत सदगुरु को चाहे गाली सुननी पड़े या पत्थर की मार से लहू लुहान होना पड़े, चाहे विष पीना पड़े या फिर सूली पे टंगना पड़े, जगत के कल्याण और उद्धार के लिए वह कभी भी इन चुनौतियों और कठिनाइयों की परवाह नहीं करता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं सच्ची बात लोगों को बताता हूँ तो वे झगड़ा करने और मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, किंतु बिना बोले बनता भी नहीं। आखिर उन्हें बोध कैसे हो? यदि ना बोले ना बताएं, माया से मोहित हुए इन अज्ञानी जीवों का कल्याण कैसे सधेगा? यदि उपदेश ना दिए जाएं, इसीलिए किसी के बिना पूछे भी उसे भ्रम और झूठ से बचने का उपदेश करते रहता हूँ, किंतु क्या करूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रथम तो ये लोग सुनने को राजी ही नहीं होते, यदि सुनते भी हैं तो उस पर विचार नहीं करते। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैशिक बनी हैं, शब्द ही कोई न बिचारे। पहले जन्म पुत का भयउ, बाप जन्म या पाछे, बाप पुत की एक ही नारी, ई अचरज कोई काछे। सदगुरु कबीर साहब के समझाने का ढंग भी सबसे अद्भुत, सबसे निराला है। लोगों को सत्योपदेश देने के लिए सीधे सीधे अपनी बात न कहकर कभी आश्चर्यजनक उलटवासियों का सहारा लेते हैं। आश्चर्य और विस्मय पैदा करने वाली बातों के रहस्य को जानने की उत्सुकता मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। शायद पहेली बुझाने का चलन भी इसी प्रवृत्ति के कारण प्रारंभ हुई होगी। सदगुरु कबीर साहब की उलटवासियों का वाच्यार्थ सुनने वालों में आश्चर्य पैदा करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसा होता नहीं, किंतु उसका लक्षार्थ बिल्कुल सटीक बैठता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साहेब ऐसे ही अनहोनी बातें बताकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और यथार्थ वस्तु का बोध कराते हैं। इसीलिए संत साहित्य में सदगुरु कबीर साहेब की उलट वासियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साहेब कहते हैं, पहले जन्म पुत्र का भयउ। इस कथन के पीछे साहेब का लक्षार्थ यह है कि प्रथम पुत्र रूपी जीव का और पश्चात पिता रूप ईश्वर का जन्म हुआ। जो पालन करे वह पिता और जिसका पालन करे वह पुत्र कहा जाता है। ईश्वर जीवों का पालन करने वाला कहा जाता है, अतः पिता है और जीव पुत्र है। ईश्वर नियामक है, अतः पिता, और जीव नियम में है, अतः पुत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों में पिता पुत्र भाव संबंध है।

0: जीव अनुमान प्रमाणादिकों से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है, इसीलिए पहले जीव और पीछे ईश्वर का जन्म कहा गया है। सद्गुरु इस आश्चर्य को समझने की सलाह देते हैं, अर्थात जीव जब तक अपने यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर लेता, यह आश्चर्य मिटने वाला नहीं है। साहेब कहते हैं, दुंदुर राजा टीका बैठे विसहर करे खवासी, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में दासी। अज्ञानी मनुष्य दुंदुर अर्थात चूहे के समान है और वह अपनी अज्ञानता से अपने को राजा माने हुए बैठे हैं और विसहर अर्थात सर्प मन उसकी सेवा में रहता है। सर्प सेवक की सेवा में चूहे स्वामी की भलाई कैसे हो सकती है, यह भी एक अचरज की ही है। स्वान रूप संकल्प पति बना हुआ है और बिल्ली रूप मन की वृत्ति उसके घर की स्त्री बन गई है। साहेब कहते हैं, देखो दुंदुर राजा बना बैठा है और विसहर सर्प उसकी चाकरी कर रहा है। प्रत्यक्ष में ऐसा संभव नहीं है, किंतु साहेब कहते हैं अज्ञानी मनुष्य दुंदुर के समान राजा बन बैठा है। जीव भ्रमवश अपने अधीनस्थ प्राणी पदार्थों का अपने को स्वामी मानता है और उस जीव रूप स्वामी का सर्प रूप मन सदा सेवा में रहता है। जैसे सांप से चूहे की सेवा नहीं हो सकती, वैसे ही अज्ञानी जीव की सेवा मन से कराना कठिन है, क्योंकि सेवक का धर्म स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। अपने अनुसार मालिक को चलाना सेवक का धर्म नहीं बनता, इसीलिए मन से जीव की सेवा संभव नहीं, क्योंकि मन अपनी इच्छा अनुसार जीव को विषयों में बार बार ढकेलता रहता है। जीव पतित हो उन्हीं विषयों की खाई में गिरता पड़ता रहता है। विषयाशक्त होने के कारण जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं हो पाता। यह मन रूपी सर्प द्वारा जीव रूप चूहे को खाने जैसा है। सद्गुरु कहते हैं, कागद कार कारकुट आगे बैल करे पटवारी, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो भय से न्याय नवेरी। अर्थात जैसे लोक में राजा का सेवक प्रबंध करता मुनीम कारकुट कागद कर और पटवारी आपस में मिलकर राज्य की आय को राजकोष में जमा न करके आपस में बांट ले और न्यायकर्ता न्यायाधीश भी घूस लेकर पक्षपातपूर्ण निर्णय के द्वारा उनके हित में फैसला सुना दें, तो राजा बेचारा क्या कर सकता है। ऐसा कमज़ोर राजा चाहकर भी प्रजा के हित का कार्य नहीं कर सकता। वैसे ही राजा रूपी अज्ञानी जीव का मुनिम रूपी मन और दम्भी स्वार्थी बैल रूपी अहंकार आपस में मिलकर जीव का परमार्थ लाभ रूपी धन का हरण करते रहते हैं। अर्थात जीवात्मा के विषयाशक्त होने के कारण सद्गुण और सद्विचार मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं और जिससे असहाय और विवश होकर जीव मनोकुलता आचरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। सद्गुरु का यथार्थ ज्ञानोपदेश उसे अच्छा नहीं लगता, अतः सत्योपदेश के बिना सत्य मार्ग कदापि नहीं मिल सकता। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु, बंदगी साहे, बंदगी साहे।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

दोस्तों नींद से तो हम जाग जाते हैं, पर जब तक हमारी मन की आंखें ना खोले तब तक हम सोए ही रहते हैं। इसीलिए हमारी मन की आंखें खुलनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, और जी हाँ, इस कबीर भजन के साथ। आज 1 सितंबर है और अभी कुछ ही दिनों में हम जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। और चलिए, 6:26 हो चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में समय हो जाएगा हमारे समाचारों के साथ जुड़ने का। चलते चलते कुछ प्यारे से गीत को सुनते हैं और यही कहेंगे कि इंसानियत बहुत ही बड़ा खजाना है दोस्तों, उसे लिबास में नहीं पर हमारे मन में छुपी इंसानियत में उसे ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। मन में इंसानियत बसाए हुए इस जीवन में हम आगे बढ़ें और पूरे जगत का कल्याण हो, बस हम यही इच्छा रखें, यही भावना रखें और इसी के साथ परिवर्तन को हम अपने आसपास में महसूस करें। चलिए इसी के साथ फिल्म आज़ाद का ये गाना लेते हैं लता जी की प्यारी सी आवाज़ में, और यही गाना हमें जोड़ेगा 6:30 के समाचारों के साथ। समाचारों के बाद हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए गुनगुनाते हुए आज की सुबह के साथ जुड़ते हैं।

अभी 6 बजे हैं। नमस्कार, मंगलवार 1 सितंबर 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लगभग 1 महीने की छुट्टी

0: कौमी रीतों प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से अपना पहला PNQ पूछेंगे। संसद में पेश होने वाले रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल का उद्देश्य रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाना और घातक हादसों पर सजा सख्त करना है। आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर कमिटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसरी पढ़त के लिए आएगा। नीलकंठ दल्लू लेबर पार्टी और जॉय के इस्तीफा देकर पोल बेहोंशे के फॉर्मी रीतों प्रोग्रेसिस में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि ये फैसला पैसे या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करने के एक नए तरीके से उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए है। साबलुनो में हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने 4 चीनी मजदूरों से पूछताछ की है। मृतक आदम शहम जुबा के परिवार का आरोप है कि मौत से पहले विदेशी मजदूरों ने उस पर हमला किया था। आज 1 सितंबर से MRA ने डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल पर नमूनों पर 150 रुपये का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर दिया है। विदेश में 63 वर्षीय पूर्व गैंग बॉस डुआन कैफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रैपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। लगभग 1 महीने की छुट्टियों के बाद सांसद इस मंगलवार को संसद लौट रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से निवेश, मॉरिशस के कैसिनो, चुनावी जांच और छोटे एड्रियानो पेरिन की दुखद मौत शामिल है। राजमिला सीतामणि, गीता सुनारान।
1: आज संसद का नया सत्र काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से 27 सवाल पूछे जाएंगे। पॉम्पलमुसेज और थ्रियोले के सांसद कविराज रुकनी सबसे पहले सवाल करेंगे। वे खास तौर पर स्थानीय विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की उपलब्धता के बारे में जानना चाहेंगे। कविराज रुकनी प्रधानमंत्री से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में भी सवाल करेंगे। वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए तय किए गए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और लक्ष्यों के साथ साथ अब तक हासिल किए गए परिणामों और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगेंगे। फो मिलिता प्रोग्रेसिस की सांसद जुआना बेहोंशे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा घोषित 649.7 बिलियन रुपए के निवेश प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगेंगी। वे मंत्रियों द्वारा विदेश में किए गए दौरों के बारे में भी सवाल करेंगी, जिसमें खर्च की गई रकम और जमा की गई रिपोर्ट शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद कविराज बिचुक फिल्म रिबेट स्कीम का मुद्दा उठाएंगे। वहीं विपक्ष के जोले शोंगा 2024 के चुनावों से जुड़े खर्च की जांच की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगेंगे। फोंको किरे और कुशल लोबिन काजिनो डे मोरिस की स्थिति का मुद्दा उठाएंगे। वे करीब 600 कर्मचारियों की नौकरी और उनके अधिकारों को लेकर खास तौर पर आश्वासन मांगेंगे। आखिर में रोशन चमन प्रधानमंत्री से फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बारे में सवाल करेंगे। वहीं ईशान जुमन बच्चे एड्रियानो पेरिन की दुखद मौत से जुड़ी जांच के बारे में जानकारी मांगेंगे।
0: संसद की इस वापसी के दौरान विपक्ष की जगह में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फॉर्मी लीतों प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल जो जोले जोंगा के इस्तीफे के बाद पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में अपनी सीट संभालेंगे। वे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से अपना पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन भी पूछेंगे। बैठक संसदीय प्रश्नों के साथ जारी रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से वाक्वा फिनिक्स नगर पालिका में हाल ही में हुए कथित उत्पीड़न के मामले, सड़क सुरक्षा और चीनी क्षेत्र के मौसमी श्रमिकों की स्थिति पर की जाएगी। शबनीज उजिया वाहिदारी, गीता सुनारायण।
1: सांसद जुआना बेहोंशे स्थानीय प्रशासन मंत्री रंजीव वुचित से वाक्वा फिनिक्स नगर परिषद के एक कर्मचारी की हाल में हुई मौत के बारे में सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या इस कर्मचारी ने कथित उत्पीड़न और मानसिक दबाव की शिकायत की थी और क्या इस मामले में स्वतंत्र जाँच शुरू की जाएगी। स्थानीय प्रशासन मंत्री से ही सांसद ईशान जुमन पोटलिस नगर परिषद के निर्माण और मरम्मत विभाग के बारे में जानकारी मांगेंगे। वे खास तौर पर अप्रैल से जून 2026 के बीच मजदूरी और उपकरण पर हुए खर्च के साथ साथ कच्चे माल और अन्य सामग्री पर किए गए खर्च के बारे में जानना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा का मुद्दा भी एजेंडे में रहेगा। सांसद लुडोविक काजेन मंत्री उस्मान महमूद से पिछले 2 वर्षों में बस अड्डों पर हुए हादसों के बारे में सवाल करेंगे। साथ

0: साथी यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी जानकारी मांगेंगे। वहीं श्रम मंत्री गिसा उद्दीम को सांसद कुशल लोबिन के गन्ने उद्योग में मौसमी कामगारों की स्थिति से जुड़े सवाल का जवाब देना होगा। विकास तौर पर वेतन और काम की परिस्थितियों से जुड़ी शिकायतों के बारे में जानकारी मांगेंगे। साथ ही इन कामगारों की सुरक्षा और सामाजिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में भी सवाल करेंगे। मेटाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरेपी प्रोग्राम भी स्वास्थ्य मंत्री से पूछे जाने वाले सवालों में शामिल होगा। सवान और ब्लैक रिवर के सांसद अरविंद बाबाजी खास तौर पर इस कार्यक्रम से लाभ पाने वालों की संख्या, पिछले 5 वर्षों में किए गए खर्च और उनकी मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगेंगे, जिसमें रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास भी शामिल हैं।
1: संसद में एक अन्य अपेक्षित विधेयक रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल है। सरकार सड़क सुरक्षा के संबंध में दंड को और सख्त करने का इरादा रखती है, विशेष रूप से रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में। इस मंगलवार को परिवहन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद ये विधेयक पहली और दूसरी पढ़त से गुजरेगा, फिर तीसरी पढ़त पर आने से पहले कमिटी स्टेज में इसकी समीक्षा की जाएगी। काविंता पेशा, करुणा लालू।
2: पहली जनवरी से अब तक यानी 8 महीनों में 1505 आल्को टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2025 में पूरे साल ये संख्या 968 थी। 494 चालकों को ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के लिए पॉजिटिव पाया गया। चिंताजनक आंकड़ों के बीच सरकार एक सख्त कदम प्रस्तावित कर रही है। उन चालकों के वाहन की जब्ती जिन्हें शराब या ड्रग्स के लिए पॉजिटिव पाया गया हो। रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत पुलिस को ये अधिकार होगा कि यदि कोई चालक में शराब निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, ड्रग्स टेस्ट में वो विफल रहता है या उसके शारीरिक व्यवहार में नशे के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं, तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकेगी। 8 महीनों में सड़क हादसों में 103 लोगों की मौत, इनमें दोपहिया वाहन इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक प्रभावित रहे हैं। इस साल की शुरुआत से अब तक 10,254 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पर पेनल्टी पॉइंट्स लगाए जा चुके हैं। हाल के दिनों में रोड रेज यानी सड़क पर गुस्से और हिंसक व्यवहार की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए विधेयक में रोड रेज से जुड़े व्यवहारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इस नए अपराध के दायरे में हमला करना या हमले की धमकी देना, अपशब्दों का इस्तेमाल, किसी आक्रामक हथियार का उपयोग, किसी वाहन को पकड़ कर लटकाना, वाहन का दरवाजा जबरन खोलने की कोशिश करना, वाहन को नुकसान पहुंचाना, सार्वजनिक सड़क पर यातायात की स्वतंत्र आवाजाही में बाधा डालना या आम लोगों में डर पैदा करना शामिल है। रोड रेज के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 12 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने और किसी अन्य व्यक्ति की मौत का कारण बनने को भी रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के तहत एक अलग अपराध बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 5,00,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं दोबारा अपराध करने पर अधिकतम जुर्माना बढ़कर 1,000,000 रुपए और अधिकतम जेल की सजा 8 साल तक हो सकती है।
1: नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जियोरे के बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद अब पुल बेहोंजे के फॉर्मी लिटों प्रोग्रेसिस में शामिल हो गए हैं। वकील का कहना है कि ये चुनाव किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या पैसे के मामले से प्रेरित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जियोरे में उनका रेम्यूनरेशन एक सांसद के बराबर था और उनके अनुसार ये एक मंत्री के वेतन के करीब भी हो सकता था। नीलकंठ डल्लू का कहना है कि वे मुख्य रूप से एक बेहतर सरकारी प्रणाली के अपने दृष्टिकोण की रक्षा करने और मॉरिशस में राजनीति करने के एक अलग तरीके में योगदान देने के लिए FMP में शामिल होना चाहते हैं। उनको सुनते हैं।
3: Nomination tout le monde gagnait avec le gouvernement du jour. On l'a payé plus qu'un député, moi. Pas moi. Pas avant, on l'a payé tous. Un a payé ministre.
0: सरकार से मुझे नॉमिनेशन मिला, मुझे कभी कभी हर महीने किसी मंत्री जैसा वेतन मिलता है। लेकिन ये देखना चाहिए कि देश किस ओर जा रहा है। मेरे अनुसार एक नया अच्छा चुनावी प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे सामने बहुत कम समय है, मैं आगे नहीं जा सकूंगा। एक नई पार्टी है जिसमें सांसद हैं, चेतन बाबूलाल हैं, पुल बेहोंशे, जोआना बेहोंशे हैं, मैं रहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े टीम कायम की जा

0: रही हैं। सभी 20 चुनाव क्षेत्र सेंट्रल कमेटी पोलिट ब्यूरो हैं। मुझे खुशी होती कि एक जगह रहने की बजाय जीतने वाले को दौर में शामिल किया जाए।
1: रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, अब इसका अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। पिछले सप्ताह शुरू किए गए एक नए एप्लीकेशन के जरिए लोग अपनी पेंशन की रकम का अनुमान लगा सकते हैं। इसमें रिटायरमेंट की उम्र सहित कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। आखिर ये गिनती कैसे होती है और उम्र के हिसाब से पेंशन की रकम पर क्या असर पड़ सकता है, चलिए जानते हैं। यासीन दिन मामूद की इस रिपोर्ट में विवरण रजनी बिकर का है।
2: SAP के लागू होने के बाद से मॉरिशियनों को ट्रांजिशन अवधि के उपरांत 65 वर्ष की उम्र पूरा करने पर अपना पेंशन प्राप्त होगा। ये भी विकल्प मौजूद है कि 60 वर्ष में रिड्यूस्ड पेंशन मिले और साथ में 70 वर्ष के लिए बढ़ाए गए वर्षन पर भी हिसाब किया जा रहा है। आज बेसिक ओल्ड एज पेंशन के लिए एक महीने के लिए 15,555 रुपये मिलते हैं। 65 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये की रकम जुड़ जाएगी, जिससे कि कुल मिलाकर 16,555 रुपये प्राप्त होंगे। अगले साल 2027 के जनवरी महीने से BRP की जगह पर SAP होगा। जो व्यक्ति 2027 में 60 वर्ष का होगा, अगर वो 60 वर्ष पर ही अपना पेंशन हासिल करना चाहेगा तो उसे 14,167 रुपये मिलेंगे। अगर 62 वर्ष का होगा तो 2029 में उसे 17,246 रुपये मिलेंगे। 2037 में 70 वर्ष की आयु पर उसे 38,017 रुपये मिलेंगे। किस तरह ये हिसाब किए जाते हैं, इस बात पर जोर देना चाहिए कि सिमुलेशन की ज़रूरतों के लिए ये दर्शाया गया कि हर साल पेंशन 3.5% से बढ़ेगा, औसतन मुद्रा स्फीति दर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी। 1985 में जन्मे एक व्यक्ति 2050 में 65 वर्ष का हो जाएगा, अर्थात 2050 में उसे 37,801 रुपए का पेंशन मिलेगा, लेकिन वो फैसला कर सकेगा कि 60 वर्ष की आयु से वो पेंशन लेगा या नहीं 2045 में। इस मामले में उसे कम पेंशन मिलेंगे, 65 वर्ष से पहले हर महीने 0.5% की कमी, 5 वर्ष पहले 30% कम। 2045 में इस व्यक्ति के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रकम 31,827 रुपए होगी, 30% की कमी के साथ हर महीने 22,279 रुपए तक पहुंच जाएगा। और अगर यही व्यक्ति 65 वर्ष के बाद इंतजार करने का फैसला करें तो 65 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने पेंशन में 0.75% जुड़ जाएंगे, प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करने के लिए 9% और 5 वर्षों पर 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 45% अधिक की रकम निर्धारित होती है। 2055 में प्रति साल 3.5% जोड़ने पर पेंशन की रकम 44,895 रुपये तक होगी। 45% की अतिरिक्त रकम के साथ 70 वर्ष की आयु पर उसे हर महीने 65,098 रुपये मिलेंगे।
1: पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को आज सुबह CCID में पेश होना है। उन्हें मिसे मुस्तास कहे जाने वाली टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक घोटाले की जांच के सिलसिले में समन भेजा गया है। इस मामले में CCID की काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख खलील राम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जांचकर्ता काउंटर टेररिज्म यूनिट में उनके कार्यालय में मौजूद एक डिवाइस से जुड़े कोड की तलाश कर रहे थे। रिवॉर्ड मनी जांच के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए इस उच्च पदस्थ अधिकारी ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि वे कोड भूल गए थे। लील राम दियाल ने स्पष्ट किया था कि हालांकि वो वस्तु उनके कार्यालय में थी, लेकिन वो इसका उपयोग नहीं करते थे और नेशनल सिक्योरिटी सर्विस इसका इस्तेमाल करती थी। साबलुनवा में रविवार को हुई घटनाओं के बाद पुलिस ने 4 चीनी मजदूरों से उनकी बात जानने के लिए पूछताछ की है। इन हंगामों के पीछे मृतक अडम शेमजुबा के परिवार का दावा है कि अपनी मौत से पहले उस पर इलाके के एक डोमिटोरी में रहने वाले विदेशी मजदूरों ने हमला किया था। 16 अगस्त को साबलुनवा की लगून से 38 वर्षीय अडम शेमजुबा का शव बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फेफड़ों में सूजन बताई गई थी। आज स्थानीय निवासी इन विदेशी श्रमिकों की उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं की निंदा कर रहे हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये झड़पें मॉरिशस के नागरिकों और विदेशी श्रमिकों के बीच कोहैबिटेशन पर बहस को फिर से जिंदा करती हैं।

0: समाजशास्त्री राजेंद्र संतू के अनुसार इन श्रमिकों को मॉरिशस की संस्कृति और कानूनों के बारे में बेहतर ढंग से जागरूक करना बेहद जरूरी है। उनको सुनते हैं जिनसे बात की लोविना सुफिनी।
1: जब देश में बहुत ज्यादा विदेशी होते हैं तब स्थानीय लोगों के लिए समस्या बन जाती है। कई देशों में विदेशी कामगारों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़े होते हैं। अगर यहाँ आने वाले लोगों को समाज में कैसे जीना चाहिए नहीं सिखाएंगे, हमारी संस्कृतियाँ कैसी हैं नहीं सिखाएंगे, हमारी विदेशियों के सामने क्या उम्मीदें हैं नहीं बताएंगे तो मुश्किल होगी। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ सबका स्वागत किया जाता है। हम यहाँ आकर काम करने वालों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वे स्थानीय लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करें। जो संस्था उन्हें यहाँ लाते हैं उन्हें इन लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि यहाँ कौन से कानून हैं और क्या वे इनसे परिचित हैं या नहीं।
2: इसकी जो इन्फिनी जे समान जीवना हो गया एजिक समान जीवना लोग की बन आते होते ना की बन रेगलेमेंट है ना की बन लालुआ है ना इसकी जो तो कुओं।
0: आपको बता दें कि स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिसंबर तक मॉरिशस में लगभग 28,000 विदेशी श्रमिक थे। और विदेशी श्रमिकों के संबंध में ही मलागासी श्रमिकों की भर्ती को बेहतर ढंग से विनियमित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात मॉरिशस में उनके अधिकारों की गारंटी देना है। मॉरिशस और मलागास्कर वर्तमान में मलागासी श्रमिकों की भर्ती और रोजगार से संबंधित एक समझौते के मसौदे पर काम कर रहे हैं जिसमें नैतिक भर्ती प्रशिक्षण और पेशेवर अनुभव की मान्यता पर विशेष जोर दिया गया है। श्रम मंत्री रेजा उतिम के लिए इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के शोषण से बचना और ये सुनिश्चित करना भी है कि इन श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा प्रदान की जाने वाली समान सुरक्षा का लाभ मिले। वे दोनों सरकारों के बीच एक समझौते के माध्यम से एक ऐसे मेकानिज्म की आवश्यकता का भी उल्लेख करते हैं जिससे मॉरिशस में मलागासी श्रमिकों द्वारा दिए गए अंशदान का लाभ मडागास्कर लौटने पर उन्हें मिल सके। मंत्री रेजा उतिम को सुनते हैं जिनसे बात की अदरिया वालिया ने।
1: इसकी शुरुआत हमें आश्वस्त करने से होता है कि वे मलागास्कर या मॉरिशस में मध्यस्थों को कोई रिक्रूटमेंट फीस नहीं चुकाए, इसलिए मलागासी सरकार के साथ एक समझौता तय करना चाहिए ताकि वे हमें आश्वस्त करे कि रिक्रूटमेंट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हो रहा है। साथ में मांग की गई है कि मलागासी लोग मॉरिशस आकर काम करें, उनका भी एक सामाजिक योगदान होना चाहिए और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने जमा रकम उनके देश के सरकारी फंड में लौट आई जाए।
0: आज 1 सितंबर से डाक या कुरियर सेवा द्वारा आयातित पार्सल पर नए प्रोसेसिंग शुल्क लागू हो गए हैं। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्रति शिपमेंट 150 रुपये के गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी के लागू होने की घोषणा की है। ये कदम डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित और कस्टम घोषणा के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल और नमूनों पर लागू होता है। 1,000 रुपये से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए शुल्क उस एजेंट या वाहक द्वारा वसूला जाएगा जिसने पार्सल पहुंचाया है, जिसे बाद में MRA को जमा किया जाएगा। 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के शिपमेंट के लिए ये राशि सीधे कस्टम क्लियरेंस के लिए आवश्यक सरलीकृत घोषणा में शामिल कर दी जाएगी। MRA के अनुसार इस शुल्क का उद्देश्य डाक या कुरियर सेवा के माध्यम से आयातित सामानों की प्रोसेसिंग और कस्टम क्लियरेंस से जुड़ी लागत को पूरा करना है। विदेश में 63 वर्ष पूर्व गैंगबॉस डुआन केफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रॉपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है। डेविस, जिस पर घातक हथियार से हत्या का आरोप था और जो उम्र कैद का सामना कर रहे हैं, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और उनके वकीलों ने मामले से किसी भी जुड़ाव से इनकार किया था। इंडोनेशिया ने बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों के 6 प्रांतों में जंगलों की आग से फैलने वाली धुएं को रोकने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है। इन जंगलों की आग ने सैकड़ों ओरांगुटांस के आवास के एक हिस्से को नष्ट कर दिया है और इस प्रजाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और फिर अपने पिता को खोने के गहरे सदमे के बाद मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान कर दिया।

और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जोरदार एंटीसाइक्लोन अबस्करेंस के दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। दिन के दौरान बादलों के कारण चलती हवाओं का असर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे और पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश होगी। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 20 से 23, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रात के दौरान पूर्व और ऊंचाइयों पर हल्की वर्षा होगी, अन्य इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:18 पर और आज शाम 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम फैजन कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:52 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। नुवेल फ्रांस में 49 साल के श्री अशोक कुमार कर्मल, जो विशाल नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनकी पत्नी पिंकी और भाई धीरज कर्मल के घर नुवेल फ्रांस से उठाकर महाजानी रोजबेल का कब्रस्तान ले जाया जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 9:30। शेनफिल रोड रिवियर जोंपा में 66 साल के 66 के श्री देवानंद राम भरत, जो जोर्ज नाम से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले रिवियर जोंपा के CAB दफ्तर में पुराने कर्मचारी थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:30 उनकी पत्नी श्रीमती कविता राम भरत के घर शेनफिल रोड रिवियर जोंपा से उठाकर उत्तरी रिवियर जोंपा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों में 67 साल की 67 की श्रीमती ललिता गुलजा, पैदाइशी नाम बुलक सिंह और जो अमृता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:00 उनके घर पॉइंट डिस्नी रोड बुवालों से उठाकर तोम्बू में बग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:00 PM। जबुलेन थ्रोबिश त्रियोली में 78 साल के 78 के श्री बाबू राव दुकी, जो विजय नाम से ज्यादा जाने जाते थे और जो पहले अबेकुंबी में कृषि मंत्रालय में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:00 उनकी पत्नी श्रीमती जयंती दुखी के घर झबुलेन थ्रोबिश त्रियोली से उठाकर तेमिनिस त्रियोली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:00 PM। आवोकाई स्ट्रीट मलाशो में 70 साल की 70 की श्रीमती शीला सिचन, पैदाइशी नाम मंगा, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन की 11:00 उनके बेटे राकेश सिचन के घर आवोका स्ट्रीट मौलाशो से उठाकर काथकोकोको की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ब्लॉक M51 सिटी को 2:00 PM में 66 साल की 66 की श्रीमती अरलावादी मरियन, जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2:00 उनके घर ब्लॉक M51 सिटे को 2:00 PM से उठाकर सेकोंस्तान 5 PM की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। बैलेंस रोड कारोलिन बेलिया रिविया सेश में 83 साल की 83 की श्रीमती सूरजमुनि हलकोरी, पैदाइशी नाम इतवारिया और जो नटवा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:00 उनके घर बैलेंस रोड कारोलिन बेले रिविया सेश से उठाकर लालोका कारोलिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:00 PM। दीनदयाल स्ट्रीट कोकेम्बो रिवियर जोंपा में 73 साल की 73 की श्रीमती चंद्रानी बजम्बाली, पैदाइशी नाम सखापानी और जो गीता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30

बजे उनके बेटे अश्विन बजम्बाली के घर दीनदयाली स्ट्रीट को कैम्बो रिवियर चौराहों पर से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे आउट ऑफ पोस्ट टू। रेजिडेंस जस्मे नोत्र दाम में 54 साल के 54 years old के जनाब शेख मोहम्मद अली कौ बुजरागी, जो अली नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके घर रेजिडेंस जस्मे नोत्र दाम से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए नूर इमामदी मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स में 75 साल के 75 years old के श्री जदुनंदन शिवराज, जो अनिरुद्ध नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ है आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती दिलावती शिवराज के घर पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रमिशन टुडे एट 1:30। पावे एवेन्यूज दो रोज में 54 साल के 54 years old के श्री रविंद्र सिंह रामहित, जो रवीन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थ है आज दिन के 2 बजे उनके बेटे अखिलेश सिंह रामहित के घर पावे एवेन्यूज दो रोज से उठाकर बिल मौके शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कठिन ही सही पर आर्सेनल जीत सका और ऐसा हो सका साका के गोल के साथ। 1-0 से आर्सेनल ने एस्टन विला को हराया। साका का गोल सेकंड हाफ में बैक टू बैक विन आर्सेनल के लिए, जबकि एस्टन विला की दूसरी हार। लीग टेबल में मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, हल सिटी और चेल्सी के पास 6-6 अंक हैं। इस प्रीमियर लीग सीजन का तीसरा सप्ताह इस शुक्रवार फ्राइडे से ही शुरू होगा। लिवरपूल एवे जाएगा इप्सविच टाउन के मैदान में। फिर शनिवार के मैच सैटरडे फिक्स्चर्स, अर्ली किक ऑफ 3:30 बजे 3:30 किक ऑफ न्यूकासल यूनाइटेड बोर्नमुथ, फिर 6 बजे ब्रेडफोर्ड संडरलैंड, ब्राइटन लीड्स, फुलहम क्रिस्टल पैलेस, मैनचेस्टर सिटी कोविंट्री सिटी, नॉटिंघम फॉरेस्ट टोटनहम हॉटस्पर और लेट मैच हल सिटी एस्टन विला। संडे मैच एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड 5 बजे और 7:30 बजे धमाका आर्सेनल का मुकाबला चेल्सी से होगा। स्पेन के ला लीगा में बार्सिलोना की ओर से बमबारी, 5-2 से बार्सा ने रायो वालेकानो को पछाड़ा। राफीना और लामिन यामाल के डबल रहे एक ऑन गोल। ओसासुना की जीत 1-0 से खेताफे पर। इटली के सेरी आ में एएस रोमा ने लेचे को 4-0 से हराया। अटलांटा 1-0। आज इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप के मैच खेले जाएंगे। जर्मन कप और कोपा इटालिया के मैच भी आज ही स्केड्यूल हैं। ब्राडली बाकोला एला आ गया बाकोला लिवरपूल में। तिजोरी खाली करनी पड़ी 123 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग, जो लिवरपूल के लिए दूसरा सबसे महंगा ट्रांसफर फी है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 106 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग डायरेक्ट पेमेंट, बाकी एड ऑन्स। आई एम वेरी हैप्पी और जल्द से जल्द मैदान में उतरना चाहता हूं, ऐसा बाकोला ने कहा। मेरा सपना है प्रीमियर लीग जीतना, इसके लिए सही क्लब में आया हूं। कोडी गाक्पो अभी तक लिवरपूल में ही है। सिटी ने बंप 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा पर लिवरपूल ने इनकार किया। शायद एक और स्ट्राइकर खरीदने पर गाक्पो को बेचा जाएगा, पर अभी के लिए गाक्पो लिवरपूल में ही है। वैसे आज सितंबर महीने की पहली तारीख सितंबर 1 और आज ही ट्रांसफर बाजार बंद हो जाएगा। डेडलाइन डे में भी खिलाड़ियों का आना जाना होगा। मैनचेस्टर सिटी चेल्सी से निगोशिएट कर रहा है एंजो फर्नांडेज को साइन करने के लिए। चेल्सी कम से कम 120 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर सौदा करना चाहता है। इस बीच मैनचेस्टर सिटी एवर्टन से लीमान एंजाय को 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर साइन करने के लिए करीब है। एंजाय टोटनहम हॉटस्पर में जाने

0: वाला था, पर रिचार्लिसन वाला डील नहीं हो पाया। रिचार्लिसन एवर्टन में जाने वाला था लेकिन सौदा नहीं हो पाया, इसीलिए सिटी आगे आ गया। एवर्टन मोनाको के स्ट्राइकर बालोगन को साइन करने जा रहा है, 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दाम है। चेल्सी से मिकाइलो मुड्रिच टोटनहम हॉटस्पर में, टोसिन अदाराबियो और रॉबर्ट सांचेज कोमो में जा रहे हैं। नॉटिंघम फॉरेस्ट में आ गया क्रिस्टल पैलेस से डैनियल मुनोज, दाम 22 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। हल एवर्टन के मिडफील्डर टीम इरोएग बुमानो को साइन करने जा रहा है। टोटनहम हॉटस्पर से डिफेंडर केविन डांसो अब संडरलैंड में नाचेगा, ये लोन डील है। आज डेडलाइन डे, अंतिम मिनट तक शॉपिंग होती रहेगी। लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से रिटायर हो गया। अब वो अर्जेंटीना के लिए नहीं खेलेगा। जो देना था दे दिया, जो करना था किया। अब अलविदा अर्जेंटीना। ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर, मोस्ट कप्ड प्लेयर, यानी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला, 2022 में वर्ल्ड कप जीता, कोपा अमेरिका 2021 और 2024 में, 2016 में 10 साल पहले उसने रिटायर होने का फैसला लिया था पर अपना फैसला वापस लेते हुए आया, 6 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। अर्जेंटीना के शर्त में अब मेसी को नहीं देख पाएंगे पर अपने क्लब के लिए मेसी खेलेगा। सुना होगा डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना माडोना का गाना, पर मेसी जैसे मसीहा के लिए अर्जेंटीना रोएगा जरूर, खुशी के आंसू और दूर होने का गम। इमोर्टल मेसी, मेर्सी मेसी। टेनिस, यूएस ओपन के पहले ही राउंड में झटका, नोवाक जोकोविच बाहर हो गया। अर्जेंटीना के मारियानो नावोने ने जोको को हराया। अरीना सबालेंका, कार्लोस अल्काराज, मेंसिच, सित्सिपास, अनिसिमोवा, विटोलिना, मुचोवा, बुब्लिच, नबारो, टाउनसेंड, बेरेटिनी, रूबलेव, इगा श्वातेक, ब्लॉक्स आदि खिलाड़ी आगे जा पाए। अभी बेस्ट ऑफ 128 के मैच खेले जा रहे हैं। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। आर्सेनल की जीत एस्टन विला के मैदान में 1-0 से, साका का गोल। उधर बाकोला आ गया है लिवरपूल में और मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहा। हमारे जाने का भी समय आ गया, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: This is Radio Mauritius.
2: Nous travaillons nous l'avenir au Harkatin Ministry of Labour and Industrial Relations. Saat mein MBC ke milal julal sahyog se pesh karal jadba. Sector Job Contractor Prasman Company Limited jon Angri Marshall ke opip meha khojat havanja. मासों जेकर एक बार इसके एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7775 एन का 3 दे पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 7 सितंबर 2026। सेक्टर लैंडस्केपिंग एंड क्लीनिंग ए प्लस सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लिमिटेड जोन किंग्स रोड गुडलैंड्स में खोजत हवन स लैंडस्केपर जेकर एक बार इसके एक्सपीरियंस बा आज गार्डनर और क्लीनर चाहेला जेकर 3 महीना के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7775 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर मैकेनिक ASPK मैकेनिक्स लिमिटेड जुनबो प्लाटो रोड गुडलैंड्स में खोजतवंजा मोटर व्हीकल मैकेनिक्स जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा और ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन जिकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7911 2131 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन KD अमिगो लिमिटेड जिन टेम्पल रोड कोटेज में खोजा थवंजा बैकहो लोडर ऑपरेटर जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा प्लांट ऑपरेटर जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सितंबर 2026 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन रुदेश कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जोन विनोबा रोड लालमाटी में खुजतवंजा मेसन ग्रेड 2 जिनका 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 7 सितंबर 2026 पर और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 12 सितंबर 2026। सेक्टर मैकेनिक न्यूट्रन ऑटो केयर लिमिटेड जिन रॉयल रोड रिविया जुगाव पाव में बा खोज 54 पैनल बीटर जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा पेंटर ऑटोमोटिव जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 412-60-53 पर या तो फिर 57-73-47-06 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026। सेक्टर हॉस्पिटैलिटी लगून एटीट्यूड होटल मारीना विलेज होटल लिमिटेड जिन रॉयल रोड अंसलारी में है खोज 54 वेटर जिनकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा साथ में स्टीवर्ड एंड क्लीनर रूम अटेंडेंट और कुक और सब कोई के चाहना 1 बरिस के कम से कम एक्सपीरियंस रहे के एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिया भेजल गल लाद्रेस पर यानी रॉयल रोड अंसलारी या तो फिर बाय मेल hrm@lagoonattitude.com और इहा लगून एटीट्यूड होटल रॉयल रोड अंसलारी अर्ज भेजे के आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग संदेश फर्नीचर लिमिटेड जोन ब्रांच रोड पोम्बलॉन पोस्ट फ्लैक में है खोज 54 एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर ग्रेड 2 जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 57-74-47-74 या तो फिर कभी भी आप लोग सक बजा जाए संदेश फर्नीचर लिमिटेड ब्रांच रोड पोम्बलॉन पोस्ट फ्लैक अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2026। सेक्टर बेकरी ए गोदाम कादे एंड सन्स कंपनी लिमिटेड जिन रॉयल रोड कालबास में हो खोजता बेकरी ऑपरेटर जिनकर कम से कम 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर अब कभी भी सक बजा जाए ए गोदाम कादे एंड सन्स कंपनी लिमिटेड रॉयल रोड कालबास और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के नास गवर्नमेंट लिमिटेड जिन लिंक रोड नोवेल फॉर्म्स में हो खोजत वंजा शुइंग मशीन ऑपरेटर जिनकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा और एडमिन क्लर्क जिनकर 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिया 6-7-7-0-9-87 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026। सेक्टर रिटेल शांतिफ्रे पुज दे फ्लाक जोन रॉयल रोड पुज दे फ्लाक में है खोजा थोवन जा शॉप असिस्टेंट जे कम से कम फोम थाली पहर लेबा एप्लीकेशन खातिन 57-08-93 पर कॉल करिया या तो फिर कभी भी आप लोग सक बजे जाए शांतिफ्रे रॉयल रोड पुज दे फ्लाक अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 24 सितंबर 2026। सेक्टर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सादिक साकिताया जोन गबरोन नबुतलावा में है खोज 54 सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इनर्जी फाइनेंस ऑफिसर ग्रांट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन खातिन जितना भी कौजिदा लोग बचाला उनकरा दोनों यानी कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपीज विदा करे के कम से कम शुक्रवार 11 सितंबर तक चाहना विदा कर दे के पता है डायरेक्टर को ऑपरेशन रीजनल इंटीग्रेशन डिवीजन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड थर्ड फ्लोर फुक्स हाउस बूबो स्ट्रीट पोर्ट लुइस और ईमेल है MOFARC@govmu.org। याद रखिए एप्लीकेशन करत हो तोहरा चाहेला जो तोहर करिकुलम विटाई है 5 पन्ना से ज़्यादा नहीं रहे के और साथ में तोहरा चाहेला अटैच करे के तोहर सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डिग्रीज डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स और एज लिमिट है 52 यानी कि 52 और आप लोग सक बजा चिके करे वेबसाइट मिनिस्ट्री के http://foreign.govmu.org या सादेक के सेक्रेटरिया https://www.sadc.in और अर्जी भेजे के आखिरी तारीख 11 सितंबर 2026। तो रहल तोहर खातिन नू थावाई नू लावेनिय जोन तोहरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में MBC के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियां। ये विज्ञप्ति है फुरसाइड के आसपास के इलाके जिनमें है लाबगास्की के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। और अंत में है फुरसाइड के ही कुछ और इलाके जिनमें है रेजिडेंस सेंट लुक और बूग स्ट्रीट, रेजिडेंस अटली, NHDC ला कोलम्ब, एनएचडीसी जैस्मिन के निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 3 सितंबर को दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 1 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती रहेगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। इसी के साथ आइए आगे का कार्य

0: कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: समय 7:11 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस की लहर पर सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सितंबर महीने का ये है पहला कार्यक्रम। जहां कहीं से भी जुड़े हैं, आशा करते हैं आप सभी मजे में होंगे। और आज के दिन के साथ बस आइए इस महीने को भी प्यार से बिताने का प्रयास करें और हिम्मत के साथ हर परिस्थिति में मुस्कुराने का वादा करें। और इसी के साथ चलिए आज के इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और लाजवाब गीतों से सजाया हुआ ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। पर उससे पहले लेंगे चिंतन, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जो पाप कर्मों से बचाता है और हित कर्मों में प्रवृत्त कराता है तथा गोपनीय बातों को गुप्त रखता है और गुणों को प्रकाशित करता है, आपत्ति आने पर जो साथ नहीं छोड़ता और समय पड़ने पर सहायता करता है, उसी को विद्वानों ने अच्छे लक्षणों से युक्त सच्चा मित्र कहा है।

बिल्कुल 7:16 और इसी के साथ झलकी हूँ मैं आपको बताते चले कि आज दिन भर में कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं। और बेशक अभी तो आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और मैं हूँ रत्ना, बेशक आपका साथ दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि 8 बजे भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे चिंटू के साथ, जिनका जन्मदिन बस 4 तारीख को होने वाला है और उनके लाजवाब गाने आपको सुनाएंगे 8 बजे। बिल्कुल हम 8:50 पर आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में भोजपुरी गीतों का गीत का आनंद उठाते हुए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, साथ ही साथ इसका सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे MBC के तीसरे चैनल पर। और आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सुमिता सरकार द्वारा। आज का शीर्षक होगा मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस और आज के अतिथि होंगे सतबीर सिंह। तो ज़रूर आप इस कार्यक्रम को सुनिएगा और बिल्कुल 10 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः मैं उपस्थित रहूँगी भक्ति में गीतों के साथ साथ वेद सुधा कार्यक्रम को लेकर। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा, वेद सुधा कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा आचार्य सुदेश बद्री जी द्वारा। भक्ति में यात्रा समाप्त होगी 11 बजे। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषा के कार्यक्रम जिस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी सैयदा सुबाई द्वारा और इस कार्यक्रम का नाम रहेगा शम्मे फरोजा। 12 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। 12 बजे वर्षा लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 12:30 बजे सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में होगा मराठी गीतों का कार्यक्रम जो चलेगा 1 बजे तक। 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण होगी RSC की। 2:45 बजे अमिता की प्रस्तुति में होगा गुजराती गीतों का कार्यक्रम। 2 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगे डेविड जो चलेगा 2:30 बजे तक। 2:30 बजे आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद रोशनी की प्रस्तुति में होगा ये कार्यक्रम और बिल्कुल ये कार्यक्रम जारी रखा जाएगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे पुनः आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम कलाईवानी वीरन की प्रस्तुति में। 1 घंटे का ये सफर रहेगा। ठीक 5 बजे पुराने गीतों का सफर भूले बिसरे गीत जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी उषा के द्वारा और बिल्कुल 6 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। 6 बजे के कार्यक्रम 6 बजे समाचारों के बाद 6 बजे के समाचारों के बाद 6:30 बजे आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम जिसकी पहल होगी मैंडरीन कार्यक्रम के साथ और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी हांगकांग। 7 बजे पूवना लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा तेलुगु भाषा का कार्यक्रम स्वरला वेदिका। 7:50 पर शिरीष रामा की प्रस्तुति में मराठी गीतों का कार्यक्रम गीत गंगा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम जिसे प्रस्तुत करेंगी अनीता। 8:40 पर महफिले शब ये उर्दू भाषा का कार्यक्रम पेशकश रहेगी निसार अख्तर की। 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलेगा जिसे प्रस्तुत करेंगे RJ प्रताप सिंह। रात के 11 बजे से 12 बजे के बीच सुनहरे पल पुराने गीतों का ये सफर सजाया जाएगा नीतू शाह की प्रस्तुति में। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा सजाई गई। तो ये थी सूची हमारे रेडियो मॉरिशस के सभी कार्यक्रमों की। वैसे आप सभी को याद दिला दें दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच पुनः मैं आपका साथ दूंगी रेडियो मनोरंजन के लहरों

पर उड़ान की कहानी के साथ, और उड़ान की कहानी में आज हमारे साथ जुड़ेंगी गीता फ्रॉम स्कॉटलैंड, जो अपने टिकटॉक पेज पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। स्कॉटलैंड में रहती है पर लाजवाब भोजपुरी कह बात करती है, और साथ ही साथ उनकी जो कहानी है बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक। तो जरूर भूलिएगा नहीं, आज के इस कार्यक्रम में गीता फ्रॉम स्कॉटलैंड हमारे साथ जुड़ेंगी रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी में। और इसी के साथ बिल्कुल 7:21 हो चुके हैं, तो चलिए लाजवाब गीतों के इस सफर में। अभी अभी हमने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और तलत महमूद के साथ लता जी की प्यारी सी आवाज़, बर्मा फिल्म से लिया हुआ ये गाना था। और एक और ऐसी प्यारी सी आवाज़ गूंजने जा रही है फिल्म कठपुतली से लिया हुआ ये गीत सुबीर सेन की आवाज़ में।

बिल्कुल, मंजिल वही है, प्यार की राह ही बदल जाते हैं, पर इससे चिंता थोड़ी करनी है। मंजिलों की परवाह ना कीजिए, जिंदगी सफर है भाई, आप चाय पीजिए। और लाजवाब गीतों के सफर के साथ आपकी मुस्कुराहट बहुत ज्यादा मायने रखती है भाई। जिंदगी में तकलीफें तो आती रहती है, पर इससे क्या हम हंसना भूल जाए, मुस्कुराना भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुस्कुराते हुए इस सफर में हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखने में हम भी कोशिश पर कोशिश करते रहेंगे, जब तक कि आपकी मुस्कुराहट ना आ जाए। और इसी के साथ एक और प्यारा सा गाना आपके नाम करेंगे, और ये है फिल्म बाजी से लिया हुआ गीत, और आवाज़ है गीता दत्त की।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज थी, फिल्म थी सुजाता। 1959 के दौर का ये गाना, भाई सुकून चाहिए तो अनजान बने रहें, क्योंकि सब जानने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मानसिक शांति तो डगमगाएगी ही। क्योंकि कई बार कहते हैं ना, कौन क्या कहता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इतनी सारी बातों में उलझे रहेंगे तो दिमाग की शांति भी दिमाग से दूर हो जाएगी। इसीलिए बस चले चले आगे और प्यार भरे गीतों के सफर में गीतों को एंजॉय करते हुए, सारी तकलीफों को भुलाते हुए, प्यार से एक प्यारी सी मुस्कुराहट को सजाते हुए चले लेते हैं ये अगला प्यारा सा गीत। और ये है फिल्म आज़ाद से लिया हुआ। और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि ये प्यार भरे जो गाने हैं हम आपके लिए ही चुनकर लाते हैं। और इस गीत के बाद आते हैं अभी थोड़ी ही देर में आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट छोटी सी बात को लेकर।

7:38 होने को हैं और आज की छोटी सी बात, हो सकता है आपने कई सारे रील्स में इस बात को सुना होगा, देखा होगा, पर कई बार कहते हैं ना, ये सारी छोटी छोटी बातों को जीवन में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी और बिल्कुल सच्ची मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है, पर कब कहां कौन सी मेहनत करनी है ये जानकारी रखना भी उतना ही जरूरी होता है। जीवन में पहले क्या जरूरी है इसको समझना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम प्राथमिकता उन सारी चीजों को देते हैं जो उतनी आवश्यकता होती नहीं है, पर हम अपनी एनर्जी कुछ ज्यादा ही लगा बैठते हैं और फिर अंत में रोने का समय आता है। चलिए इसी पर आधारित आज की एक छोटी सी कहानी, जो एक प्रोफेसर साहब ने क्लास में बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के रूप में बच्चों को समझाने की कोशिश की। और एक बार एक प्रोफेसर जी एक कांच की बड़ी सी शीशी, बड़ा सा जार में बड़े बड़े पत्थर भरकर क्लास में लेकर आए और टेबल पर रख दिया और रखकर छात्रों से पूछा कि बच्चों आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस जार में ये खाली है या भरा हुआ है। तो बच्चों ने कहा, सर जी ये तो पूरी तरह से भर चुका है। तो सर ने पूछा कि क्या इसमें और कुछ हम डाल सकते हैं। बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें तो जगह है ही नहीं, बड़े बड़े पत्थर आपने डाल दिए हैं तो ये तो पूरी तरह से भर चुका है। तब प्रोफेसर जी मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ भरा हुआ तो है, पर बिल्कुल इसमें और भी चीजें डाली जा सकती है। तो बच्चे हो गए अचंभित, बच्चे कहने लगे, वो कैसे सर। तो उन्होंने जो शीशा था, शीशे का जार था, उसमें बड़े बड़े जो पत्थर थे लगभग वो पूरी तरह से भरा हुआ था। तो सर ने छोटे कंकड़ों को लेकर उसमें डालना शुरू किया। अब जो छोटे कंकड़ थे वो अपने आप बड़े पत्थरों के बीच में अपनी जगह बनाने लगे। जैसे ही कंकड़ फिनिश हुए तो प्रोफेसर जी ने बोला, तुम्हें लगता है इसमें और कुछ डाला जा सकता है। तो बच्चों ने कहा, सर अभी तो बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है, इसमें क्या जाएगा। कहा, सर ने कहा, नहीं नहीं सोचो, अभी भी इसमें बहुत जगह बाकी है। तब सर ने क्या किया, प्रोफेसर साहब ने जार में रेत डालना शुरू की और धीरे धीरे करते हुए जो रेत थी वो बड़े पत्थरों के बीच और छोटे कंकड़ों के बीच अपनी जगह बनाने लगे। और ऐसे करते हुए रेत भी बिल्कुल उसी बड़े से जार में समाहित हो गई। फिर सर ने फिर पूछा बच्चों से कि बच्चों अब तुम्हें लगता है इसमें और कुछ जाएगा। बोला, सर असंभव है, अब तो इसमें कुछ भी नहीं जा सकता। सर ने कहा, गलत जवाब। इसमें सर ने फिर अंत में पानी डालना शुरू किया और बिल्कुल पानी भी अपनी जगह बनाने लगा। नीचे से लेकर ऊपर तक पानी भी उसी जार में समाहित हो चुका। फिर प्रोफेसर

साहब ने बोला कि अगर आप पहले रेत या पानी डालते तो बेशक बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह बचती ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखकर बच्चे हैरानी में पड़ गए कि ये सर जो हैं वो समझाना क्या चाह रहे हैं। तब एक बच्चे ने कहा, सर इस जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया है इससे हमें क्या फायदा, हमें क्या सीखने को मिला। तो सर ने कहा, बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा तुमने, मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ये जो जार है ये हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बड़े पत्थर है ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतें हैं, जैसे कि हमारी सेहत, हमारा परिवार, हमारे सपने, हमारी ईमानदारी, हमारी आत्मिक और मानसिक शांति। ये जो कंकड़ है ये रिप्रेजेंट करते हैं उन चीजों को जिनकी इतनी ज्यादा, मतलब ये उतने जरूरी नहीं, जैसे कि नौकरी, घर, गाड़ी आदि। रेत जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी, बेकार की बातें, फालतू चिंताएं। और पानी जो है वो उससे भी छोटी चीज जो हमारे समय को व्यर्थ करती है। इसीलिए सीख बस यही है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों को पहचानिए, जो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, और इसे समय दीजिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों को पहले जगह देंगे तो जरूरी चीजों को कभी समय नहीं दे पाओगे। सही प्राथमिकताएं तय कीजिए, तभी जिंदगी संतुलित और सफल बनेगी। जो जरूरी है उसे इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी सब बाद में। पर हम क्या करते हैं, जो बिन जरूरी चीजें हैं उनको सबसे अधिक समय देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, बेकार की बातें, बेकार की चिंताएं। और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा परिवार और हमारा स्वास्थ्य, उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं। इसीलिए तो उलझने होती है मेरे दोस्त। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए ना तो जिंदगी सेट है। जिंदगी जैसी है उसे अपनाइए, दूसरों को दिखावे में कभी मत आइए। देखा देखी में जिंदगी नहीं बिताई जाती मेरे दोस्त, सिर्फ चिंताएं बढ़ती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है और परिवार हमसे दूर हो जाता है। तो आज की छोटी सी बात आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। और बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें अगर जीवन में उतारी जाएं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढा जा सकता है। इसी के साथ प्यार भरी मुस्कुराहट को सजाए हुए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: सात बजकर 50 मिनट और जितने भी लोगों ने इस वक्त फोन के माध्यम से मैसेज के माध्यम से हमारा साथ दिया है, बिल्कुल आपको दिल से थैंक यू कहेंगे। और किसी ने क्या लाजवाब कहा है कि भाई मेकअप की उम्र में अच्छे काम कर लीजिए क्योंकि चेकअप की उम्र में तो हो नहीं पाएगा, और बिल्कुल तब तक तो पैकअप का टाइम हो जाएगा, इसीलिए अच्छे काम।

काम करते चले, अच्छे कर्म करने से ही दिल को सुकून मिलता है मेरे दोस्त। किसी को दुख पहुंचाने से आज तक ना किसी को खुशी मिली है, ना कभी किसी को खुशी मिलेगी। और चलिए इसी के साथ आपको खुशी पहुंचाने में हमारा भी एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हम तो अपनी खुशी की बैंक को हमेशा भरा हुआ रखना चाहते हैं, और इसीलिए आपका प्यार से साथ देते हैं। आपके दिल को खुश करने की हमारी ये छोटी सी कोशिश हमेशा जारी रहेगी, इसका वादा करते हैं। और इसी के साथ चलिए, 7:51 हो चुके हैं और प्यार भरे इस सफर में नोएल फ्रांस से गायत्री जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटे अजय, मामी है कल्याणी मोहन, मेबर्ग से मोताइलोंग से साथ दे रही हैं उनकी प्यारी भाभी शकुंतला, और आपकी प्यारी सखी गीता बाई भी हमेशा हमारा साथ देती है उनके सभी परिवार के साथ। आपको बहुत बहुत प्यार। वाकवा से जुड़ी हुई हैं शोभा जी, साथ है अनुषा, शर्वीना, अवनीश, अर्णवी, सभी पूरन परिवार, और आपकी प्यारी बहनें हैं मोचिदास से प्रेमिला जयमंगल और वीना जी, और आपकी सखी राधा बाल गोबिंद। नोएल फ्रांस से मानती जी जुड़ चुकी हैं, उनकी दो प्यारी बहनें अनिंती, आरती, और साथ है अमिक्षा, उर्वशी, अनुक्षा और भव्य, पुष्कल और हितांशु के साथ। आप भी परिवार के सहित हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत प्यार। काठरबोन से माला सुमारू जी अपने पति सूर्यदेव के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं और रेडियो को बिल्कुल सुनना बहुत पसंद करती हैं। आपका प्यार भरा मैसेज सुबह 6 बजे कभी नहीं चूकता, और बिल्कुल कभी ना भी आए तो हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चलिए यहाँ पर फ्लोरियाल से माधुरी जी का भी मैसेज सुबह सवेरे 6 बजे में आ चुका, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बंधन जी हमेशा क्लाविट से साथ देते हुए, अपनी पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें चंदनी, बिंदु, कुमारी, और आपके सभी दोस्त जो बहुत ही दिल से, बहुत ही प्यार से हमारा साथ देते हैं काम पर से। पोफेया से है गीता जी, प्यारे पति रोहित के साथ, तीन प्यारे नाती आदित्य, आरव, तनिष, और साथ है नातिन जानवी, और तीन बेटे तीन बहुओं के साथ। क्योपिप से गीता जी जुड़ी हुई हैं, घोंबुआ से हैं शिवरानी जी, सभी सुनाही परिवार के साथ। आपके बेटे सुधीर शर्मा सुनाही जो है काठरबोन से, पत्नी रोशनी, नाती है शरीश, बहु शिखा, साथ है नाती शिवान, साथ है बेटे राज और आरती, बहू है आरती। जी हाँ, ये आप हमारा साथ दे रहे हैं गौबुआ से, बेटे यश, बहू है बिल्कुल अंजलि, और आपके बेटे कबीर के साथ। काठरबोन से हैं बेटी शर्मिला सीचन, नातिन है उर्वशी रघुबा, और आपकी प्यारी बहन कृष्ण कुमारी गौरी शंकर यूके से। राजन लक्ष्मण जी हमेशा लाफलोगा से जुड़े रहते हैं, पत्नी माला और दो बेटियां प्रार्थना और प्रगति के साथ, और आपकी प्यारी बहन और भगिनी है उर्मिला तुलसी। चलिए यहाँ पर कौंदेमास से हमेशा साथ देती हैं प्रेमिला सिगुलाम, आपकी प्यारी बहनें रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार फ्लाक्स, खुशमा फ्लाक्स से, और अनसुया राम के लावन त्रियोले से। से हमेशा गायत्री जी भी जुड़ी रहती हैं, आपकी बहन अमृता, साथ है उनकी तीन प्यारी बेटियां नेहा, क्षिति, दिव्या, बेटे हैं सुधीर और कमलेश, बहू है सुधा, आपकी प्यारी भाभी मीरा, उनकी दो प्यारी बेटियां गिरिशा और मेधा के साथ। अनिता लाल जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपके मैसेज के लिए भी कहेंगे थैंक यू। गोगा परिवार, ईतू परिवार, लाल जी परिवार और नागेश्वर परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोडाल बेया से, थैंक यू अगैन। रोज बेल से नवीन लक्ष्मण जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं प्यारी पत्नी चित्रा के साथ, और साथ दे रहे हैं निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबक से, ललिता और धनराज चरण जी हैं प्यारी बेटी स्वीटी के साथ मोडाल बेया से, राज और अमृता उबिलक न्यू ग्रोव से, और रमेश और प्रीति जी गौबुआ से, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। श्यामा रघुनंदन जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गौगोप से, प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, और साथ है केशव और युधीश, साथ दे रहे हैं आपकी दो प्यारी सखियां वीना रामफल और विश्वानी जी। ग्रांड रिवर साउथी से शीला जी भी जुड़ चुकी हैं, साथ है आपके पति साजन, बेटा है विकास और गौसों, और यहाँ पर बिल्कुल लक्ष्म सी गोबिंद जी का भी मैसेज आ पहुँचा है, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। देवी जी आपका भी मैसेज बहुत ही प्यार से हमें मिल चुका है। अमृता गंगू वैद्य से साथ दे रही हैं सभी गंगू परिवार के साथ, दो प्यारी बेटियाँ, और रिवेजपुर से जुड़े हुए हैं उदय,

जी और आपकी प्यारी पत्नी है संगीता, दो प्यारी बेटियां स्मृति और कीर्ति, दामाद है नागेश, साथ है कियान और आपके समधी और समधन बुआशेरी से। और आज आपके पिताजी का जन्मदिन है प्रसन्न, जिनका नाम था 93 इयर्स के होते अगर आज जीवित होते तो। चलिए वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। कमला जी हमारे साथ है काटकुकु से, रामन और सीपोल परिवार के साथ इंदिरा लौटन जुड़ चुकी हैं। आज आपकी प्यारे नातिन का जन्मदिन है, आपने उनका नाम नहीं लिया और उनके मम्मी पापा की ओर से, खासकर सुंदर पाल सिंह परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार। मोका से सुदेवी जी आप भी जुड़ चुकी हैं आपके पति और बच्चों के साथ। सुनीता जी साथ दे रही हैं गोप से, तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी के साथ। हाईलैंड से है उषा जी कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ। और आज आपके दामाद अनिल का जन्मदिन है जो है न्यू ग्रोव से, पत्नी अंजू, बेटियाँ हैं अक्षिता और कविशा, साले साहब है अश्विन और नाती है अश्मित की ओर से, और खासकर सासू माँ उषा की ओर से बहुत सारा प्यार। बॉम्बू से जुड़ी हुई हैं लक्ष्मी जी अक्षय और आशनी के साथ। सर जूलिया विलास से साथ दे रही हैं नीता खेदनी, सभी खेदनी परिवार के साथ और खासकर आपकी सखी स्वादिका बिलवेदिया से। वाशेरी से लीला जी जुड़ चुकी हैं, फुलवंती जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं, पति देवानंद, बेटी भावना, बेटा उषण और आज आपके भगिने शान का जन्मदिन है, मम्मी रेशमा, पापा शंकर। और 27 तारीख को, जी हाँ 27 अगस्त को रेशमा जी और शंकर ने शादी की सालगिरह मनाई, उसी दिन शंकर जी का जन्मदिन भी था। चलिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। राम खिलावन, निपुल, नाहन और बाल गोविंद परिवार के साथ MBC की टीम के नाम करती हैं आप ये अगला गीत। विश्वानी जी पुत्र दो आमलेट से जुड़ी हुई हैं, इंदिरा, रीटा, शारदा और सुविता भी जुड़ चुकी हैं। लीलो जी घोंबुआ से हैं, रोजबेल से जुड़ी हुई हैं सकुन, ईवा और शेन के साथ। और मोताइलोंग से साथ दे रही हैं गीता जी। और यहाँ पर विश्वानी दुमन का भी मैसेज आ पहुँचा है, कहती हैं शुभ दिन, थैंक यू सो मच। तो चलिए दिल में प्यार भरे हुए लेते हैं इस अगले गीत को, और इसी गीत के साथ जुड़ेंगे हम 8 बजे के भोजपुरी समाचारों के साथ। शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज़ में रखा हुआ फिल्म CID का ये प्यारा सा गीत।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजिल के हाथ पर चलता। नमस्ते, आवाज़ भोजपुरी में समाचार सुने जा। लगभग एक महीना की छुट्टी के बाद आज संसद के वापसी पर पीएमक्यूटी में निवेश, कैसीनो, चुनावी जांच और अद्रियानो पेरिन के मौत जैसन संवेदनशील मुद्दा पर चर्चा हुई। एकर संगे ही जोले जोंगो के इस्तीफे के बाद फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के सदस्य चेतन बाबूलाल पहल का हला विपक्ष के नेता के रूप में अपन सीट संभाली और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से अपन पहला प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन पूछियन। संसद में पेश हुई होला रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल के उद्देश्य रोड रेज, नशा में गाड़ी चलाए के और घातक हादसा पर सजा सख्त करे के है। आज राज्यसभा में परिवहन मंत्री द्वारा पेश करा जाए होला के बाद विधेयक पहल का और दूसर का पढ़त से गुजरी, फिर कमिटी स्टेज में समीक्षा के बाद तीसर का पढ़त खातिर आई। नीलकंठ डल्लू लेबर पार्टी और जे ओएस इस्तीफा दे के पोल बेहोशे के फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस में शामिल हो गल बा। उनकर उबोलेलन कि ई फैसला पैसा या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा

तेर नए बकेर बेहतर शासन व्यवस्था और राजनीति करे के एगो नवा तरीका के उनकर दृष्टिकोण के आगे बढ़ाए खातिर है। साबलनुआ में होल घटना के बाद पुलिस चार चीनी मजदूर से पूछताछ करलन। मृतक आदमश होम जुबा के परिवार के आरोप बाटे कि मवत से पहला विदेशी मजदूर ऊपर हमला कर ले रहल। आज 1 सितंबर से मौर्य के डाक या कुरियर से आयातित व्यावसायिक पार्सल और नमूना परी 150 रुपया के गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू कर देवल कलबा। और दूसरे देश की खबर में इंडोनेशिया बोनियो और सुमात्रा में जंगल के आग और धुआं के रोके के प्रयास तेज कर थवन से जिससे ओहांगुतान के आवास नष्ट हुई से उनकर प्रजाति खतरा में बाटी। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते। आवाजा मरनी और मैयत की खबर सुने जा। नोवेल फ्रांस में दो कोरी नौ बरिस के काहौत नवों के श्री अशोक कुमार करमल जी विशाल नाम से जस्ती जानत जात रंजा गुजर कल हवन। उनकर माटी आज फजर के 9 बज के आधा उनकर पत्नी पिंकी और भाई धीरज करमल के घरे नोवेल फ्रांस से उठा के माही जानी रोज बल्कि शमशान भूमि ले जावल जाए। शनफिल रोड रिविया चुगांपा में 3 कोरी 6 बरिस के 87 सीजों के श्री देवानंद राम भरत जय जोश नाम से जस्ते जाने ते जात्रा रंजाओ गुजर कल हवन। ओकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा ओकर पत्नी कविता राम भरत के घरे शनफिल रोड रिविया चुगांपा से उठा के उत्तरी रिविया चुगांपा के शमशान भूमि ले जावल जाए। पॉइंट डिस्नी रोड बोवालो में 3 कोरी 7 बरिस के 87 सीटों के श्रीमती ललिता गुलजौ पैदाइशी नाम बुलक सिंह आर जे अमृता नाम से जस्ती जानत जात्रलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर घरे पॉइंट डिस्नी रोड बोवालों से उठा के तोम्बो में ब के शमशान भूमि ले जावल जाए। जबुलेन थ्रोबिश त्रियोले में 3 कोरी 18 बरिस के 87 सीटों के श्री बाबू राव दुखी जे विजय नाम से जस्ती जानत जात्रा लंजाओ गुजर कल हवन। ओकर माटी आज दिन के 3 बजे ओकर पत्नी जयंती दुखी के घरे जबुलेन थ्रोबिश त्रियोले से उठा के त्यामिनिस त्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। आवोकाई स्ट्रीट मौलाशो में 3 कोरी 10 बरिस के 87 सीटों के श्रीमती शीला सिचन पैदाइश नाम मंगरा गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 11 बजे ओकर बेटा राकेश सिचन के घरे आवोकाई स्ट्रीट मौलाशो से उठा के कातरकोको के शमशान भूमि ले जावल जाए। ब्लॉक M51 सीतेकुद्दो सैंपिया में 3 कोरी 6 बरिस के 87 सीजों के श्रीमती अरलावादी मारियान जे शारदा नाम से जस्ती जाने तेजांथरलन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर घरे ब्लॉक M51 सीतेकुद्दो सैंपिया से उठा के सियाकोंस्तों सैंपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। बैलेंस रोड कारोलिन बेरिया रिविया सेश में 4 कोरी 3 बरिस के 83 सीजों के श्रीमती सूरजमुनि हलकोरी पैदाइशी नाम इतवारिया आर जे नटवा नाम से जस्ती जाने तेजात रनजाओ गुजर कल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर घरे बैलेंस रोड का होलिन बेलेर वेसेश से उठा के लालूगा का होलिन के शमशान भूमि ले जावल जाए। दीनदयाल स्ट्रीट कोगैम्बो रिविया चुगांपा में 3 कोरी 13 बरिस के 73 सीजों के श्रीमती चंद्रानी बजम्बाली पैदाइशी नाम सखापानी आर जे गीता नाम से जस्ती जाने तेजात रनजाओ गुजर कल हवन। ओकर माटी आज दिन के 2 बज के आधा ओकर बेटा अश्विन बजम्बाली के घरे दीनदयाल स्ट्रीट को कह वो रिविया चुगांपा से उठा के लावांचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। रेजिडेंस जासमे नोत्र दाम में 2 कोरी 14 बरिस के 54 सीजों के जनाब शेख मोहम्मद अली खान बुजरागी जनाब शेख मोहम्मद अली खान बुजरागी जे अली नाम से जस्ती जाने तेजात रलंजा इंतकाल कर गल हवन। ओकर जनाजा आज दिन के 11 बजे ओकर घरे रेजिडेंस जासमे नोत्र दाम से उठा के सबले आगे नमाज जनाजा खातिर नूरे मोहम्मदी मस्जिद ले जावल जाए। फिर दफनाए खातिर रिश्ते अक्का कब्रस्तान पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स में 3 कोरी 15 बरिस के 57 सीजों के श्री जदुनंदन सिवराज जे अनिरुद्ध नाम से जस्ती जाने तेजात्रन जाओ गुजर गल हवन। ओकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा ओकर पत्नी श्रीमती लीलावती सिवराज के घरे पाल्मस्टोन रोड फिनिक्स से उठा के आलिब्रियों के शमशान भूमि ले जावल जाए। पावे एवेन्यू इजिडो रोज में 2 कोरी 14 बरिस के 57 सीजों के श्री रविन सिंह रामहित जे रवीन नाम से जस्ती जाने तेजात

0: रणजाओ गुजरकल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर बेटा अखिलेश सिंह रामहित के घरे पावे आवनी जीरो हाउस से उठा के बिलमल के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,
3: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
4: रेडियो मॉरिशस पर, रेडियो मॉरिशस पर।
3: एक छोटी सी मुलाकात और एक बार फिर सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूं रत्ना, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूं और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चिंटू जी के साथ। जी हाँ, जो अपना जन्मदिन मनाएंगे बिल्कुल 4 तारीख को। वैसे तो चिंटू जी बिल्कुल सभी के दिलों में है और कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही खास जगह बना ली बॉलीवुड इंडस्ट्री में। हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर साहब की। 4 सितंबर 1952 को जन्मे और 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हुआ। हिंदी फिल्मों में एक अभिनेता के रूप में उन्होंने काम किया और ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक रह चुके थे और वो एक बाल कलाकार के रूप में बिल्कुल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्हें बॉबी फिल्म के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ और साथ ही साथ 2008 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी वे हो चुके हैं। और बिल्कुल एक लाजवाब जर्नी, और उन्होंने उनकी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में एक शानदार भूमिका निभाई।

0: और 1970 में उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत इसी शायर के साथ हम करेंगे।
1: शायर तो नहीं,
0: अच्छा मतलब वो शायर नहीं थे, वो तो थे बढ़िया कलाकार।
1: नहीं
0: हम तो मजाक कर रहे हैं। एंजॉय कीजिए ये गाना शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

0: जी हाँ, आज हम ऐसे ही शायराना अंदाज के ऋषि कपूर के साथ बात करें। वैसे उनको शायरी का कोई शौक तो नहीं था, पर बस इसी गीत के साथ वे बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो चुके थे।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: फिलहाल उन्होंने 1973 की, जब हम बात करें 1973 से लेकर 2000 के बीच में, उनकी 92 फिल्में उन्होंने की और रोमांटिक लीड के रूप में वे बहुत ही प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए। दो दुनी चार में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 2011 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स पुरस्कार दिया गया था और कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने 2017 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने 2008 में फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था और वे 1973 से 1981 के बीच 12 फिल्मों में अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ वे नजर आए थे। हालांकि उनकी शादी 1980 में उनकी शादी हुई थी। और बिल्कुल जैसे हमने शुरुआत में बताया, 30 अप्रैल 2020 को उनका बोन मैरो कैंसर के कारण उनका निधन हुआ 67 वर्ष की आयु में, यानी 67 वर्ष की आयु में वे इस दुनिया को छोड़ चले। प्रारंभिक जीवन की जब हम बात करें तो कपूर का जन्म, यानी ऋषि कपूर साहब का जन्म पंजाब के कपूर परिवार में मुंबई के चेंबूर में हुआ था और वो विख्यात अभिनेता फिल्म निर्देशक राज कपूर के पुत्र थे और अभिनेता पृथ्वी राज कपूर के पोते। उन्होंने चैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर मामा

0: थे प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ, और चाचा रहे शशि कपूर और शम्मी कपूर, यानी फिल्मी जगत से उनका नाता बचपन से ही जुड़ा हुआ था। ऋषि कपूर स्वर्गीय राज कपूर के बेटे थे और पृथ्वीराज कपूर के पोते रहे, और परंपरा के अनुसार उन्होंने भी अपने दादा और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में अभिनय किया और वे एक सफल अभिनेता के रूप में उभर कर आए। मेरा नाम जोकर उनकी पहली फिल्म थी और जिसमें उन्होंने अपने पिता के साथ बचपन का रोल, यानी उनके पिता के बचपन का रोल उनको दिया गया था। बतौर मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बॉबी, जिसमें उनके साथ नजर आई थी डिंपल कपाड़िया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी वैसे 22 जनवरी 1980 में हुई थी। ऋषि कपूर के दो संतानें रणबीर कपूर, जो हिंदी सिनेमा के जगत के दिग्गज अभिनेता बन चुके हैं, और रिद्धिमा कपूर जो कि एक ड्रेस डिजाइनर है, करिश्मा कपूर और करीना कपूर उनकी दो भतीजियां, आलिया भट्ट उनकी पुत्रवधु, जो निर्माता एवं निर्देशक महेश भट्ट की पुत्री हैं, और कपूर और अपने सोशल मीडिया पर भी उनकी टिप्पणियों के लिए बहुत ही विवाद में रहे थे। वैसे उनका जब निधन हुआ बिल्कुल 2018 में वे डिटेक्ट हुए कैंसर से, जिसके बाद लगभग एक वर्ष तक उनको न्यूयॉर्क में उनका इलाज चला। तत्पश्चात भारत वापसी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखाई देने लगे, जिस बीच उनका इलाज चलता रहा, और दो वर्षों तक चली ये पीड़ा के बाद ऋषि कपूर जी का निधन 30 अप्रैल 2020 को बोन मैरो कैंसर के कारण हुआ, और जटिलताओं से मुंबई में बिल्कुल 67 वर्ष की आयु में वे हमें छोड़ चले। और अपने अंतिम समय में भी वे मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती हुए थे, और इस बीच वे अपनी फिल्म शर्माजी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे। वैसे हम आपको ये भी बताते चले, शर्माजी नमकीन इस फिल्म में
1: एक छोटी सी मुलाकात,
0: सबसे हटकर बात ये रही कि इस फिल्म की आधी शूटिंग हुई थी ऋषि कपूर साहब के साथ और आधी शूटिंग परेश रावल जी के साथ, क्योंकि इस दरमियान वे ऑन एंड ऑफ शूटिंग पर आते रहे, और इसी बीच कुछ ऐसा भी हुआ जहां पर शूटिंग को बीच में रोकना पड़ा। पर रोक देना ये सही निर्णय नहीं था, और इस पर खुद रणबीर कपूर ने कहा था कि इस फिल्म का बहुत ज्यादा हिस्सा परेश रावल साहब द्वारा शूट किया गया था। लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी रही इस फिल्म की, और अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। बहुत ही लाजवाब सा बिल्कुल इस फिल्म का जो अभिनय रहा, बहुत ही मज़ेदार। और वैसे उनकी कई सारी फिल्म्स आई, और जैसे हमने बताया कि 92 के करीब उन्होंने फिल्में की थी, तो चलिए कुछ ऐसी फिल्मों के नाम हम आपको गिनवाते हैं। बिल्कुल 1970s के दौर में आई थी मेरा नाम जोकर, 1973 में ही आई फिल्म यादों की बारात, 1973 में बॉबी, 74 में जहरीला इंसान, 75 में राजा, 75 में ही रफू चक्कर कॉमेडी मूवी, 76 में कभी कभी, 76 में ही कई सारी ऐसी मूवी आई जैसे बारूद, लैला मजनू, रंगीला रतन, 77 में चला मुरारी हीरो बनने, अमर अकबर एंथनी, दूसरा आदमी, 78 में आई फिल्म नया दौर, पति पत्नी और वो, बदलते रिश्ते, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, 79 में झूठा कहीं का, सलाम मेम साहब, सरगम, 80s में आई धन दौलत, आपके दीवाने, दो प्रेमी, कर्ज, 81 में नसीब, जमाने को दिखाना है, 82 में प्रेम रोग, ये वादा रहा, दीदार है यार, 83 में आई बड़े दिलवाला, साथ आई कूली, 84 में दुनिया, 84 में ही ये इश्क नहीं आसा, 85 में सितमगढ़, 85 में जमाना, सागर, तवायफ, राह ही बदल गए, फिर आई 86 में दोस्ती दुश्मनी, 86 में नसीब अपना अपना, एक चादर मैली सी, नगीना, 87 में खुदगर्ज, सिंदूर, हवालात, प्यार के काबिल, घर घर की कहानी, विजय, हमारा खानदान, 89 में आई घराना, हथियार, बड़े घर की बेटी, चांदनी, और खोज, साथ ही साथ 90s के जमाने में आजाद देश के गुलाम।

शेषनाग अमीरी गरीबी 91 में रंगभूमि, अजूबा घर परिवार, हिना और बंजारन 92 में इंतहा प्यार की, हनीमून बोल राधा बोल, दीवाना दामिनी, साधना साहिबा, श्रीमान आशिक इज्जत की रोटी, गुरुदेव 94 में घर की इज्जत, मोहब्बत की आरजू, पहला पहला प्यार, प्रेम योग, साजन का घर, ईना मीना टिका, याराना, साजन की बाहों में 95 में हम दोनों, दरार, प्रेम ग्रंथ 97 में कौन सच्चा कौन झूठा, जय हिंद 2000 के दौर में आई फिल्म कारोबार, राजू चाचा, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ये है जलवा, लव इट टाइम्स स्क्वायर 2003 में कुछ तो है, तहजीब, हम तुम, प्यार में ट्विस्ट, फना लव की चक्कर में 2007 में ओम शांति ओम में उनका छोटा सा रोल रहा, नमस्ते लंदन, बिल्कुल कैटरीना कैफ के पिता के रूप में नजर आए थे, डोंट स्टॉप ड्रीमिंग 2007 में, 2008 में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, 2008 में हल्ला बोल, कल किसने देखा, लव आजकल, दिल्ली 6 चिंटू जी, लक बाय चांस, दो दुनी चार सदियां, पटियाला हाउस, टेल मी ओ खुदा, जब तक है जहां, हाउसफुल 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अग्निपथ, चश्मे बदूर, औरंगजेब, डी डे, बेशरम, शुद्ध देसी रोमांस, वैसे कई सारी फिल्में हैं और बिल्कुल कपूर एंड सन्स, द बॉडी, मंटो, मुल्क, सनम रे, वेडिंग पुलाव और बिल्कुल कुछ फिल्मों में वे बहुत ही चुलबुले से रूप में नजर आए थे। वैसे आपको याद दिला दे, फिल्म हम किसी से कम नहीं, सरगम, सरगम में उन्होंने काम किया था जया प्रदा जी के साथ और ऐसा कहा जाता है कि जया प्रदा जी का रोल इसमें गूंगे के रूप में था। उसका कारण बस यही था कि वो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस रही और उन्हें हिंदी बोलनी उतनी इजी नहीं लग रही थी, इसीलिए उनको ये रोल दिया गया था। वैसे सच क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ, कुछ ऐसे ही गीतों के साथ आपका मनोरंजन करेंगे इसी सेगमेंट में।

भाई जहाँ पेयरिंग की गई थी अमिताभ साहब की ऋषि कपूर के साथ, और क्या गाना बना था ये। लंबू जी, बिल्कुल सही पहचाना, फिल्म कूली।

वैसे आपने देखा होगा कि ऋषि कपूर का एक अलग ही स्टाइल था, उनके स्वेटशर्ट्स पहनने का जो अंदाज था वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना मशहूर हुआ था। और इसी के साथ लव ट्रायंगल सागर में वे नजर आए थे कमल हसन डिंपल कपाड़िया के साथ, और वे खुद भी इस फिल्म में थे, लाजवाब जोड़ी रही।

भाई गाने तो इतने सारे हैं, पर हम इस सेगमेंट में कुछ ऐसे ही खास खास गाने आपके लिए लेकर आए हैं। चिंटू जी, बिल्कुल एक तरह का ट्रिब्यूट हम दे रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस फिल्म में वे नजर आए थे स्वर्गीय श्रीदेवी के साथ, और वैसे इस गाने में श्रीदेवी साहब ने, श्रीदेवी जी ने भी गाना गाया है, बिल्कुल ऋषि कपूर साहब के साथ इस फिल्म में वे नजर आई थी। व्हाट अ लवली जोड़ी।

नाम लिख लिया। बिन्नू

बिल्कुल, कपूर प्रोडक्शन की फिल्म आई हिना, और इस फिल्म में राज कपूर साहब ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था, और इस फिल्म में राज कपूर साहब ने कास्ट किया ऋषि कपूर साहब को एज अ लीड एक्टर अश्विनी भावे और पाकिस्तानी एक्ट्रेस जीबा बख्तियार के साथ।

भाई कितनों के दिल टूटे थे क्योंकि कितनों ने यही सोचा कि इस उम्र में भी ऋषि कपूर साहब ऐसी यंग एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं, जहां उनको मौका नहीं मिलता था वहां ऋषि कपूर साहब का चांस लग ही जाता था। दीवाना फिल्म में उनका रोल बिल्कुल पेयर किया गया था दिव्या भारती के

भाई कुछ भी कह लो, ऋषि कपूर साहब थे ही इतने क्यूट कि हर एक्ट्रेस उनके साथ बहुत ही प्यारी लगती थी। जहां पर फिल्म अनमोल में उनको मौका मिला मनीषा कोइराला के साथ काम करने का, और मनीषा कोइराला ने उनको दिया एक ऐसा क्रिटिक कि भाई आप तो इतने उम्र में हैं और आप यंग एक्ट्रेस के साथ काम करते हुए अच्छे लगते हैं क्या, तब ऋषि कपूर साहब ने मनीषा कोइराला के साथ कहा था कि अगर जिंदगी रही ना तो तुम्हारी बेटी के भी साथ मैं फिल्म करूंगा और एज अ हीरो बतौर नजर आऊंगा।

भाई इस सुहाने मौसम में आखिरी गाना जो हम जोड़ने जा रहे हैं, ये गाना फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पर। जी हाँ, 102 नॉट आउट। इस फिल्म में ऋषि कपूर साहब 75 ईयर ओल्ड के बेटे के रूप में नजर आए थे और उनके पिता के रोल में नजर आए थे अमिताभ बच्चन साहब, दत्तात्रेय वखारिया, जो 102 साल के थे और अपने बेटे को भेजना चाहते थे वे वृद्धाश्रम। चलिए इसी गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करेंगे और बिल्कुल 102 नॉट आउट फिल्म का ये गाना बहुत ही लाजवाब।

बिल्कुल बडुम्बा का ये गाना था 102 नॉट आउट फिल्म से लिया हुआ। और जैसे हमने बताया इस फिल्म में एक बार फिर ये पेयर नजर आई थी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब ने भूमिका निभाई थी ऋषि कपूर के पापा की। और ऋषि कपूर साहब 75 ईयर ओल्ड के एक वृद्ध इंसान का रोल उन्होंने निभाया था, जहां पर उनके पिता उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। और इस गीत में जो मस्ती अमिताभ बच्चन की आवाज में नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, उससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बाप और बेटे में क्या अंतर रहा होगा। चलिए इसी के साथ हंसते मुस्कुराते इस सेगमेंट के अंत तक हम आ पहुंचे हैं। आखिरी सेगमेंट, आखिरी ये सेगमेंट है बिल्कुल हमारी धरोहर, जहां पर कुछ लाजवाब जानकारी के साथ किरण जान की हमारे साथ शेयर करती हैं। और बिल्कुल एक भोजपुरी गीत का आनंद उठाएंगे उसके तुरंत बाद। तो मुस्कुराते हुए आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर हम फुल स्टॉप देंगे।

0: जीले जुम्बा जुम्बा और ये प्यारे से गीत के साथ आइए स्वागत करते हैं किरण जानकी का हमारी धरोहर कार्यक्रम के साथ अभी उपस्थित। बिल्कुल सुनते हैं उनकी जानकारी।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
3: नमस्ते। हमारी धरोहर में आप सबको की बहुत बहुत स्वागत बा। पिछला सप्ताह हमने एगो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाई लीजा और वह अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जोन हर 23 अगस्त के मनावल जाला। यूनेस्को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन यानी गुलाम लोग के व्यापार और दास प्रथा के एबोलिशन दिवस हर बरिस के 23 अगस्त के मनावेला। साल 2001 में तब से यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल कोइशिरो मात्सुरा सदस्य देश लोग के बोले रलन कि 23 अगस्त एगो अवसर है उ बेहद दुखद गतिविधि के याद करे के जेकर पर बहुत समय तक ध्यान नहीं देवल कर रहल और ओके ख़त्म करे खातिर और ओकर भरपाई खातिर बहुत बखत लगल। मानवतावाद के इतिहास में एक घटना एक गतिविधि के सही जगह देवे में ओकर जो यूनिवर्सल नेचर के ध्यान में रखते हुए काफ़ी वक्त बीत गल। यूनेस्को चाहेला कि ये खास दिन पर जितना भी सदस्य देश बा उ लोग के बढ़ावा देवे के कि उ सब 10 से 15 मिलियन अफ्रीकी गुलाम लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करियन जा और अपन मातृभूमि अफ्रीका से जे लोग निकल के यूरोपीय अमेरिका कैरिबियन और हिंद महासागर के सब कॉलोनी में गुलाम यानी एस्क्लाव के रूप में ले जागल रहल इमें मॉरिशस भी शामिल रहल और एकर संगे यूनेस्को उ करोड़ों गुलाम लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करेला जे लोग इ कॉलोनी में ऐते ऐते दम तोड़ दिले रलन सा काहे कि एगो ऐसन अमानवीय स्थिति में उ लोग के जहाज में ले जाल जात रहल जहाँ पर उ लोग के बुझे होई के उ लोग के हिले के तनको जगह तनको लिस पास नहीं रहल और फिर एस्क्लाव के कहाँ कबो इंसान समझा कर रहल उ लोग संगे बहुत अमानवीय जन बर्ताव बा उ करल जात रहल। 19वीं सदी के शुरुआती 50 बरिस में ग्रेट ब्रिटेन पहला हला यूरोपियन पावर रहल उ जोन स्लेव ट्रेड गुलाम के व्यापार पर रोक लगैलक। 1807 के एंटी स्लेव ट्रेड एक्ट के जरिए जोन 1807 के बाद अमल में आल पूरा ताकत के साथ मॉरिशस में ई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बरतानी सरकार के नियंत्रण में ऐते ही लागू करल गल। फिर भी 1810 और 1820 के बरिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और फ्रांको मॉरिशन जोन स्लेव ओनिंग एलिट रहल मतलब कि जे लोग गुलाम लोग के खुद के मालिक समझत रहलन सा उन लोग के बीच काफ़ी मतभेद होला दशक रहल। नवा गवर्नर सर रॉबर्ट फॉक्वा के बहुत ही कठिन काम रहल फ्रांको मॉरिशन स्लेव ओनर्स जे लोग ब्रिटिश शासन के अंदर रहलन सा उन लोग के बरतानी कानून के पालन करावे में क्या है कि अब सब फ्रेंच लोग मॉरिशस में बरतानी प्रजा बन कर रहलन सा। फ्रेंच ब्रिटिश से लड़ाई में हार के उन लोग के बंदी बन कर रहलन सा। सबसे कठिन कार्य रहल फ्रांको मॉरिशन सेटलर्स लोग के एबोलिशन एक्ट ऑफ 1807 के पालन करावे के। एकर अनुसार सब स्लेव कॉलोनीज में स्लेव ट्रेड चाहत रोक देवे के। इल दे फ्रांस जो नाम फ्रेंच लोग मॉरिशस के दिले रहलन सा ओकर इकोनॉमी बहुत हद तक गुलाम लोग के काम पर निर्भर रहल जोन सार्वजनिक कार्य पब्लिक वर्क्स यहाँ पर होवत रहल उ तो गुलाम लोग ही करत रहलन सा। फिर 1811 से 1827 में हजारन गुलाम मडागास्कर और ईस्ट अफ्रीका से मॉरिशस के बीच के अमानवीय सफर में मर गई लंसा। ये दुखद गतिविधि और घटना हमने के देश के इतिहास के एगो हिस्सा है जोन हर बरिस समस्त मॉरिशन राष्ट्र द्वारा याद करल जाला और लोग के श्रद्धांजलि देवल जाला विशेष रूप से 23 अगस्त के। और यहाँ पर ई दिन पर गुलाम लोग के श्रद्धांजलि

0: dhewe khatir International Slavery Museum ego brihad samaharoh karlak aur har baris ukarela aur Mauritius me jise dekha tha ego intercontinental slavery museum bhiba matlab ki jun pura desh me vyapar hol gulam log ke u sab par ego museum sthapit karal gal aur u museum Mauritius me ba ta e hisab se Mauritius u sab bharpai kare ke pura koshish karta gulam banawal gal log sange u log ke vanshaj log sange कार्यक्रम के ध्यान से सुनला बहुत धन्यवाद नमस्ते
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ
2: चले कर संगे किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बुलब जाओ और किशोर की मियां की आवाज में रखा लेगो बढ़िया भोजपुरी गीत पुरखन के हजार धन्यवाद हाई गीत के संगे आज के कार्यक्रम के हाईजा पर समाप्त करब जा और सब कोई के याद दिलावत है 9 बजे के समाचारों के बाद तो सुने सकबा आज की चर्चा कार्यक्रम प्रस्तुत करता रही सुमिता सरकार जेकर सीधा प्रसारण MBC के तीसरे चैनल पर तू देखे सकबा और एकर संगे फेरो से हई कार्यक्रम के री ब्रॉडकास्ट करल जाए दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन चला फेरो से भेंट कर अब सा तोहर से ठीक 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में तबले नमस्कार।

0: 119 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: मंगलवार 1 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए 9:09। समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा, आपका स्वागत है।
2: नमस्कार सुमित, सभी को नमस्कार। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद संसदीय कार्य इस मंगलवार को फिर से शुरू हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में निवेश, चुनावी जांच और छोटे अद्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। संसद में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। परिवहन मंत्री द्वारा आज विधेयक पेश किए जाने के बाद ये पहली और दूसरी पढ़त फिर कमिटी स्टेज से गुजरते हुए तीसरी पढ़त तक पहुंचेगा। नीलकंठ दलू, लेबर पार्टी और जॉय के बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद पुलबे होशे की फ्रॉ मिलिटों प्रोग्रेसिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका ये कदम न तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और न ही पैसे से प्रेरित हैं। दलू के अनुसार वो बेहतर सरकारी व्यवस्था और मॉरिशस में राजनीति के एक अलग तरीके के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए FMP में शामिल हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ को आज सुबह CCID में मिसे मुस्ताज टेलीफोन टैपिंग और ऑडियो लीक मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस मामले में काउंटर टेररिज्म यूनिट के पूर्व प्रमुख लील राम दियाल को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज 1 सितंबर से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लारेशन

0: के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैम्बल्स पर लागू होगा। 1,000 रुपये से कम मूल्य की शिपमेंट पर शुल्क एजेंट या कैरियर वसूलेगा, जबकि 1,000 रुपये से अधिक के शिपमेंट में इसे सिंप्लीफाइड कस्टम्स डिक्लारेशन में शामिल किया जाएगा। एमओआरए के अनुसार शुल्क का उद्देश्य प्रोसेसिंग और कस्टम्स क्लियरेंस की लागत को कवर करना है। विदेश में 63 वर्ष पूर्व गैंग बॉस ड्वान केफ डी डेविस को 1996 में लास वेगास में रॉपर टुपाक शाकुर की हत्या का दोषी पाया गया है। और अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और फिर अपने पिता को खोने के गहरे सदमे के बाद मेसी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट लिखकर संन्यास का ऐलान कर दिया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: मंगलवार 1 सितंबर आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आप सभी को बता दें, आज की चर्चा इस प्रोग्राम को इस समय आप सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर और इसे आप देख पा रहे हैं हमारे MBC प्ले ऐप पर भी। आपको ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। श्रोताओं, अभी की हमारी जो जीवन शैली है वो काफ़ी भागदौड़ वाली हो गई है। हर कोई टेंशन में घिरा रहता है, हर कोई जल्दबाजी में होता है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए उनसे जुड़े हुए जो चैलेंजेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। समय के साथ व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मन की शांति खोजता है, अपने आप को हेल्दी रखने के उपाय खोजता रहता है और आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसी विषय से जुड़ा हुआ है। आजकल योग और मेडिटेशन की बात करें तो समय के साथ लोगों की इनमें रुचि काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मन को तो संतुलित करता ही है और साथ ही ये हमारे जो है स्वस्थ जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। और आज हार्टफुलनेस और मेडिटेशन पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक विशेष जो है मेहमान जुड़ चुके हैं, श्री सतबीर बख्शी जी। सतबीर बख्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और आप जो है श्री रामचंद्र मिशन से जुड़े हुए हैं और आप रामचंद्र मिशन जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इस संस्था की यदि हम बात करें तो इसमें आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के जो है यहाँ पर अपना जो है संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं और साथ ही जो है आप बहुत सारे लेक्चर्स भी देते हैं और थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे अपने बारे में, बताइए हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे आपका हार्टफुलनेस से जुड़ना हुआ।
1: ज़रूर, लेकिन एक मेरी दरखास्त है।

0: पहले कि जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाथ बस प्रेम से जोड़कर आंख बंद करके सुने, क्योंकि जो महसूस करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है
1: जी।
0: तो मैं कॉलेज में था और किसी ने मुझे कहा कि ध्यान करना चाहोगे, मेरा बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं कोशिश कर चुका हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है, गुस्सा भी आता है, एन्जाइटी भी रहती है, कुछ हल चाह रहा हूँ मैं। मैंने गीता के लेक्चर्स के लिए जाता था उस वक्त में, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस के बाद मुझे जो शांति चाहिए थी वो अभी नहीं हो पा रही थी, तो कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। तो तभी ये शुरू किया मैंने और इससे मुझे बहुत फ़र्क लगा।
1: आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं फॉर सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, और कहीं ना कहीं हार्टफुलनेस की बात करें तो ये हार्टफुलनेस होता क्या है, अगर आम शब्दों में हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें समझाना चाहें हार्टफुलनेस के बारे में तो ये होता क्या है?
0: तो हार्टफुलनेस एक आउटरीच प्रोग्राम है जो हमारे गुरु जी कमलेश पटेल जी, जिनको हम प्रेम से दाजी बुलाते हैं
1: जी,
0: उन्होंने ये जो सहज मार्ग सिस्टम ऑफ मेडिटेशन था जो 1945 से शुरू किया गया था, उसका नाम उन्होंने ये दे दिया है ताकि सबको पता चले कि ये दिल से है। मेडिटेशन कई तरह की होती हैं लेकिन जो दिल से हम करते हैं, जो हमारे अंदर बसते हैं, उनके साथ हमने जो एक जुड़ाव करना है
1: जी।
0: तो ये हमारा लक्ष्य है। बाहर हमने बहुत ढूंढ लिया उनको, लेकिन जो हमारे अंदर बैठे थे और हम उनको, उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। सो बहुत ही सिंपल सिस्टम है, बहुत ही इजी, कोई भी कर सकता है, जिसे ज्ञान की भी ज़रूरत नहीं, कोई स्टेटस की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं।
1: आपने सही कहा कि जो चीज़ हम कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर ही है, क्योंकि जिस भी चीज़ को हम बाहर खोज रहे होते हैं कभी कभार चारों ओर खोजने के बाद भी नहीं मिलता है, और एक समय आता है कि हमें पता चलता है कि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर है, लेकिन तब तक समय, जीवन का बहुत जो है लंबा समय बीत जाता है इस बात को समझते हुए। लेकिन आज हार्टफुलनेस की बात करें तो चारों ओर इसकी चर्चा हो रही है, तो अभी के समय में इस चीज़ की इतनी आवश्यकता कैसे बढ़ गई है?
0: ज़रूरत ये हमेशा ही थी, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर से निकल गया है, जहाँ देखो कलेश, जहाँ देखो मार धाड़, किस लिए लोग ये सब कर रहे हैं, ये भाग दौड़ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। आज जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जो राम भगवान को बुलाया गया था ऋषियों ने कि देखो कुछ करो, ये दानव आकर ऊपर से ऐसे हमारे जो पूजा है उसको भंग कर रहे हैं
1: जी।
0: उसी तरह से अब आप देखो जिसका कोई लेन देन नहीं है, किसी कोई काम धंधा नहीं है, किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, उनको जाके उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, उनके ऊपर बम डाल रहे हैं, कोई समझ में नहीं आता कि उनकी किस तरह की मनोस्थिति है
1: जी।
0: तो जब तक ये मनोस्थिति को हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर, अपने निजी लेवल पर हम ठीक ना करें
1: जी,
0: तब तक सारी दुनिया में कैसे होगा? एक इंडिविजुअल बनाता है सोसाइटी, सोसाइटी बनाता है देश, देश बनाता है विश्व, तो शुरुआत तो हमसे ही होनी है। और मेरी जो आशा है वो बड़ों पर नहीं है, बच्चों पर। बच्चे जवान ये इतना बढ़िया पिकअप कर लेते हैं कि आप देखो आज हम सैकड़ों स्कूलों में भारत में ये शुरू करा दिया हमने ध्यान और रिलैक्सेशन, शीतलीकरण, सिर्फ जो हमारे अंदर जो हमने इमोशंस भर रखे हैं उसको जाने दो, बड़े आराम से उसको जाने दो ताकि हमें मुक्ति मिले।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उसके लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है, कभी कभार हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हो रही होती है जाने अनजाने में हम लोगों को दोष देते हैं, संस्थाओं को दोष देते हैं, जो देश का नेतृत्व संभाल रहे होते हैं उनको दोष देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी भी होती है जिस बदलाव को वो जीवन में चाहते हैं देखने के लिए। तो यदि हम बात करें हार्टफुलनेस से तो एक व्यक्ति के भीतर किस तरह का परिवर्तन आता है?
0: हमने ना एक ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी समिट रखा था
1: जी,
0: काना शांतिवनम आश्रम में जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, और उसमें एक संस्था के

0: हेड आए थे, गुरु आए थे, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल बात बोली थी कि आप कितनी शांति बर्दाश्त कर सकते हो, थोड़ी सी शांति मिलती है और फिर हम फिर भाग लेते हैं,
1: भागने लगते हैं।
0: सो इसमें एक्सपीरियंसेस पे एक्सपीरियंस अंदर आते हैं और फिर वो स्थिति आती है जब एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो लय की अवस्था है। तो कोशिश हमारी वो है। आज क्या है, मज़हब में रिलीजन में हम लोगों को उलझाए रखते हैं, ये चाहत है या ये डर है, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये खो बैठोगे या तुम्हारे ऊपर श्राप लगेगा, डरा धमका के रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारे अंदर बसते हैं वो हमारा क्यों कुछ बिगाड़ेंगे, वो तो हमारे करता धरता वही तो हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: तो सभी का एक तो है, कोई किसी का कोई अलग तो नहीं है। तो जो हम जिस बात पे तर्क होता है कि हमने क्या सुना है, हमने क्या पढ़ा है, उसी पे तर्क हो रहा है, जब जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं तर्क का सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अभी की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हैं, कौन किससे आगे जा सकता है। अगर किसी के पास एक घर है तो लोग सोचेंगे कि मेरे पास क्यों नहीं है, उसके कंपटीशन में उसके पास उससे बड़ा वो चाहता है। यानी कि कहीं ना कहीं जीवन के हर एक पल में हम कुछ चाह ही रहे हैं ना। आज एक इच्छा उत्पन्न हुई, उस इच्छा को समय के साथ हमने पूरा किया और एक इच्छा पूरी होते होते दूसरी इच्छा जाग जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन इच्छाओं का तो अंत नहीं हो रहा है, और जब तक ये इच्छाओं का अंत नहीं होगा तब तक शायद मन की शांति को हम पा नहीं सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार है?
0: आपने मेरे शब्द छीन लिए, क्योंकि जो एक एक एक गज़ल है जगजीत सिंह की, कहता है नाम जो मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना। तो जब हम कुछ समझे, हमने एक गाड़ी खरीद ली थी, गाड़ी खरीद ली, चार दिन में उसके आदि हो जाते हैं, वी गेट यूज टू इट, तत्पश्चात वो मिले तो और ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे और ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसी लालच में हम पड़े रहते हैं। जब तक वो अंदरूनी खुशी नहीं मिलेगी, जो अंदरूनी हमारा कनेक्शन नहीं बैठेगा, जो अंदर से हमें जो प्रेम सद्भावना शांति मिलनी वो नहीं मिलेगी, हम बाहर ढूंढते रह जाएंगे। सो जब तक ये हम इच्छाओं को फीड करते रहेंगे, उनको पोषण देते रहेंगे, तब तक ये बढ़ती जाएंगी, इनका कोई अंत नहीं है।
1: तो क्या इच्छाओं को रोकने का कुछ है, ऐसी टेक्निक, कोई है ऐसा तरीका जिससे हम रोक सकते हैं अपनी इन इच्छाओं को? ऑब्वियसली इच्छाएं अच्छी है कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें प्रगति की ओर ले जाती है ना। ये इच्छा शक्ति ही थी शायद किसी की कि आज ये टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, चीज़ें बहुत सरल हो गई है, बहुत आसान हो गई है। लेकिन एक चीज़ का जहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, उस चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। तो किस तरह से हम अपनी इच्छाओं को इस तरह से कंट्रोल करें कि उससे सिर्फ हमें सकारात्मकता मिले और नकारात्मकता से हम दूर रहे?
0: बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और मुझे याद है हमारे गुरुजी मास्टर ने हमें ये बात बताई थी कि दो शब्द हैं अंग्रेजी में, ये है, एक है एस्पिरेशन और एक है एम्बिशन। एस्पिरेशन वो है जो हमें अपने आप से कम्पीट कराता है
1: जी।
0: हम बढ़ना चाहते हैं, हम ग्रो करना चाहते हैं एक तरह से अंदरूनी तौर से, और उसमें कुछ पाने का लालच नहीं होता, हम बनने की इच्छा होती है
1: जी।
0: और जो एम्बिशन होता है वो भारी तौर पे जो हम पाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं
1: जी।
0: तो एक बहुत सटल डिफरेंस है, लेकिन एक इच्छाओं को फीड करता है और एक सबको बढ़ावा देता है, एक सबके वेलफेयर के लिए है, एक इंडिविजुअल वेलफेयर के लिए या लालच के लिए कहिए
1: जी।
0: ये मेन फर्क है। उसको कैसे कम किया जाए, बहुत सिंपल चीज़ है। हमारे पास एक रामबाण है, उसको कहते हैं सफाई की क्रिया। जब तक अंदरूनी जो हमारे एक योगिक क्रिया है, जिससे हम जो हमारे अंदर हमने अनाप शनाप वातावरण से लेके भर रखा है और सोचते हैं कि भी ये मिले तो हमें शांति मिलेगी, नहीं, या हमें खुशी मिलेगी, नहीं, या तो हम सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, नहीं, ये सब जाना है, तो वो सफाई की क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे पास प्रशिक्षक हैं, यहाँ पर करीब 12 प्रशिक्षक मॉरिशस में भी हैं, सब निःशुल्क है
1: जी।
0: आप उनके पास जाइए, बैठिए उनके साथ ध्यान में, और जो काम करना होगा

0: आत्मिक काम वो करेंगे, दिल की सफाई करते हैं, शुरुआत उससे होगी। फिर आप घर पे शुरू करें
1: जी।
0: वो 3 सेशन उनके साथ लें, फिर घर पे शुरू करें। और आपको भी जो आप डेली आप अनाप शनाप हम इकट्ठा कर लेते हैं जाने अनजाने में, उसको भी हम निकालने की क्रिया आपको सिखाएंगे।
1: ओके, मतलब कि इसको, इससे जुड़े काफ़ी टेक्निक्स है जो लोगों को जानना है। और चले थोड़ी देर में जो है कार्यक्रम के अंत में जो है हम एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं अगर आप हार्टफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरह से ये आपके लिए बेनिफिशियल है इस पर जानकारी चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, 4028085 है नंबर हमारा आज के इस कार्यक्रम में। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, तो बेशक आप हमारा साथ दे सकते हैं। अभी के लिए एक छोटे से गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।
2: सब कोई सुना जा, ढेर त्राका नहीं लिया जा, तोशियों बढ़ जाए, जाबेद बढ़ जाए, ढेर सोचिया नहीं।

0: चलिए आज की चर्चा है, इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। आज हम हार्टफुलनेस पर बात कर रहे हैं, योग ध्यान की बात करें तो समय के साथ ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रचलित होते जा रही है, बहुत ही पॉपुलर होते जा रही है। इसके फ़ायदे जितने बच्चों को है, जितने मिडल एज के लोगों को है, उसने ही फ़ायदे इसके बुज़ुर्गों को भी है, यानी कि हर उम्र के लोग जो है हार्टफुलनेस से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। हम श्री सतबीर बख्शी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 30 वर्षों से ज़्यादा आपका अनुभव रहा है हार्टफुलनेस में, तो जब आपने शुरुआत की थी और आज इतने सालों बाद क्या अंतर आप देख रहे हैं समाज में, लोगों के जीवन में, और किस तरह से ये हार्टफुलनेस उनके जीवन में जो है बेहतर बदलाव ला सकता है।
1: दीदी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो मेरे अंदर बदलाव आया, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, शांति है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, देख पा रहा हूँ चीज़ें कैसे होती हैं, परख पा रहा हूँ बिना ओपिनियन के। हमें सिखाया जाता है कि बिना ओपिनियन के आप किस तरह एक वीडियो कैमरा जैसे देखता है, वो कुछ दिमाग नहीं लगाता है,
0: यानी कि आपको जज नहीं कर रहा है,
1: जज नहीं करना है जी। क्योंकि जैसे हम जज करते हैं हमारे घर में, हम माहौल ख़राब करते हैं, वर्क वाली जगह पे काम खराब, मतलब कि माहौल ख़राब करते हैं, तो ये सब जगह दैट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अब जहाँ तक समाज का सवाल है, मैंने एक चीज़ देखी है, आज से 30 साल पहले जब मैं किसी को कहता था ध्यान करो तो सब मजाक उड़ाते थे, ओम करके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, देखो ऐसे करते हैं ना बस। आज किसी को भी आप कहो, कहते हैं चाहिए हल दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वे सब कुछ ट्राई कर चुके हैं जी। और बाहरी तौर से, दिमाग से, इंटेलेक्चुअली आप नहीं अपने आप को शांत कर पाओगे। सो एक्सेप्टेंस जो है जी, ध्यान का बहुत बढ़ गया है जी। और अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। आज हार्टफुलनेस 160 देशों में है, हमारे 17,000 प्रशिक्षक हैं जी। आप जहाँ जाएंगे आपको कोई ना कोई प्रशिक्षक मिल जाएगा और निःशुल्क सेवा करेंगे। ऐप भी है अवेलेबल, हार्टफुलनेस की ऐप है, डाउनलोड करिए, वहाँ पर भी प्रशिक्षक अवेलेबल होगा, ट्रेनर अवेलेबल होगा जो आपको ध्यान करा सकता है, आप खुद भी ऑडियोज लेके कर सकते हैं जी। जो चेंज मैंने देखा है वो ये है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है और लोग चाहते हैं कि अभी उन्हें अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो विश्व शांति नहीं हो पाएगी।
0: और कहीं ना कहीं अभी जैसे आपने बातों बताया कि पहले के समय में, आज से कुछ साल पहले जब हम ध्यान की बात करें तो लोग इसे पूजा प्रार्थनाओं से ज़्यादा जोड़ते थे, रिलीजन से जोड़ते थे। अभी अवेयरनेस बढ़ गई है, हमारे आसपास इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अलग अलग पहलुओं से जुड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं ध्यान को लोग अब अलग नज़रिए से देखते हैं, इसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, इसे आत्मज्ञान से जोड़ते हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ध्यान का असल मतलब क्या है।
1: दाजी ने बड़ी ब्यूटीफुली बताया है इसको, बोले कि अगर आप अंग्रेजी के डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें ऑक्सफोर्ड में कहते हैं कि जिस किसी एक चीज़ पर मनन करना जी, बार बार, लेकिन जो असली मतलब है दाजी ने बताया कि धी और यान, गायत्री मंत्र में ये शब्द आया है दो बार, धी मतलब

तब अल्टीमेट विजडम, और यान मत है वही कर, तो जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाता है उसे ध्यान कहते हैं। और इस ध्यान के लिए कुछ पेट्रोल चाहिए, उसको आगे कैसे गाड़ी चलेगी, उसके लिए दाजी कहते हैं जो ये दिव्य शक्ति जो उन्होंने चैनलाइज की है उसको कहते हैं प्राणाहुति। ये

0: है, और जितने भी प्रशिक्षक हैं, 17,000 प्रशिक्षक हैं, उनको ये आध्यात्मिक काबिलियत दी गई है कि वो ट्रांसमिशन कर सकें। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जब सामने इंसान बैठा है और वो ध्यान में बैठने की कोशिश कर रहा है, उसका मन लगे और उसका वो डीप अपने दिल में जा पाए, वो इस शक्ति के साथ, शक्ति ना शब्द नहीं यूज़ करूँगा, इस एनर्जी के साथ इस एनर्जी को जब ट्रांसमिट करते हैं वो डीप जा पाता है, तो आसान हो जाता है। एक तो सफाई हुई और दूसरा अंदर दिल। अभी हम कर क्या रहे हैं ध्यान में? हम दो चीज़ें कर रहे हैं, एक मन को संतुलित कर रहे हैं, एक जगह बैठने की आदत डालते हैं कि बेटा बैठो। अब उसको ज़बरदस्ती करोगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हमने उसको प्रेम से आराम से उसको सहरा के कहा कि भाई बैठो इसमें, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना, आपने उसका ध्यान जो अंदर दिव्य प्रकाश है उसके साथ छोड़ दिया, जो अंदर से बढ़ रहा है, हमें आकर्षित कर रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, और जब हमारा ध्यान वहाँ जा रहा है, आँख बंद करके देखिए, एक क्षण के लिए मन भटकेगा, फिर हमने कहा अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, वापस आ जाओ। दो तीन सेशन के बाद आप देखोगे बड़े आराम से आप बैठे रहेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमने उनके साथ एक होना है। नो एक्सपेक्टेशन, नो डिमांड, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, एक प्रेम का रिश्ता बनाना है। अब जब इस तरह से हम कनेक्ट होंगे तो अंदर से क्या निकलेगा? प्रेम, सद्भावना, शांति, जो हमारे हर एक कण कण में फैल जाएगा, और जहाँ भी हम जाएंगे वही प्रेम हम फैलाएंगे। इतनी सिंपल सी चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं हो, बाहर नहीं हो, जो शब्दों से हम कैसे करेंगे? नहीं होगा। तो हम मुँह पे जो मर्जी कहें, लेकिन जो अंदर से एमिनेट हो रहा है, जो अंदर से हम प्रकट कर रहे हैं, बस वही है।
1: कहते हैं ना, एक व्यक्ति के बोलने के पहले उसकी जो एनर्जी से आप फील कर सकते हैं, उनके भावों को फील कर सकते हैं। तो आपके भाव यदि सकारात्मक है तो वो सामने वाले व्यक्ति को तो पता ही चल जाता है ना। और आपने गुरु की बात की, और हमारे जो है अभी के समय की बात करें या पहले के समय की बात करें, एक गुरु का होना एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जो है मायने रखता है। क्योंकि कहते हैं गुरु जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और जब हम हार्टफुलनेस की बात करते हैं, आपने कहा बहुत से लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं, इस टेक्निक को आपको सिखाते हैं, तो हम चाहेंगे कि कुछ बेसिक टेक्निक्स जितने भी लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप उनसे बांटना चाहें, अगर कोई व्यक्ति डेली बेसिस पर अगर ध्यान को बेसिक तरीके से शुरू करना चाहे, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहे, तो कौन सी ऐसी बेसिक दो तीन चीज़ें हैं वो रोज़मर्रा के जीवन में इसे शुरू कर सकता है, ताकि जो है धीरे धीरे वो इस सफ़र में आगे की ओर बढ़े?
0: सबसे पहले तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए हार्टफुलनेस का, मज़ा लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए अपने ऊपर, हेडफोन लगाइए, देखिए कैसे मज़ा आता है। दूसरा, आपको हमने एक नंबर दिया है
1: जी,
0: वो नंबर पर आप व्हाट्सएप करें
1: जी।
0: जो भी प्रशिक्षक पास में होगा वो आपको के साथ संपर्क में आएगा, आपको इनवाइट करेगा अपने घर। अगर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो हम जाएंगे उनके घर,
1: अच्छा,
0: उनकी सेवा में हाजिर हैं और उनको ध्यान हम 3 दिन कराएंगे
1: जी।
0: जिससे ये जो 3 इंट्रोडक्टरी सिटिंग्स हैं वो हो पाएँ, उसके बाद आप खुद ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। और संडे को हम सामूहिक ध्यान करते हैं,
1: अच्छा,
0: कुछ 8-9 जगह पर हम लोग, हमारा फेसबुक पेज भी है हार्टफुलनेस मॉरिशस का, तो 8-9 जगह पर हम ध्यान रेगुलरली करते हैं पूरे कंट्री में
1: जी।
0: तो कहीं भी आप जाके जुड़ सकते हैं
1: जी।
0: किसी भी प्रिसेप्टर ट्रेनर जो हैं उनके घर आप जा सकते हैं, मज़ा लीजिए, और अपना जो भी आपका इमोशनल बैगेज है वो पहले निकालिए। मेरे पास 3 किताबें हैं दाजी की, मैं 2-2 मिनट लूँगा, लेकिन उसके साथ करना क्या है वो मैं जरूर कहना चाहूँगा। सबसे पहले है अष्टवक्र महागीता,
1: अच्छा।
0: दाजी ने उनके बारे में बताया कि जो अष्टवक्र थे उन्होंने राजा जनक को क्या ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि क्या 5 चीज़ें चाहिए? क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य, ये चाहिए। अब आपको ज्ञान मिल गया, हो गया आपके अंदर, नहीं आया अभी, उतरा नहीं पूरा,
1: पर इसका करें क्या?
0: करें क्या? तो वो जब तक हम ध्यान से अपने मन को संतुलित नहीं करेंगे, उनकी तरफ हम अपना झुकाव अंदरूनी तौर से नहीं करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा
1: जी।
0: साथ साथ जो हमने

0: अनाप शनाप भर रखा है, जैसे किसी दूध के बर्तन में आप उसको पहले सफ़ा तो करोगे ना दूध डालने से पहले, तो वो दिल की जब तक सफाई नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, तो वो गंदा हो जाएगा, तो
1: फट जाएगा,
0: फट जाएगा। ज्ञान होना और उसको इम्प्लीमेंट ना करना, ये हमारा अहंकार बढ़ाता है, ठीक है, ये बात प्लीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा दाजी ने होली तीर्थंकर नाम से एक किताब लिखी है, ये जैन तीर्थंकर हैं, तो उनके बारे में हर एक के बारे में बताया कि भी उनकी क्या खासियत थी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने टॉक में बताई हमें कि जो सबसे फर्स्ट वाले थे ऋषभ देव जी, ये जो प्राणाहुति की क्या टेक्निक है ये उन्होंने रिसर्च किया था कि भी किस तरह जो साधक है उसकी प्रगति बहुत तेज हो जाए, जो मेरे अंदर दिव्य स्थिति है वो मैं किस तरह ट्रांसमिट कर सकता हूँ, उसका कितना वक्त बच जाएगा
1: जी।
0: ये सेम टेक्निक हमारे आदि गुरु ने फिर दोबारा रिसर्च करके निकाली, सदियाँ बीत गए, बीच में मिस हो गया था, अब दोबारा आ गई, वक्त आ गया है बदलाव का, ये टेक्निक अवेलेबल है, बहुत लोगों का वक्त बच जाता है, नहीं तो लोग कहते हैं कि आप ये रिचुअल्स करते जाइए इतने जन्म लगेंगे मुक्ति के लिए, मुक्ति तो बहुत छोटी चीज़ है, बहुत आगे जाना है। आखिरी किताब में कहूँगा हार्टफुलनेस वे, हार्टफुलनेस तो मेथड का नाम है ही, ये एक सिस्टर एलिजाबेथ डेनली हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने कंपाइल किया था। मैं अपना पर्सनल एक किस्सा बताना चाहूँगा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने सुना दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो दाजी ने कहा कि अगर आपके प्रेजुडिसेस नहीं गए तो आप एक चक्र से आगे नहीं जा सकते अगले चक्र तक, अगर आपका जो अहंकार है वो कम नहीं हुआ आप आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा है, इतना बोझ उठा के आप ऊपर नहीं आगे बढ़ नहीं सकते, यू आर टू हैवी टू ग्रो। तो ये जब बात समझ में आई तो सबसे पहले क्या बात है, सिंपल एंड प्योर, अपने आप को स्वच्छ कर रहे हैं
1: जी, इनके मन में करुणा भाव, दया भाव, एक दूसरे के प्रति होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तो मानवीय मूल्य है जिन पर हम जो है अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति दुखी है तो हम खुश कैसे हो सकते हैं ना, उसके दुख में दुखी होंगे, उसके दुख को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला समाज में तरक्की नहीं कर सकता है, समाज की तरक्की के लिए सबको साथ देना होता है, और सब तरक्की करते तब जाकर जो है देश की उन्नति होती है। तो कहीं ना कहीं जो है हार्टफुलनेस, माइंडफुलनेस आजकल बहुत चर्चित है, एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, हर कोई जो है इससे जुड़ना चाहता है, और आजकल हमारे आसपास इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, कभी कभार एक व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो कैसे एक व्यक्ति जाने के कोई भी टेक्निक जो उसे कोई बता रहा है वो उसके लिए किस तरह से जो है वो अपने आप को ये करे कि ये उसके लिए सही है, क्योंकि आजकल कोई भी आ जाएगा आपको बताएगा कि आपको ये करना है, और व्यक्ति अगर मुसीबत में है तो शायद एक किसी ऐसे व्यक्ति के बातों में आ जाएगा, उलझ जाएगा और किसी गलत राह में चला जाएगा या उसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, तो किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को समझाए या ये करे कि ये उसके लिए सही है या गलत है।
0: मैं दो चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि एक तो गुरु है, जब आप उनके साथ हो आपको क्या महसूस हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है नहीं हो रहा है? आपको आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं जो बेस्ट से बेस्ट है वो ऊपर उभर के आ रही हैं कि नहीं, ठीक है, मुख से जो मर्जी कोई बोले महसूस क्या हो रहा है,
1: दिल में
0: क्या हालत बन रही है, वो एक चीज़ आपको समझ में आ गई, और एक बार मिल जाए तो फिर छोड़ना मत,
1: ठीक है।
0: जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको सूक्ष्म बनाएगा, आप में गुस्सा कम करेगा, आप में करुणा भाव जगाएगा, ये आपके लिटमस टेस्ट हैं कि अगर आप में ये क्लैरिटी आ रही है और ये आप में प्रेम बढ़ रहा है, सद्भावना बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। और ये जो टेक्निक है हार्टफुलनेस की, जो सफाई की टेक्निक है और जो प्राणाहुति की है, सफाई से आप की जो प्रगति है इतनी तेज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे अवचेतन मन में है, जो हमने पता नहीं कहां कहां से इकट्ठा कर रखा है, जब तक उसको निकालेंगे नहीं हम तस्से मत सोच भी नहीं सकते।

0: 90% हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग जो हमारे अंदर चलता है
1: जी।
0: वो अगर अवचेतन मन में है, सब कॉन्शियस में है, तो अगर वो नहीं सफाया किया गया उसका, तो 10% आपके मनोबल से आप कितना कर लोगे, विल पावर से कितना कर लोगे आप, ठीक है ना। सो उसकी सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एक चक्र से आगे बढ़ना है अगले चक्र तक, उसमें प्राणाहुति मदद करती है
1: जी।
0: तो ये गुरु का काम है कि लोगों को आगे बढ़ोतरी दे
1: जी।
0: हमारा काम है एफर्ट करना
1: जी।
0: उनका काम है प्रगति देना
1: जी। तो इस हार्टफुलनेस की जब हम बात करते हैं सतबीर जी, तो क्या ये सभी उम्र के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है, अगर हम बच्चों की बात करें या बुज़ुर्गों की बात करें?
0: गुड। सो इसमें 15 साल के ऊपर से, 15 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं वो भी शुरू कर सकते हैं, और अपर लिमिट तो है नहीं
1: जी।
0: लेकिन जितना आप जल्दी करेंगे उतना अच्छा
1: जी।
0: क्योंकि जैसे आपकी फिजिकल
1: जी।
0: जो आपकी मतलब शारीरिक स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाती है
1: जी।
0: मेंटली भी कम होती है
1: जी।
0: तो मन चुस्त होना चाहिए
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कोई हर्जा नहीं है, बुजुर्गों के लिए बहुत प्रेम है और उनको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है
1: जी।
0: डिस्काउंट मतलब कि उनको सहायता मिलती है ताकि वो भी आगे बढ़ सके।
1: बिल्कुल।
0: पैसे का लेन देन तो है नहीं
1: जी, जी।
0: क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है बिल्कुल कि भी आध्यात्मिकता बेची नहीं जाती
1: जी।
0: ठीक है। तो अब 15 साल से कम जो बच्चे हैं हम स्कूल्स में प्रोग्राम्स कराते हैं, उनको हम कुछ इंट्रोस्पेक्शन का बताते हैं, और एक ब्राइटर माइंड्स का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है जिससे हम बच्चों के जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो उनका फोकस है, वो बहुत बढ़ा सकते हैं।
1: और अगर हम बात करें अभी के समय में, खासकर नवयुवकों की या जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में जुड़ रहे हैं, तो ये हार्टफुलनेस उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद साबित होता है?
0: देखिए, सुबह हमने ध्यान किया, मनोस्थिति को सही किया, तत्पश्चात शाम को जो भी हमने इकट्ठा करके आए हैं
1: जी।
0: सन्यासी तो है नहीं, सब दुनियादारी की सारी जिम्मेदारियां हमने करनी है, जो हमने अनाप शनाप भर रखा है अपने अंदर, जो हमने ले लिया वातावरण से, जो हमारे इंटरेक्शंस अननेसेसरी डिस्कशन आर्ग्यूमेंट से आता है, वो हम शाम की क्रिया, सफाई की क्रिया से हम उसको बाहर फेंक देते हैं
1: जी।
0: तो मन को फिर दोबारा बिल्कुल शुद्ध करना होता है। आके नहा लिए लेकिन मन पे जो धूल आती है वो कैसे निकालोगे?
1: वो
0: ये सफाई की क्रिया करेगी, ताकि आप नहीं तो ऑफिस की प्रॉब्लम घर लेके आओगे, घर की प्रॉब्लम ऑफिस लेके जाओगे।
1: और कहीं ना कहीं आजकल जो है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा कि आजकल हमारे लाइफ में चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हार्टफुलनेस क्या उन सारे चैलेंजेस को भी पार करने में मदद करता है एक व्यक्ति की?
0: देखिए, हम एनकरेज करते हैं कॉम्पिटिशन हमारे अपने साथ
1: जी,
0: दूसरों के साथ नहीं
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब आपका फोकस बढ़ जाएगा
1: जी,
0: आपके मन में क्लैरिटी बढ़ जाएगी
1: जी,
0: जो हमने समझो हमने इच्छाएं भर रखी हैं
1: जी,
0: जो हमने हमारे अंदर रेस्टलेसनेस है
1: जी,
0: जो हमारे अंदर घृणा है
1: जी,
0: जो हमारे अंदर भय है, ये सब हमने सफा किया तो क्लैरिटी तो आएगी,
1: आ ही जाएगी।
0: तो फिर आपकी एफिशिएंसी लेवल कितनी बढ़ जाएगी वो सोचिए। और फिर एक और चीज़ आ जाएगी कि बाहर जो भी हो वो मुझे सुखी नहीं, खुशी नहीं दे रहा है, मुझे
1: जो हमारे भीतर है
0: वो हमें सुखी रख रहा है।
1: बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, इतनी सारी जानकारियाँ जो आप हार्टफुलनेस को लेकर हमारे सभी श्रोता और दर्शकों से बांट रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मल मेडिटेशन जो लोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आजकल अगर मोबाइल पे कुछ देख लिया और सुन लिया कि ये आपके लिए अच्छा है तो देखना करना सीख लेते हैं, मतलब कि किसी गुरु के पास नहीं जाते हैं या किसी एप्रोप्रिएट टीचर के पास जाकर नहीं सीखते हैं, अगर इंटरनेट पर कुछ दिखाई दिया और बस लेकर उसे करना शुरू कर देते हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि हार्टफुलनेस की बात करें तो ये नॉर्मल मेडिटेशन से किस तरह से अलग है?
0: सी, एक तो यहाँ पर गाइडेंस अवेलेबल है, राइट। मैंने देखा है लोग मतलब कि कई अलग अलग पॉइंट्स पर मेडिटेशन करते हैं
1: जी,
0: लेकिन हम दिल पर करते हैं
1: जी,
0: राइट। दिल एक यंत्र समझिए कि जो जहाँ पर प्रेम बसता है
1: जी,
0: ठीक है, जहाँ ईश्वर बसते हैं
1: जी,
0: वही बिल्कुल सेफ पॉइंट भी है
1: जी,
0: नहीं तो और अलग पॉइंट्स पे और डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, एक चीज। दूसरी, ये जो मैंने

0: आपको सफाई की क्रिया बताई है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ बदलाव नहीं आ पाएगा। जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो नहीं जाएंगे
1: जी।
0: हमारी टेंडेंसीज वीकन नहीं होंगी, हमारी हैबिट्स नहीं जाएंगी। और लास्टली जो हमने प्राणाहुति की बात की है, जो हमें आगे बढ़ा सकती है, जो उस धी यान को जो पावर देता है, जो हमें आगे बढ़ाता है इस आध्यात्मिक प्रगति में, जो चक्र में हमें आगे बढ़ाता है, चक्रों में हमें आगे बढ़ाता है, वो यही है
1: जी।
0: तो ये फर्क है। लेकिन एक लास्ट चीज बहुत जरूरी है
1: जी।
0: देहधारी गुरु, शरीर में गुरु बहुत जरूरी है। वो आपको आज की डेट में बताएगा कि क्या किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। पुराने ग्रंथ सब अवेलेबल हैं लेकिन हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं। तो टूल्स ये हैं सफाई और ध्यान
1: जी।
0: और वो बताएंगे कि आज की डेट में क्या रेलेवेंट है, नहीं तो हम उलझे रह जाएंगे। पुरानी लैंग्वेज हमें पता नहीं
1: जी।
0: उसको इंटरप्रिटेशन हम अपनी मत्ती से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, वो कितना डेवलप है, तो फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। विदाउट अ प्रैक्टिस, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के क्रिया के बगैर मुमकिन नहीं
1: है। तो चलिए, आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो आज हार्टफुलनेस पर आधारित है। एक और छोटे गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।

0: चलिए आज की चर्चा ये कार्यक्रम है और आज हार्टफुलनेस मेडिटेशन पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ श्री सतबीर बख्शी जी जुड़े हुए हैं और हार्टफुलनेस मेडिटेशन पर हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। सतबीर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन की बात करें तो क्या ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, किसी के अलग अलग सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, तो क्या वहाँ पर भी ये हार्टफुलनेस काम आता है?
1: ये अच्छी बात आपने पूछी। ये जो हार्टफुलनेस के दाजी ने शुरू किया है अभियान, और ये सारी दुनिया में ही, हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉरपोरेट्स में, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, मतलब कि बहुत चल रहा है
0: जी।
1: और कई जगह तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर एक हिस्सा बन गया है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है आज कि अगर आप नहीं करोगे तो आप सोचो कि क्या हो सकता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं, अगर हम इमरजेंसी सेक्टर्स की बात करें जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस से जूझते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्टफुलनेस उनके लिए भी एक पॉजिटिव टूल हो सकता है।
1: देखिए, जैसे जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कई जगह सुसाइड्स का किस्सा उठता है, तो वहाँ पर हमने बहुत काम किया है जहाँ हम बच्चों को ध्यान कराते हैं, सफाई कराते हैं, ताकि उनमें ये एक बैलेंस रिस्टोर हो जाए। वो एक चीज़ है। दूसरा, हमने छोटे बच्चों का, मैं मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, मैंने साउथ अफ्रीका में एक स्कूल में जाके कराया, सिर्फ रिलैक्सेशन कराया हमने, शीतलीकरण, जो मतलब कि ये सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन कहेंगे तो मिल जाएगा। और मैंने बच्चों को कहा कि चलो रिलैक्सेशन करते हैं, देखते हैं क्या असर पड़ता है। तो अलग अलग बच्चों को मैंने बुलाया कि भाई आपका क्या अनुभव था। एक दूसरी क्लास की बच्ची, कितनी होगी, 5-6 साल की बच्ची होगी, उसने आके कहा कि आई वॉज एबल टू गिव अप माई पेन एंड हर्ट। जो मेरा दर्द था
0: जी,
1: जो मुझे चोट लगी है दिल में, वो मैं जाने दे पा रही थी, मैंने उसको निकाल दिया।
0: देखिए, कभी कभार लोग अपने दर्द में इस तरह से उलझ जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते, तो ये हार्टफुलनेस उनके लिए बहुत ही जो है कारगर साबित होते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी तो विश्व भर में देखे कई जगहों पर लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, तो अभी के समय में शांति हार्टफुलनेस से किस तरह से लाई जा सकती है?
1: मैं उसी बात को कंटिन्यू करते हुए
0: जी
1: इसका उत्तर देना चाहूँगा
0: जी।
1: अगर उस बच्चे में से ये जो उसका दर्द था
0: जी
1: वो निकाला ना गया होता, तो उसके जितनी भी आगे ग्रोथ है उस पर एक पत्थर रहता उसके दिल पर,

0: तो उसकी मनोस्थिति कैसे रहेगी, उसके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, उसका सब ऐसे ही लाइफ कंटिन्यू होती रहेगी। जो आज निकालना था वो आप बड़े होकर कहाँ निकालोगे, वो तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता
1: है,
0: गाढ़ा हो जाएगा
1: बिल्कुल।
0: जहाँ तक आप विश्व शांति की बात करें, जो एक इंडिविजुअल शांति से ही विश्व शांति होगी
1: तक हम जा सकते हैं।
0: अब जो लोग शांति नहीं चाहते हैं
1: जी,
0: अब देखोगे कई लोग लोगों को भड़काते रहते हैं
1: जी,
0: ठीक है। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि वो आग ना जलाओ जो आप बुझा ना पाओ,
1: बिल्कुल
0: ठीक है। हर बंदा अपना अपना ब्रांडिंग कर रहा है, कह रहा है कि नहीं जी हमारा मजहब बेहतर है, हमारे गुरु बेहतर हैं, ये सब ठीक है। आप शांति लाओ, सब लोग मिलके काम करते हैं
1: जी।
0: अगर मैं एक लास्ट में एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा जो मेरे दिल से मुझे कई साल पहले अंदर से आई थी, ना घर तेरा ना घर मेरा, किसके बलबूते पर है डाला डेरा, वही तो है एक सहारा सो ही तेरा सोई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर जी, इतने सुंदर मैसेज के लिए जो आपने दिया। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रोग्राम का समय भी लगभग समाप्त होने को चला। आशा करते हैं कि जितने लोग इस प्रोग्राम से जुड़े आज के इस प्रोग्राम से आपने अवश्य लाभ उठाया होगा। जाते जाते हम उनका नंबर भी आपको देना चाहेंगे, 5493-6646 5493-6646 है नंबर। आप अगर हार्टफुलनेस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप बेशक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक ईमेल एड्रेस भी है mu.info@heartfulness.org। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। जाते जाते एक बार फिर सतबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हमें टेक्निक पर जो है प्रोडक्शन का सहयोग मिला, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, रितेश महाबिया को, साथ में फैजान और उरुषा का भी साथ हमें मिला, आप लोगों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
2: आज की चर्चा 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घड़ी मिला लीजिए, इसी के साथ आइए जुड़ते हैं 10 बजे के समाचारों के साथ।

वालों को नमस्कार। लगभग एक महीने की छुट्टियों के बाद संसदीय कार्य इस मंगलवार को फिर से शुरू हो रहे हैं। विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल आज संसद में प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी को लेकर सवाल पूछेंगे। क्या अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी निजी डॉक्टर यानी डॉक्टर PS की मौजूदगी दर्ज है? क्या निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सर्जरी करने की अनुमति है? यदि हाँ तो दिसंबर 2024 से अब तक ऐसी कितनी सर्जरी हुई है और क्या इसके लिए ज़रूरी मंजूरियां ली गई थीं? और क्या इस मामले की जांच के लिए कोई बोर्ड बनेगा? और क्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जांच पूरी होने तक अपने पद से हटने का अनुरोध करेंगी? उधर प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम में निवेश मॉरिशस के कैजिनो चुनावी जांच और छोटे एड्रियानो पेरिन की मौत जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल किए जाएंगे। राज्यसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। आज 1 सितंबर से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लारेशन के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैंपल्स पर लागू होगा। ₹1,000 से कम मूल्य के शिपमेंट पर शुल्क एजेंट या कुरियर वसूलेगा, जबकि ₹1,000 से अधिक के शिपमेंट में इसे सिंप्लीफाइड कस्टम्स डिक्लारेशन में शामिल किया जाएगा। MRA के अनुसार शुल्क का उद्देश्य प्रोसेसिंग और कस्टम्स क्लियरेंस की लागत को कवर करना है। और विदेश में नेपाल की त्रिशूल नदी के पास मिट्टी से भरी सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव कार्य जारी है, जहां बचाव कर्मी पहाड़ियों को उड़ाकर अंदर हवा पंप कर रहे हैं। इस बीच नेपाल तिब्बत सीमा पर बाढ़ आपदा से मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो गई है, जबकि लापता लोगों का अनुमानित आंकड़ा 3,925 हो गया है। इनमें 592 विदेशी नागरिक शामिल हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार। NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर। समय स्टूडियो की घड़ी में 10:03 हो चुके हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है और भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः रत्ना का सप्रेम नमस्कार कर जोड़ अभिवादन स्वीकार करें। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं भक्तिमय भजनों के साथ साथ आचार्य सुदेश बद्री जी द्वारा वेद सुधा का कार्यक्रम इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे। तो आइए, मंगलवार का दिन सभी के लिए मंगलमय बना रहे, सभी का कल्याण हो, यही शुभकामनाओं के साथ यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को इस प्रकार सजाया गया है। सर्वप्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक भजन चलेगा और अंत में एक वेद मंत्र की व्याख्या सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं वेद पाठ। ओम त्रिपादुर्द्वैत पुरुषः पादुस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि। वह अमृत स्वरूप त्रिपाद परमेश्वर इस नश्वर जगत से ऊपर विद्यमान है। इसका एक पाद भाग ही पुनः पुनः सृष्टुत्पत्ति काल में चेतन अचेतन चर अचर जगत के प्रति सर्वत्र व्यापक हुआ उसको बार बार उत्पन्न करता है। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषा स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद् भूमिमथो पुरः। मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु की बनाई हुई और कर्मानुसार उपलब्ध हुई इन देह रूप पुरियों में निवास करते हुए अपने उस अधिष्ठाता परम पुरुष परमेश्वर को जानने का यत्न करें। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं पृषदाज्यम् पशुस्ताश्चक्रे वाव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये। वह प्रभु सबके सुख के लिए संसार में

न दुग्ध घृत आदि पदार्थ उत्पन्न करता है, और वही सब प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंगों को अपने अपने कर्मानुसार जन्म देकर कर्मानुसार ही भोग प्रदान करता है। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। उस प्रभु ने इन चारों वेदों का ज्ञान मानव मात्र के सुख और कल्याण के लिए दिया है, इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि इन वेदों का नित्य स्वाध्याय कर उस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा में वर्तमान रहकर अपने सर्वविद्ध व्यवहार किया करें, ताकि उनका लोक परलोक सुधर सके। ओम शांति शांति शांति।

संगच्छत्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रिय श्रोताओ, यह मंत्र ऋग्वेद के दशम मंडल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्त का अंग है। वैदिक संस्कृति में मनुष्य के व्यक्तिगत उत्थान के साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति को भी अत्यंत महत्व दिया गया है। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जीता, वह परिवार, समाज, संस्था और राष्ट्र का अंग है। इसलिए उसके विचार, वाणी

और कर्म में ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिससे व्यक्तिगत उन्नति के साथ सामूहिक कल्याण भी संभव हो। संगच्छद्वम संवदद्वम मंत्र इसी महान वैदिक भावना को व्यक्त करता है। मंत्र का आरंभ होता है संगच्छद्वम, अर्थात साथ साथ चलो, एक उद्देश्य की ओर मिलकर आगे बढ़ो। यहाँ केवल शारीरिक रूप से एक स्थान पर एकत्र होने का संकेत नहीं है, वैदिक दृष्टि में साथ चलने का अर्थ है जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर परस्पर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ना। यदि किसी परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे के विरोधी विचार रखते हैं, यदि किसी संस्था के लोग एक ही स्थान पर कार्य करते हुए भी परस्पर ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, तो उनका बाहरी रूप के साथ होना वास्तविक एकता नहीं है। सच्ची एकता तब है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर न्याय, सत्य, कर्तव्य और लोक कल्याण के उद्देश्य से जुड़ता है। श्रोताओं, इसके पश्चात मंत्र कहता है संवदद्वम, अर्थात मिलकर संवाद करो, परस्पर विचार विनिमय करो। वैदिक संस्कृति में संवाद का अत्यंत महत्व है। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं है, बल्कि दूसरे के विचार को सुनना, समझना और तर्कपूर्वक उचित निर्णय तक पहुंचना है। जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और धीरे धीरे मतभेद संघर्ष का रूप ले सकते हैं। इसके विपरीत जहां स्वस्थ संवाद होता है वहां अनेक समस्याओं का समाधान संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी परिवार में यदि आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विचार पर अड़ा रहे तो विवाद बढ़ सकता है, लेकिन यदि सभी सदस्य शांतिपूर्वक बैठकर समस्या पर विचार करें, अपनी बात रखें और दूसरों की बात भी सुनें, तो उचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यही संवदध्वम की व्यावहारिक भावना है। श्रोतागण, मंत्र का अगला चरण है संवो मनांसि जानताम। इसका भाव है कि तुम्हारे मन परस्पर एक दूसरे को समझें, तुम्हारे विचारों में सामंजस्य स्थापित हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण वैदिक बात समझनी आवश्यक है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के विचार बिल्कुल एक जैसे हो जाए। वैदिक दृष्टि में विचारों की स्वतंत्रता का अत्यंत महत्व है। एकता का अर्थ विचारों की समानता नहीं, बल्कि श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति विचारों का समन्वय है। दो व्यक्तियों की रुचियां अलग हो सकती है, उनकी कार्य पद्धति अलग हो सकती है और किसी विषय को देखने का दृष्टिकोण भी अलग हो सकता है। फिर भी यदि दोनों सत्य, न्याय और कल्याण को अपना लक्ष्य मानते हैं तो वे मिलकर कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार संवो मनांसि जानताम मानसिक सामंजस्य, परस्पर समझ और सहयोग की भावना का संदेश देता है। श्रोताओं, मंत्र के अंतिम भाग में कहा गया है देवा भागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते। इसका भाव है कि जैसे पूर्व काल के श्रेष्ठ विद्वान, ज्ञानी और देवतुल्य पुरुष परस्पर समझ और सामंजस्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते थे, उसी प्रकार तुम भी एकता और समन्वय के साथ श्रेष्ठ कर्म करो। यहाँ देव शब्द को वैदिक अर्थ में समझना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक साहित्य में देव का संबंध दिव धातु से संबंधित है, जिसका अर्थ प्रकाशमान होना, ज्ञान देना, प्रकाशित करना आदि। अतः देव वे श्रेष्ठ शक्ति

या अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति है जो स्वयं ज्ञान और सद्गुणों से प्रकाशित हो तथा दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करें। वैदिक दृष्टि में मनुष्य अपने ज्ञान, सत्याचरण, परोपकार और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा देवतुल्य बन सकता है। भागम का अर्थ यहां अपने उचित भाग अथवा कर्तव्य से संबंधित माना जा सकता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ उसके कर्तव्य भी होते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार की मांग करे और कर्तव्य की उपेक्षा करे तो सामाजिक व्यवस्था दुर्बल हो जाती है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने उचित कर्तव्य का पालन करता है और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है तब समाज में न्याय और संतुलन स्थापित होता है। श्रोताओं, इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मनुष्य को केवल बाहरी एकता की शिक्षा नहीं देता बल्कि शरीर, वाणी, मन और कर्म इन सभी स्तरों पर समन्वय की प्रेरणा देता है। पहले कहा गया संवदत्वम, साथ चलो, फिर कहा गया संवदत्वम, साथ संवाद करो, इसके बाद कहा गया संवो मनांसी जानताम, तुम्हारे मनों में परस्पर समझ और सामंजस्य हो। इस प्रकार मंत्र एक क्रम प्रस्तुत करता है, सामूहिक गति, सामूहिक संवाद और मानसिक समन्वय। वैदिक जीवन दर्शन में यह भावना परिवार से लेकर राष्ट्र तक लागू होती है। एक आदर्श परिवार वह है जहां माता पिता और संतान केवल एक घर में नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को समझते हैं, भाई बहनों में सहयोग और स्नेह हो। इसी प्रकार एक आदर्श संस्था वह है जहां अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने दायित्व को समझते हुए संस्था के श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करें। श्रोताओं, आज के समय में इस मंत्र की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। आधुनिक संसार में विज्ञान और तकनीक ने मनुष्यों को भौतिक रूप से बहुत निकट ला दिया है, लेकिन मानसिक और सामाजिक दूरी अनेक स्थानों पर बढ़ती दिखाई देती है। सामाजिक माध्यमों के कारण व्यक्ति बहुत लोगों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, फिर भी वास्तविक संवाद और समझ का अभाव हो सकता है। ऐसे समय में समगच्छत्वम, संवदत्वम का वैदिक संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। श्रोताओं, राष्ट्र के स्तर पर भी ये सिद्धांत लागू होता है। एक राष्ट्र केवल भूमि का नाम नहीं है, राष्ट्र उसके नागरिकों की सामूहिक चेतना, कर्तव्य निष्ठा और सहयोग से शक्तिशाली बनता है। यदि नागरिकों में सत्य, न्याय, अनुशासन, परस्पर सम्मान और राष्ट्रहित की भावना हो तो राष्ट्र प्रगति करता है। यदि समाज, भाषा, क्षेत्र, व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा छोटे छोटे मतभेदों में विभाजित होकर व्यापक हित को भूल जाए तो उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर हो जाती है। श्रोतागण, इस मंत्र को वैदिक यज्ञ की भावना से भी समझा जा सकता है। यज्ञ केवल अग्नि में पदार्थ डालने का नाम नहीं है, यज्ञ का व्यापक वैदिक अर्थ है श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए मिलकर किया गया त्यागपूर्ण और परोपकारी कर्म। यज्ञ में अनेक व्यक्ति मिलकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। कोई मंत्र का उच्चारण करता है, कोई व्यवस्था देखता है, कोई सामग्री की व्यवस्था करता है और कोई अन्य सेवा करता है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य अलग होते हुए भी लक्ष्य एक होता है। यही समगच्छत्वम का जीवन उदाहरण है। अतः इस मंत्र का वास्तविक संदेश है श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए साथ चलना।

सत्य और विवेक पर आधारित संवाद करना, परस्पर मनों को समझना, अपने अपने कर्तव्य का उचित पालन करना तथा सामूहिक कल्याण के लिए सहयोग करना, यही वैदिक सभ्यता की सामाजिक चेतना का आधार है। श्रोताओं, यदि परिवार इस मंत्र को अपनाएगा तो परिवार में प्रेम और समझ बढ़ेगी। यदि विद्यालय

0: और पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा। यदि समाज इसे अपनाएगा तो विभाजन कम होंगे, और यदि राष्ट्र इस भावना को अपनाएगा तो नागरिकों में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रहित की चेतना मजबूत होगी। इसलिए समगच्छद्वम समवदद्वम मंत्र केवल प्राचीन वैदिक वाणी नहीं है, बल्कि आज और आने वाले भविष्य के लिए भी एक सार्वकालिक जीवन संदेश है। यह मनुष्य को सिखाता है कि वास्तविक प्रगति अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान, न्याय और कल्याण के मार्ग पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने में है। इस मंत्र की मूल भावना को एक वाक्य में कहा जा सकता है, हमारे कदम श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर साथ बढ़ें, हमारी वाणी संपूर्ण संवाद करें, हमारे मन परस्पर समझ और सद्भाव से जुड़े, और हमारे कर्म समाज और विश्व के कल्याण के लिए समर्पित हो। यही इस महान वैदिक मंत्र का शाश्वत तात्पर्य है, और यही भविष्य के मानव समाज के लिए इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू जी का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन विशेषकर भगवान हनुमान को समर्पित है। जो मंगल मूर्ति है, बल बुद्धि के दाता है। और हनुमान चालीसा का श्रवण हमने अभी अभी किया। श्रोताओं, जब मन या पथ से कोई अनजान व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जीवन में बस हमें मार्गदर्शन के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, उस अंधेरेपन को दूर करने की जो हमारे मन में है। और इसके लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक। जब मन था पथ से अनजाना, तुम दीपक बनाए, सुने अंतर के आंगन में अर्थ नए बरसा।

अक्षर अक्षर में तुमने जीवन का स्वर है बोया, बुझते साहस को छूकर फिर जागृत बल संजोया। तूफानों में धैर्य सिखाया, गिरकर फिर उठ जाना, छोटे स्वप्नों से आगे बढ़कर नभ तक पहुंच जाना। तुमसे ही दृष्टि मिली है, श्रम का सच्चा मान मिला, हर संशय के अधिकार में विश्वास महान मिला। आज बिल्कुल गुरु का होना जीवन में किसी आशीर्वाद से कम नहीं। गुरु हमें सही मार्गदर्शन देते हैं।

तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस भक्तिमय यात्रा का समापन करने का समय हो चला है और चाहे दिन आए दिन जाए पर ईश्वर का नाम हमारे मन से कभी न मिट पाए। बस यही प्रार्थना हम सदा ईश्वर के पास करते रहें। और आज के इस कार्यक्रम के साथ बस हमारा और आपका साथ यहीं तक का था। अगले कार्यक्रम में फिर पुनः हमारी और आपकी मुलाकात होगी, हमारी और आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल आज संसद में प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी को लेकर सवाल पूछेंगे। क्या अस्पताल के रिकॉर्ड में किसी निजी डॉक्टर डॉक्टर पी एस की मौजूदगी दर्ज है? क्या निजी डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में सर्जरी करने की अनुमति है? यदि हाँ तो दिसंबर 2024 से अब तक ऐसी कितनी सर्जरी हुई है और क्या इसके लिए ज़रूरी मंजूरियाँ ली गई थी? और क्या इस मामले की जांच के लिए कोई बोर्ड बनेगा और क्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जांच पूरी होने तक अपने पद से हटने का अनुरोध करेंगे? राज्यसभा में रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया जाएगा। सरकार रोड रेज, नशे में गाड़ी चलाने और घातक हादसों के मामलों में दंड सख्त करना चाहती है। परिवहन मंत्री द्वारा आज विधेयक पेश किए जाने के बाद ये पहली और दूसरी पढ़त, फिर कमिटी स्टेज से गुजरते हुए तीसरी पढ़त तक पहुंचेगा। आज से डाक या कुरियर के जरिए आयातित पार्सल्स पर ₹150 का गैर वापसी योग्य प्रोसेसिंग फी लागू हो गया है। ये शुल्क कस्टम्स डिक्लेरेशन के अधीन आने वाले व्यावसायिक पार्सल्स और सैंपल्स पर लागू होगा। विदेशी श्रमिकों के संबंध में मॉरिशस और मलागास्कर मलागासी श्रमिकों की भर्ती और रोजगार को बेहतर ढंग से विनियमित करने के लिए एक समझौते के मसौदे पर काम कर रही हैं। इसमें नैतिक भर्ती, प्रशिक्षण, पेशेवर अनुभव की मान्यता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन के अनुसार इसका उद्देश्य शोषण रोकना और सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस के तहत समान सुरक्षा मिले। और विदेश में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लड़ाक द्वीप पर अमरीकी बलों द्वारा दो रॉकेट लॉन्चरों पर हमला करने के बाद अमरीका और ईरान के बीच जवाबी हमले हुए हैं। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जहां जॉर्डन की सेना ने सोमवार तड़के 8 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने की पुष्टि की है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: शम्मे फरोजा।

0: वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं कि मेरे लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम बयान नातु सलाम और आप के पैगामात। जी हाँ, 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। आइए ताखिर ना करते हुए सुकून कल्ब के लिए समात फरमाइए तिलावते कुरान पाक। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अल अनाम का एक और हिस्सा बमाए उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
1: بسم

और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा था, तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारी कौम खुली गुमराही में हो। और हम इस तरह इब्राहिम को आसमानों और जमीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा, कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरु हो गया तो कहने लगे लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं।

मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जह किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो, उसने तो मुझे सीधा

सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो मैं उनसे नहीं डरता। हां, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है, क्या तुम ख्याल नहीं करते।

भला मैं उन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन व बेखौफी का ज्यादा हकदार है, अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मुलव्वस नहीं किया उनके लिए अमन व बेखौफी है और वही हिदायत पाने वाले हैं।

और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, खबरदार है।

और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और सबको हिदायत दी, और पहले नूह को भी हिदायत दी थी और उनकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को भी, और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।

ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने इन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इनसे कभी इनकार करने वाले नहीं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो तुम इन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इसका कोई सिला नहीं मांगता, ये तो दुनिया जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है।

और इन लोगों ने अल्लाह की कदर जैसी जाननी चाहिए थी न जानी, जब इन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर वही और किताब वगैरह कुछ भी नाजिल नहीं किया। कहो कि जो किताब मूसा लेकर आए थे उसे किसने नाजिल किया था, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी और जिसे तुमने अलहदा अलहदा औराक पर नकल कर रखा है कि उनके कुछ हिस्से को तो जाहिर करते हो और अक्सर को छुपाते हो, और तुमको वो बातें सिखाई गई जिनको न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दो इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया था, फिर इनको छोड़ दो कि अपनी बेहूदा बकवास में खेलते रहें।

और वैसी ही ये किताब जिसे हमने नाजिल किया है बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और जो इसलिए नाजिल की गई है कि ऐ नबी, तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं, और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं।

और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या ये कहे कि मुझ पर वही आई है, हालांकि उस पर कुछ भी वही ना आई हो, और जो ये कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल की है उसी तरह की मैं भी बना लेता हूं, और काश तुम इन जालिम यानी मुशरिक लोगों को उस वक्त देखो जब मौत की सख्तियों में मुबतला हूं और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जाने, आज तुमको जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी, इसलिए कि तुम अल्लाह पर झूठ बोला करते थे और उसकी आयतों से सरकशी करते थे।

हुआ है, वो सारी खूबियाँ हम सब के आका मौला सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। तो एक तो हुजूर की पूरी ज़िंदगी खुली हुई किताब है, और जो किताब लेकर आए हैं वो भी रोशन है, नूरु नाला नूर है, खुली हुई किताब है। इसलिए इस किताब को कोई भी इंसान नेक नेति से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला उसे ज़रूर इस किताब की बरकतें, रहमतें, अजमतें अता फरमाता है। और जो बदनीयति से पढ़ता है उसे खुली हुई गुमराही मिल जाती है। इस आयत में हुजूर अलैहिस्सलाम को नूर फरमाया। नूर वो है जो आप तो खुद जाहिर हो और दूसरों को भी जाहिर कर दे। देखो, आफ्ताब नूर है। आफ्ताब को देखने के लिए किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं, खुद वो रोशन है। और जिस पर उसने खुद तवज्जो कर दी वो भी चमक गया। दुनिया में कोई अपने ख़ानदान से मशहूर होता है, कोई पेशा की वजह से, कोई सल्तनत की वजह से, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी वजह से नहीं चमके। वो तो खुद नूर हैं, उनको कौन चमकाता, बल्कि उनकी वजह से सब चमक गए। इसीलिए इसके लिए किसी बादशाही ख़ानदान में पैदाइश पाक नहीं हुई, दौलतमंद घराने में जलवागरी ना फरमाई, हत्ता कि विलादत से पहले वालिद का साया भी सर से उठा लिया गया। नबुवत के ज़हूर से पहले तकरीबन सारे अहले कराबत आगे पीछे दुनिया से चले गए, और बाद नबुवत जो बाकी रहे वो खून के प्यासे, ताकि कोई ना कह सके हुजूर अलैहिस्सलाम की शोहरत उनके ख़ानदान या अहले कराबत की वजह से है। गर्ज़ किस क़दर बेसरो सामानी है, मगर तमाम दुनिया पहचानती है। कैसे पहचानती है कि विलादत पाक से पहले दुनिया में हलचल मच गई कि नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन्नबीन का ज़माना करीब आ गया। दोस्तों में खुशी और दुश्मनों में रंज फैल गया। जैसे कि सूरज निकलने से पहले आसमान पर रोशनी फैल जाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन शरीफ में तमाम लोग तो क्या जानवर और पत्थर भी पहचानते थे कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। पत्थर भी आपको सलाम करते थे। हजरत दाई हलीमा हुसल्लम को लेकर अपने घर चली तो खच्चर ने कहा, ए हलीमा, मेरी पीठ पर नबी आखिरुज़्ज़मा है। मदारजुन नबुवत के हवाले से बात हो रही है। फिर हुजूर की वो नूरानियत है कि आपको ज़मीन जाने, आसमान पहचाने, फर्शी जाने, अर्शी, खिदमतगारी करें, इशारे से सूरज डूबा हुआ लौटे, चांद फटकर दो टुकड़े हो जाए, क्योंकि जानता है कि हुजूर का इरशाद है। हुजूर नबी अकरम सल्लम के इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद आज तकरीबन 1450 साल से ज़्यादा, 1450 साल का ज़माना गुज़रने के करीब है, मगर ज़मीन के हर गोशे में, दुनिया के हर मुल्क में आपका नाम

आपके सारे काम, आपकी ज़िंदगी मुबारक का एक एक हाल शरीफ दुनिया वालों के सामने है। इतने अरसे में दुनिया में माशूक गुज़रे, बादशाह भी गुज़रे, बड़े बड़े आलिम व फाजिल भी गुज़रे, मगर किसी का नाम भी न रहा।

0: कि हुजूर के बाद अगर कोई चीज़ है पहली तो हम सब के आका वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुकद्दस है। और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान अक़दस से भी ये बात साबित है, हुजूर के कहने से हमने अल्लाह को एक माना, पांच नमाजें, हज, ज़कात, सारे मसाले शरिया हमने तस्लीम किए। तो कुछ लोग क्यों नहीं इस बात को तस्लीम करते हैं कि हुजूर ही ने ख़ुद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला तबारक ताला हमें हुजूर नबी करीम सल्लम के नूर से हम सब के दिलों को भी नूर आला नूर फरमा दे, हुजूर के नूर की चमक से हमारे घरों को भी चमका दे, हमारे मुल्क मॉरिशस को भी चमका दे, आलम इस्लाम को भी नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बरकत से चमका दे, और दिल भी रोशन हो जाए और जुल्म और सितम पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौजूद सामईन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए समाअत फरमाइए आप सबकी फरमाइश पर यह खूबसूरत कलाम।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। लाई कुओं से शमीमा दोगाही हमारा साथ दे रही हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्र गुज़ार हैं। और फरहान, इलियास, जयान, जैशा, जयहान, कुसमौली,

दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनके उनके इम्तिहानात में मदद फरमाए और उनको आला नंबरों से कामयाबियां अता फरमाए। आमीन। जी हाँ, जितने भी बच्चे इस वक्त इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत, हौसला और ताकत दे ताकि वो खूब खूब मेहनत करें और अपने इम्तिहानात में आला नंबरों से कामयाबियां हासिल करें। जी हाँ, फरहान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मरहूमीन और जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। वो तमाम मरहूमीन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। इसके अलावा जितने भी लोग उम्रे पर गए हुए हैं या जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके उम्रे में आसानियां अता फरमाए और जो कुछ जो जितने भी लोग इस वक्त उम्रे या हज के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह पाक उन्हें हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। इसके अलावा न्योगुफ की फ़ातिमा रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और एक कलाम की फरमाइश भी की है। तयगूस से अमीरा, जी हाँ, तयगूस से अमीरा बेटे सुफियान भुजू और बेटे सुफियान भुजू जो कि आज ग्रेजुएशन, जी हाँ, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और उनकी वालदा उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हैं। जी हाँ, वालदा के साथ हैं उनकी बहन महनाज भुजू और उनकी भांजी सुमैया भुजू और मुर्तुज़ा भुजू, जी हाँ, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं सुफियान भुजू को। ये थे चंद पैगामात। इसी के साथ थोड़ी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

如果那两个字没有颤抖，我不会发现我难受，怎么说出口？

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। मंगलवार 1 सितंबर, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। रेडियो मॉरिशस पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। और चलिए, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। अभी से लेकर 4 बजे तक जो है हमारा और आपका साथ रहने वाला है। सो बताइए कैसे है आप, बताइए ये जो सितंबर महीना है शुरू कैसे हुआ है? अच्छे से शुरू तो हुआ है ना, देखते ही देखते इस वर्ष के 8 महीने बीत चुके हैं। सितंबर महीने में हम कदम रख चुके हैं। बस मन में यही आशा है कि बस हर जीवन का हर एक पल हर एक दिन बहुत अच्छे से बीते और सबके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। और चलिए भूलिएगा नहीं, 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700005 पर। अभी के लिए अवतार फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के आपकी पसंद प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, देखेंगे देख लेना, बड़ी ही खूबसूरत सी शुरुआत हुई है। अजी देखना क्या है, यहाँ तो गाने सुनने की बात है। और चलिए, आपका प्यार यूं ही हमें मिलता रहे और अगले प्यार भरे गाने की ओर बढ़ने की अब बारी है। सो अगला तराना जो है यहाँ पर चंदनी पुरुषोत्तम जी, बड़े ही प्यार से ब्रिटानिया से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगला गाना इनकी ओर से जाता है सभी पुरुषोत्तम परिवार के नाम। दिल फिल्म का ये तराना अनुराधा पौडवाल उदित नारायण जी की आवाज़ों में, हम प्यार करने वाले। और यही गाना ज्योति जी आपके नाम, जो शाते बनारस से हमारा साथ दे रही हैं, गाना जाता है आपकी ओर से आशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मध्य परिवार के नाम।

चलिए यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में प्यार भरे गाने तराने आप ही की फरमाइश पर आपके लिए हम चला रहे हैं। और अब बारी है इस अगले तराने की। इस समय हमारे साथ मौदालबिया से अनीता जी हमारा साथ दे रही है। गाना जाता है अनीता जी आपकी ओर से करुणा, अमृता, कविता और आपके सभी दोस्तों के लिए जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने तुमसा नहीं देखा, यानी कि पुरानी फिल्म तुमसा नहीं देखा, नहीं नई फिल्म जो 2004 में रिलीज़ हुई थी, इस फिल्म का जो गाना है उदित नारायण और श्रेया घोषाल जी की आवाज़ों में इस गाने की रिक्वेस्ट आपने की है, तो चलिए गाना आपके लिए चल पड़ा। इसी गाने को हम डेडिकेट करते हैं ज्योति जी आपके नाम, जो यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है। एंड गाना जाता है यहाँ पर प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और केनिता के नाम, जो बड़े ही प्यार से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए, आपको भी कोई याद आ रहा है, उनके नाम कोई गाना करना चाहते हैं, उनके नाम कोई डेडिकेशन है, तो बेशक जुड़ जाइए यहाँ पर 4028085725251700005 पर। और चलिए इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अनपढ़ फिल्म का ये जो अगला तराना होगा, ये यूनियन पार्क की विद्या जी आपके नाम हम करते हैं। इस समय आप हमारा साथ दे रही है और अनपढ़ फिल्म का ये गाना जो है हम सुनेंगे लता जी की आवाज़ में। आपकी ओर से जाता है ये गाना, आपकी बहनों के नाम यहाँ पर सती है, सुरेखा है, बबीता है, साथ में आपकी प्यारी चाची कुमारी के नाम और आपके सभी परिवार के लिए। और इसी गाने के साथ जो है हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर। समाचारों के उस पार आपकी पसंद प्रोग्राम ये जारी रहेगा।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा की कार्य आज जारी रखे जा रहे हैं। विपक्ष नेता का PNQ आज प्रधानमंत्री को संबोधित रहा, जिसका संबंध स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी पर केंद्रित था। चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशंस में शामिल होने की इजाज़त है। अपने जवाब में

0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टर की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है। हर साल हजारों श्रद्धालु मॉरिशस में आस्था और भाईचारे के मसीहा कहलाए जाने वाले पहलावाल के मकबरे तक की यात्रा करते हैं। सेंट जॉन में विशेष प्रार्थना सभाएं लगती हैं और देश के विभिन्न इलाकों से वहां तक लोग पद यात्रा करते हैं। 2026 के लिए इस तीर्थ यात्रा का विषय रखा गया है। ओसाम एक पहलावाल पोएन सोसाइटी प्ली जीस एक फातियानल। मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर जुके याहाद का कार्यकाल पूरा हो चला है। उन्होंने आज काठमांडू में गणराज्य के उपराष्ट्रपति गोबे हंगले से विदा लिया। दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में पिछले बुधवार को उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1000 पार कर गई हैं। 3900 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनके जीवित बचे होने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। 600 से ज़्यादा लोग एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे हैं। अंदर हवा भेजने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 56 आबेदुलाकाई क्योपिप रोड में 72 साल के 72 years old श्री मुनीश्वर द्वारका। श्री मुनीश्वर द्वारका जो धीरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले MBC के कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 56 आबेदुलाकाई क्योपिप रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। पियती लेन कास्टेल में 65 साल की 65 years old श्रीमती धन कुमारी चुनी पैदाशी नाम रामचरण जो सरिता चुनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे श्री हरीश चुनी के मकान पियती लेन कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिबोयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सैंक्वा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। सैंक्वा के खासकर इन इलाकों और इन गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई एमिली बासेत सैमारी एम्पास सैमारी रूट बासा नंबर 1 नंबर 2 मौसलमा लावाली सोफी लेन यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल बुधवार 2 सितंबर को दिन के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच दिन के 10 से दोपहर के 1 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति CEB की ओर से।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: आपकी पसंद।
1: चलिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से दिल से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी, आज आप सबका साथ दे रही हूँ। 3:06 होने को है, 4 बजे तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। और चलें यहाँ पर फरमाइशों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस समय विश्वानी दुमन जी हमारा साथ दे रही है और विश्वानी जी की ओर से घर परिवार का ये जो अगला तराना है जाता है इनकी बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, साथ में नीला है, प्रतिभा है, शोभा है, गीता गजाधर है, सभी दुमन परिवार के नाम ये गाना चल पड़ा नितिन मुकेश जी की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: जी हाँ, समय बड़ा बलवान, यकीनन समय में बड़ी ताकत होती है, और जिसका समय अच्छा होता है उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। और कभी कभार किसी कारणवश अगर हमारा समय बुरा चल रहा है तो कोई साथ नहीं देता है, इसलिए समय पर समय का सम्मान करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी के लिए समय की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अनाड़ी फिल्म का ये जो गाना है जोड़ते हैं। अनाड़ी फिल्म का ये जो तराना है, बड़े ही प्यार से माधुरी जी ने इस गाने की फरमाइश की है और कह रही है कि बस मनोरंजन पर भी हमारे साथ थे और रेडियो मॉरिशस पर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर माधुरी जी, यही गाना आपके नाम जाता है और आपकी ओर से आपके पूरे परिवार के लिए, और यहाँ पर आपके नेफ्यू का बर्थडे है तो उसको भी हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे, और साथ ही यही गाना परी आपके लिए भी।
2: मेरे बगैर जाने जाना

आपकी पसंद। चलिए खूबसूरत गानों का कारवा यहाँ पर, और ऐसे में अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। आदाब कह रहे अगला गाना जो है इसकी फरमाइश यहाँ पर आई है। गाना तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन जिन्होंने गाने की फरमाइश की है उन्होंने ही अपना नाम नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं आपका नाम, अगर हम कहीं ढूंढ पाए तो। आपका नाम हमें नहीं पता लेकिन जिन्होंने भी सोनू निगम की आवाज़ में आजा मेरी जान फिल्म इसका ट्रैक मांगा है, तो चलिए यह गाना आपके नाम हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमें मिल रहा है। अगली बार अगर आप हमें मैसेज करें या गानों के रिक्वेस्ट करें तो अपना भी नाम थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। और यही गाना जो है जाता है बसंती जी आपके नाम, बोबासा से हमारा साथ दे रही है, गानों को पसंद कर रही है और बस कह रही है कि बस किसी भी गाने में मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए ये गाना आपके लिए जाता है बसंती जी। ग्रांगप से सुनीता जी, आपसे भी बातें हो रही थी लेकिन बात करते करते लाइन कट गई, कोई बात नहीं, ये गाना आपके लिए भी और आपके पूरे परिवार के लिए।

0: की पसंद।
1: चलिए, बड़ा ही खूबसूरत सा तराना था और अब बारी है इस अगले गाने की। इस अगले गाने के ज़रिए हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इंदिरा लौटन जी, आपको आपको हार्दिक शुभकामनाएं आई है यहाँ पर प्यारी दीक्षा की ओर से, दीक्षा गोपी की ओर से। उन्होंने लिखा है कि कल मेरी दादी इंदिरा जी का जन्मदिन है, तो उनके लिए एक खूबसूरत सा गाना हो जाए। तो इंदिरा जी, अगला गाना प्यारी दीक्षा की ओर से आपके नाम, सभी लौटन परिवार की ओर से, सभी गोपी परिवारों की ओर से, और जितने भी सुनने वाले अपना जन्मदिन मना रहे हैं, रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।

0: आपकी पसंद।
1: चले एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं उन सभी को जो मना रहे हैं अपना जन्मदिन। ऑब्वियसली जन्मदिन का मौका खास होता है और ऐसे में अपनों का साथ मिलता है तो मानो खुशियां और बढ़ जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपकी खुशियों में हम भी शामिल हो रहे हैं आपके पसंदीदा गानों को लेकर रेडियो मॉरिशस पर। और अब बारी है इस अगले तराने की। काला पानी फिल्म का ये जो गाना है आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में जाता है यहाँ पर सुदेवी जी आपकी ओर से, यहाँ पर आपकी दीदी लालिता के लिए, कुशल परिवार के लिए। दीदी सुनीता है, शोभा है, देवीना है, बिंदु है, माला, संगीता, मालिंगा से पूरा परिवार, प्रणीता, केशनी, कृषय, सभी रामरतन परिवार, सभी कुवारू परिवार, सभी रघुबर परिवार और सभी जलू परिवारों के नाम। और यही गाना सुदेवी जी आपके लिए। ऐसे ये गाना मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है सुनना।

0: अच्छे हम अकेले
1: जाले साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: की पसंद।
1: और चलिए आपकी पसंद में इस अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अनीता जी की ओर से मैसेज आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनीता जी जो मैसेज आपने टाइप किया है ना, वो ऑटो करेक्ट की वजह से आप लिखना कुछ चाह रही थी और कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी जितना हम समझ पाए हैं हमने अपने आपके गाने को ढूंढने की कोशिश की है। शायद आपने मुकद्दर का फैसला फिल्म का तराना मांगा है, तो मुकद्दर का ये जो गाना है आपके नाम हम करते हैं, सभी फ्लिक ऑफ लक के आपके पूरे परिवार के नाम, और यहाँ पर यही गाना आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने सुनने वाले इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, ये गाना आपकी ओर से उन सभी के लिए।

और कल की चिंता में अपने आज को गवा देते हैं। तो चलिए, ऐसे में ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए, अपने आज को जीना चाहिए। कहते हैं ना, अपना आज अच्छा हो तो कल भी अपने आप में अच्छा हो ही जाता है। 3:40 ऑलरेडी हो चुके हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। इस अगले तराने की ओर हम बढ़ते हैं। अरब का सोना फिल्म का ये जो गाना है, नितिन मुकेश जी की आवाज़ में, जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो ट्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो सोनू निगम का गाना हमने चलाया था, हमें पता नहीं गाने की रिक्वेस्ट किसने की थी, तो यहाँ पर गाने की जो उस रिक्वेस्ट है वो आई थी सैंपिया की ओर से, मोहम्मद शफीक की ओर से। तो शफीक जी, उम्मीद करते हैं आपका गाना आपको ज़रूर पसंद आया होगा।

0: आपकी पसंद।
1: और चले आपकी पसंद में अगले गाने की बढ़ते हैं। माहेन जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये गाना आपके नाम माहेन जी हम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और यहाँ पर धर्म जी बेलरोज से हमारा साथ दे रहे हैं। अगला गाना यहाँ पर जाता है आपके पूरे परिवार के लिए।

जी हाँ हाँ मैंने कसम ली। हाँ तूने कसम ली। किशोरदा और लता जी की आवाज़ों में बड़ा ही खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे। इस समय प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रही है, गानों को बड़ा ही पसंद कर रही है। और चलिए ये अगला तराना खासकर प्रकाशवती जी आपके नाम हम करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती है, रेडियो मनोरंजन हो रेडियो मॉरिशस हो, हमेशा हमारा साथ देती है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। यहाँ पर अंजनी जी आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए ये गाना यहाँ पर चल पड़ा, जुर्म फिल्म का कुमार सानू और साधना सरगम जी की आवाज़ों में।

चलिए, आपका प्यार भरा साथ हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते ही देखते जो है हम आपकी पसंद इस प्रोग्राम के लगभग अंत तक आ गए हैं। आपका साथ यूं ही हमेशा मिलता रहे ऐसे प्रोग्रामों में, और जाते जाते ये आखिरी तराना आप सभी के नाम, और इसी के साथ हमारी आपकी मुलाकात समाप्त हो जाएगी। 4 बजे जो है आप सुन पाएंगे तमिल भाषा में कार्यक्रम यहाँ पर कलयवाणी से, और हमारी आपकी भेंट जल्द होगी। तो तब तक के लिए यहाँ पर हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार आप सभी को हमारी ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर 4 बज जाएंगे। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से जो है एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। सीबी इन जगहों पर रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। बुनमिया विलाज, कोंकारो, बुलेरूज, यहाँ पर और आसपास के इलाकों में रहने वाले ग्राहक जैसे कि विनर्स, बुलेरूज, विनर्स, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल बुधवार 2 सितंबर को सुबह के 8:30 बजे से सपहर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आप सुन रहे हैं भोले बिसरे गीत प्रोग्राम और मैं उषा कौर आप लोगों की सेवा में। श्रोताओं, कुछ गीत वक्त के साथ पुराने ज़रूर होते हैं लेकिन दिल से कभी दूर नहीं होते। आज फिर उन्हीं मधुर धुनों के साथ लौटे हैं पुरानी यादों की हसीन दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं यादों से भरा ये खूबसूरत सफ़र भूले बिसरे गीत।
1: रही

श्रोताओं, गीता दत्त जी हिंदी सिनेमा के उन आवाज़ों में से एक हैं जिनकी आवाज़ में एक खास मिठास और जज्बात था। उन्होंने 1950 और 1960s के दशक में कई यादगार गीत गाए। उनकी आवाज़ में खुशी हो, दर्द हो या हल्का सा शरारती अंदाज, हर एहसास बहुत खूबसूरती से महसूस होता था। गीता दत्त जी की आवाज़ आज भी पुराने गीतों के शौकीन लोगों के दिल में जिंदा है।

राज हट फिल्म का नाम है। 1956 की एक यादगार हिंदी फिल्म थी जिसमें प्रदीप कुमार और मधुबाला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का निर्देशन सौरभ मोदी ने किया था। इस फिल्म का

संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और इसके गीतों में उस दौर की मधुरता और खूबसूरती साफ महसूस होती थी। तो चलिए इसे फिल्म से जुड़ा एक खूबसूरत नगमा सुनते हैं।

0: जाने कहाँ गया जिगर। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना सुनते हैं और खूबसूरत पुराना नगमा है जिसमें बिछड़ने का डर और दिल की उदासी बहुत प्यारे अंदाज में महसूस होती है। इस गीत की धुन और आवाज़ दोनों ही पुराने दौर की मिठास को सामने लाती है। तो चलिए सुनते हैं ये यादगार नगमा।
1: जाने

गीत सिर्फ गीत नहीं होते, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आते हैं। इनकी धुन में सादगी, बोलों में गहराई और आवाज में जज्बात हुआ करते थे। एक गीत सुनते ही कभी बचपन याद आ जाता है, कभी कोई अपना और कभी गुजरा हुआ खूबसूरत पर। शायद इसीलिए पुराने गीत कभी पुराने नहीं होते, वो हर बार नए एहसास के साथ दिल को छू जाते हैं।

0: दिल कहाँ तेरी मंजिल, एक खूबसूरत पुराना गीत है जो दिल की तलाश और ज़िंदगी के सफ़र को बहुत ही गहरे अंदाज में बयां करता है। इसमें एक सवाल है, दिल आखिर किस मंजिल की तलाश में है। जी हाँ, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के भोले बिसरे गीत प्रोग्राम को देते हैं विराम। पुराने नगमे यादों को हमेशा जिंदा रखते हैं। अगली मुलाकात तक का संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: क्या नाम है तुम्हारा? ए, क्या नाम है तुम्हारा?
2: मास्टर।
1: मास्टर, काम क्या करते हो?
2: काम कटिंग का। कटिंग का?
1: काहे की कटिंग?
2: ज्यादातर मैं कोट पतलून ही काटता हूँ, और अगर पैसे की जरूरत हुई तो कोई और कपड़ा भी काट देता हूँ।
1: तो बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में क्या करने गए थे आप?
2: इंस्पेक्टर साहब, पेट और भेजा

0: दोनों खाली है। अगर एक सिंगल चाय मिल जाए ना तो कम से कम भेजा चालू हो जाएगा।
1: तेरा भेजा मैं अभी चालू करता हूँ।
0: नमस्ते शेखर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए।
1: अरे मास्टर, तू यहाँ क्या कर रहा है? यही तो है वो आदमी जो बॉम्बे टाइम्स के ऑफिस में पकड़ा गया।
0: शेखर साहब, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ना, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। ये साहब नवा है क्या? अपने को पहचानते ही नहीं।
1: लेकिन तू बॉम्बे टाइम्स के दफ्तर में क्या करने गया था?
0: कुछ करने गया था, कर नहीं पाया कि कोई और कुछ और कर गया।
1: क्या बकते हो?
0: बिल्कुल सही कहता हूँ शेखर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। देखिए ना, आप तो मुझे जानते हैं कि मैंने जिंदगी भर कैंची चलाई है, कोट पतलून काटा है, गला नहीं।
1: तो तुमने खूनी को देखा है?
0: बराबर देखा है, अंदर जाते देखा, बाहर निकलते देखा। ये बड़ी बड़ी आंखें जैसे सोसो का बल्ब, अच्छा तैयार ऊंचा पूरा था, मैं तो देखते ही कांपने लगा।
1: उसे पहचान सकते हो?
0: उसके तो बाप को भी पहचान लूं अगर एक बार देख लूं बस।
1: अच्छा जाओ
0: जाओ।
1: और सुनो, ये कैंची का धंधा छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ की सफाई तुम्हारा सफाया कर दे।
0: अच्छा नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मेरा ख्याल
1: सर फोन इसके पास की बात नहीं, ये तो मामूली जेब कतरा है, मैं इसे जानता हूँ। लेकिन किसी हवलदार से कहो किस तरह निगाह रखे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत करीब 500 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, इनमें कुल 647 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। परियोजनाएं पूरी करने पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में PMQT सत्र के दौरान ये जानकारी दी। विपक्ष नेता के रूप में अपने प्रथम PNQ में चेतन बाबूलाल ने स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की जरूरत से इनकार किया। 6,000 से ज्यादा मामले और 2,900 मौतें, कांगो में इबोला गणराज्य का गंभीर प्रकोप जारी। उधर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के 7 दिन बाद मरने वालों की संख्या 1,000 पार कर गई। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के तहत अभी लगभग 500 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश हुआ है। इनके पूरा होने पर 25,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान ये जानकारी दी। इसके अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि 2025 के बाद से स्थिति में सुधार आया है, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। पेश है सिलवाना पाईमामन और करुणा लालू की रिपोर्ट।
2: उपलब्धता और डॉलर की मांग पर सांसद रुकनी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 से विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार देखा गया। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है।
3: Nonetheless, we must agree that the forex market remains tight, Madam Speaker.
2: देश में कंपनियों और परिवारों के पास मौजूद

विदेशी मुद्रा की मात्रा तथा 2025-2026 में निर्यात उन्मुख कुछ प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए दिखाई दे रही विदेशी मुद्रा की कमी का एक कारण कुछ कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा को अपने पास रोक कर रखना भी हो सकता है, जिससे लेन देन के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति सीमित हो जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में एक संरचनात्मक असंतुलन भी मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों में आयात में हुई तेज वृद्धि, जो पिछली सरकार द्वारा अपनाई गई उपभोग आधारित आर्थिक मॉडल का परिणाम थी, ने विदेशी मुद्रा की मांग में ज्यादा और लगातार बढ़ता हुआ अंतर पैदा किया। विदेशी मुद्रा से होने वाली आय में वृद्धि इस मांग की पूरी तरह भरपाई नहीं कर पाई, जिसका असर घरेलू बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। पहला, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम के तहत विला की बिक्री से प्राप्त राशि में से कम 85% राशि को मॉरिशन रुपए में परिवर्तित करना अनिवार्य किया गया। दूसरा, ऐसी कंपनियों के लिए जिनके कारोबार का 50% हिस्सा विदेशी मुद्रा में होता है, अपने सभी टैक्स का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना अनिवार्य किया गया। तीसरा, 1 अक्टूबर 2025 से प्रति पर्यटक प्रति रात 3 यूरो का पर्यटन शुल्क लागू किया गया, जिसने बाजार में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने में योगदान दिया। चौथा, आवास सेवाओं पर प्राप्त वीएटी का 50% विदेशी मुद्रा में जमा करना अनिवार्य किया गया। सांसद एडुआने रॉड्रिक्स के लिए आवंटित बजट और धन के फिर से आवंटन के बारे में सवाल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल में रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली ने वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए 548 मिलियन रुपए की अतिरिक्त धनराशि की मांग की थी, क्योंकि उसके पास उपलब्ध संसाधन समाप्त हो चुके थे। इस मांग की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय ने रॉड्रिक्स रीजनल असेंबली को 300 मिलियन रुपए की अतिरिक्त राशि देने पर सहमति जताई। वित्त मंत्रालय ने रीजनल असेंबली के विकास बजट की भी समीक्षा की और पाया कि बजट के क्रियान्वयन की दर कम थी। इसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि रीजनल असेंबली संभवतः चालू बजट वर्ष के अंत तक अपने पूरे विकास बजट का उपयोग नहीं कर पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भी यही रुझान देखने को मिला, जब रीजनल असेंबली अपने विकास बजट का औसतन लगभग 73% ही खर्च कर पाई थी। सांसद जोआना बेरांजे ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के स्तर पर निजी निवेश परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि ईडीबी के पास 523 परियोजनाएं पंजीकृत हैं। इन 523 परियोजनाओं में से 512 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें कुल 634 बिलियन रुपए का निवेश शामिल है। बाकी 11 परियोजनाएं जिनकी कुल राशि 15.7 बिलियन रुपए हैं, या तो निलंबित हैं या रद्द कर दी गई हैं। अनुमान है कि पहले से पूरी हो चुकी और वर्तमान में लागू की जा रही परियोजनाओं से लगभग 18,500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन परियोजनाओं के पूरे होने और पूरी तरह चालू होने पर 7,800 और रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। सांसद बिच्चुक ने फिल्म रिबेट स्कीम के बारे में सवाल उठाया। 30 जून 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस अवधि में 102.1 मिलियन रुपए की राशि का भुगतान किया गया। 2026 में 11 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 9.3 मिलियन रुपए का भुगतान किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस परियोजना के तहत वापस की जाने वाली राशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की संभावना का भी उल्लेख किया। बजट संबंधी सीमाओं और सरकारी धन के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को देखते हुए वापस की जाने वाली राशि पर एक अधिकतम सीमा तय करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अनुरूप फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अधिक संख्या में परियोजनाओं को इस योजना का लाभ देने के
साथ साथ ये सुनिश्चित करना है कि उनसे ठोस आर्थिक लाभ मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की पहचान तथा शूटिंग

0: डेस्टिनेशन के रूप में उसकी आकर्षकता और मजबूत हो। प्रधानमंत्री ने सदन को यह भी याद दिलाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में फिल्म शूटिंग खर्चों की प्रतिपूर्ति योजना में कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ था। उन्होंने एलन गोविंदन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ के करीबी मित्र थे और उन्होंने उनके लिए नामधारी अथवा ऋणदाता के रूप में काम किया था। प्रधानमंत्री के अनुसार गोविंदन ने प्रवीण जगन्नाथ की अंग्विस रोड स्थित संपत्ति के संबंध में बिलेश गैस्टेट को 20 मिलियन रुपये का भुगतान किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी एलन गोविंदन की फिल्म प्रिजनर्स ऑफ पैराडाइज उस समय बन रही थी जिसके लिए ईडीबी ने उन्हें 66 मिलियन रुपए का भुगतान किया था, जिसमें से 21.6 मिलियन रुपए टैक्स के रूप में काटे गए थे। उन्होंने कहा कि अब ईडीबी का बोर्ड उन फिल्मों को मंजूरी देता है जिन्हें सहायता मिलनी है और ये प्रक्रिया नियम आधारित प्रणाली पर है। इसके विपरीत पिछली सरकार के दौरान ईडीबी के सीईओ अकेले ही इन सहायता राशि को मंजूरी देते थे। अब पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव था। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि ईडीबी के नेतृत्व के लिए जल्द ही एक नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा।
1: अपने प्रथम पीएनक्यू में विपक्ष नेता चेतन बाबूलाल ने आज प्रधानमंत्री से स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की जीतो अस्पताल में हुई सर्जरी के बारे में प्रश्न किया। चेतन बाबूलाल ये जानना चाहते थे कि क्या सर्जरी के दौरान कोई प्राइवेट डॉक्टर वहां मौजूद थे और क्या प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशंस में शामिल होने की इजाज़त है। अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कानून या मेडिकल काउंसिल के नियमों के तहत प्राइवेट डॉक्टरों की मौजूदगी पर कोई रोक नहीं है, इसलिए इस मामले में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने या स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि सरकार ऐसी प्रक्रिया के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है। अब्दुलबुला की पूजा सुकालू।
2: Whether in regard to the surgery, the Honorable Minister of Health and Wellness,
3: चेतन बाबूलाल की पहली प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य मंत्री की डॉक्टर जीतू अस्पताल में हुई सर्जरी के दौरान एक निजी डॉक्टर की मौजूदगी को लेकर था। अपने जवाब में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि मॉरिशस के कानून में निजी डॉक्टर की मौजूदगी पर रोक नहीं है। हालांकि ऐसी मौजूदगी अपने आप या हर मामले में अनिवार्य नहीं होती।
2: Such requests are considered on
3: इन अनुरोधों की समीक्षा मंत्रालय की क्लिनिकल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधार पर की जाती है। इसके लिए संबंधित सर्जरी के प्रभारी, अस्पताल के सर्जन की मंजूरी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मरीज की सहमति आवश्यक होती है। ये प्रक्रिया मेडिकल काउंसिल के आचार संहिता यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस के अनुरूप है।
2: As appropriate for the necessary administrative approval before any arrangements are made. This approach is consistent with the Medical Council's Code of Practice.
3: इस विशेष मामले में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि निजी डॉक्टर की मौजूदगी को उचित माना गया था, खासकर इस प्रकार की सर्जरी में उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए।
2: My understanding is, Madam Speaker, is that
3: मेरी समझ के अनुसार डॉक्टर सुक्का शुरू में एक पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, लेकिन जब सर्जरी करने का निर्णय लिया गया तो चूंकि वे की होल सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने माना कि पारंपरिक सर्जरी की बजाय की होल सर्जरी करना बेहतर होगा, जिसमें अपेक्षाकृत बड़ा चीरा लगाना पड़ता है। प्रधानमंत्री के अनुसार ये कोई नई प्रथा नहीं है। मॉरिशस कई वर्षों से सरकारी अस्पतालों में विशेष उपचार उपलब्ध कराने के लिए विजिटिंग विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की सेवाएं लेता आ रहा है। पिछले 18 महीनों के दौरान लगभग 60 विशेषज्ञ मेडिकल टीमों, जिनमें करीब 100 विदेशी निजी क्षेत्र के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल थे, ने मॉरिशस में अपनी सेवाएं दी है। कुल मिलाकर उन्होंने हमारे सरकारी अस्पतालों में 2500 से अधिक परामर्श किए और 1300 से अधिक जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं की हैं। विपक्ष नेता ने इस मामले में जांच की मांग भी की।
2: Whether a board of inquiry will be set up thereinto, and he will request the honorable minister to step down pending completion thereof. The facts stated do not warrant the setting up of a board of inquiry, and the question of the minister stepping down therefore does not arise. Is there

0: protocol available for the public?
1: There is no protocol. Maybe we should look at protocols, maybe following the question, but sometimes it's urgent also. If you're going to go through different stages, the patient might die in the meantime. I don't want to give examples of names and all this, but it has happened that we have asked people from outside to come in the public hospitals. And I want to tell the Honorable Leader of the Opposition, today, doctors in public hospitals go and practice in private clinics. We allow it. Should we not allow it then?
2: राष्ट्रीय सभा में आज सार्वजनिक पब्लिक यूटिलिटीज मंत्री ने नोवेल फॉन्स समेत कई इलाकों में नए बोरहोल्स की खुदाई का ऐलान किया। देश में पानी की स्थिति के मद्देनजर पानी के रिसाव को कम करने के लिए पाइप्स बदले जाएंगे। 2026-2027 के बजट में इसके लिए 1.2 बिलियन रुपयों का प्रावधान किया गया है। मंत्री पत्रिका सियावादेन के मुताबिक सूखे से सबसे ज्यादा पीड़ित इलाकों में जल्द ही 15 कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स लगाए जाएंगे। वे सांसद रामदास और बाबाजी के सवालों का जवाब दे रहे थे। प्रवीण जगनाथ ने आज लाइन बैराक्स में 2 घंटे बिताने के बाद वहां से प्रस्थान किया। वे प्रधानमंत्री दफ्तर द्वारा टेलीफोन सर्वेलेंस उपकरण की खरीद के संबंध में पूछताछ के लिए औपचारिक समन मिलने पर वहां गए हुए थे। अक्टूबर 2024 में मुस्ताक लीक्स के बाद से ये मुद्दा अक्सर सुर्खियों में रहा और पिछले साल राष्ट्रीय सभा में इस संबंध में विस्तृत जानकारियां भी दी गई। यासिंदर महमूद की रिपोर्ट।
3: प्रवीण जगनाथ को अवैध रूप से इंटरसेप्शन और निगरानी उपकरणों की खरीद से जुड़ी जांच के सिलसिले में बाद की तारीख से फिर से लाइन बैराक्स जाना होगा। पुलिस के अनुसार आज उनसे औपचारिक पूछताछ करने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अपने कानूनी सलाहकारों से निजी तौर पर विचार विमर्श करने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री और उनके वकीलों ने पूछताछ शुरू होने से पहले और अधिक समय मांगा। पुलिस ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उनसे पहले पूर्व ICT मंत्री दीपक बालगोबीन से भी पिछले जून में इस मामले में पूछताछ की गई थी। इंटरसेप्शन उपकरणों का मुद्दा फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सभा में उठाया गया था। बड़े पैमाने पर निगरानी से संबंधित एक संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने कहा था कि देश के कई स्थानों का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर निगरानी करने के लिए किया गया था और वहां स्थापित प्रणालियां पूरे देश में फोन कॉल तथा इंटरनेट ट्रैफिक को रोकने और उन्हें संग्रहित करने में सक्षम थी। इन प्रणालियों में 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि उनके रखरखाव पर प्रति वर्ष 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आती थी। उन्होंने ये भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद इन उपकरणों को सूचीबद्ध किया गया, बंद कर दिया गया और नेटवर्क से अलग कर दिया गया। अब पुलिस जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि इन उपकरणों की खरीद किन परिस्थितियों में की गई थी और के लिए जिम्मेदार लोगों की भूमिका क्या थी।
2: हर साल हजारों श्रद्धालु मॉरिशस में आस्था और भाईचारे के मसीहा कहलाए जाने वाली पेलावाल की मकबरे तक की यात्रा करते हैं। सेंट क्वा में विशेष प्रार्थना सभा लगती है और देश के विभिन्न इलाकों से वहां तक की यात्रा लोग करते हैं। 2026 के लिए इस तीर्थ यात्रा का विषय रखा गया है। औसाम एक पेलावाल पॉइंट सोसिएटे प्लीसिस एक फ्रैटरनल। आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इस गतिविधि पर ज्यादा जानकारियां दी गई।
4: असामाविक पेलावाल पॉइंट सोसाइटे प्लीजिस एक फ्रैटरनल ये 2026 में बियानुरी पेलावाल की समाधि की तीर्थ यात्रा की थीम है। ये तीर्थ यात्रियों को पेलावाल के पद चिन्हों पर चलने का निमंत्रण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर वर्गों, बीमारों और मुक्त किए गए गुलामों की सेवा में समर्पित किया था और उनके सम्मान और समाज में उनका उचित स्थान वापस दिलाने का प्रयास किया था। 8 सितंबर को पहली प्रार्थना सभा रात 8 बजे होगी और उसके बाद रात 11 बजे। तीर्थयात्रा आयोजन समिति के पैपात्रिक पुलिडो ने कहा, मोनसिग्नियर जुगन ने अपने संदेश में ये याद दिलाया कि कैसे एक ज्यादा न्यायोचित और भाईचारे वाले समाज की मांग की गई है। यदि न्याय न हो तो शांति नहीं होगी। इस समाज का निर्माण चल रहा है, रास्ते पर है। इस वर्ष भी कई NGO तीर्थयात्री

0: यात्रियों की मदद के लिए मौजूद रहेंगे, खासकर जरूरतमंदों के लिए। माइकल रामस्वामी ने कहा, ये एनजीओ आत्महत्या, ड्रग्स, शराब, घरेलू हिंसा आदि का निरोध करते हैं और कैदियों का समर्थन भी करते हैं। 2026 की इस तीर्थ यात्रा का संदेश स्पष्ट है, मिलकर ऐसा मॉरिशस बनाना जहां हर व्यक्ति के लिए जगह हो, उन्हें समान अवसर प्राप्त हो और कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे।
1: मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य को नया रूप देना, ये लक्ष्य है इलाकाई एफ्रिसिट्स परियोजना का। इस पहल के तहत ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप सदर्न अफ्रीका, यूएनडीपी और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की साझेदारी से मॉरिशस को लगभग 30 मिलियन रुपए की फंडिंग मिली है। इसके साथ ही मॉरिशस के कुल 2,500 और रूइक्स के 1,700 मछुआरे अलग अलग प्रशिक्षण प्रोग्रामों में भाग लेंगे। मकसद है मत्स्य उद्योग को ज़्यादा सस्टेनेबल, फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल बनाना। मॉरिशस में बांग्लादेश के उच्चायुक्त डॉक्टर ज़ोकिया हाद का कार्यकाल पूरा हो चला है। उन्होंने आज काठमांडू में गणराज्य के उपराष्ट्रपति रुबे हंगले से विदा लिया। दोनों महानुभावों ने मुख्य रूप से मॉरिशस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, बदलते वैश्विक हालात के बीच सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और आपसी संपर्क पर मंथन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई पर जोर दिया। वहीं सम्मेलन से अलग नेताओं की मुलाकातों पर भी खास नजर रही। आशा गोबिन।
2: बदलती वैश्विक स्थिति के बीच संवाद, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने की कोशिश। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 26वें शिखर सम्मेलन में एशिया के कई प्रमुख नेता एक मंच पर नजर आई। एससीओ के 25 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति सहित कई सदस्य देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, व्यापार, आपसी संपर्क और आर्थिक सहयोग चर्चा के केंद्र में रहे। सम्मेलन के अंत में बिश्केक घोषणा पत्र को अपनाया गया और सुरक्षा, ऊर्जा, परिवहन, नई टेक्निक, जलवायु और अन्य सेक्टरों से जुड़े 28 दस्तावेजों पर सहमति बनी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संपर्क और संभावना को एससीओ में भारत की सोच के 3 प्रमुख आधार बताया। उन्होंने आतंकवाद और उससे मिलने वाली आर्थिक मदद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई पर जोर दिया। साथ ही कहा कि देशों के बीच संपर्क बढ़ाने की किसी भी पहल में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी है।
3: दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। हम पुरुषार्थ में कोई कमी न रखे, हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है।
2: सम्मेलन के दौरान नेताओं की आपसी मुलाकातों पर भी खास नजर रही। नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए। वहीं व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग बातचीत में श्री नरेंद्र मोदी ने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। 25 वर्षों में एससीओ का दायरा लगातार बढ़ा है। बिश्केक का ये सम्मेलन भी ऐसे समय हुआ है जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और संघर्ष जारी है। ऐसे में अपने मतभेदों और अलग अलग हितों के बावजूद सदस्य देशों ने सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: उधर नेपाल में पिछले बुधवार को उत्तरी विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1,000 पार कर गई है। 3,900 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और इनके जीवित बचे होने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। 600 से ज्यादा लोग एक हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे हैं। अंदर हवा भेजने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन किसी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। उधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला के खिलाफ लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया है। इसके तहत च्योपो प्रांत के किसंगानी में आधिकारिक तौर पर एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत

फ्रंटलाइन कर्मचारियों, खासकर स्वास्थ्य अधिकारियों और वायरस से मरने वालों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संभालने वाले लोगों को टीका लगाने के साथ हुई है। आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आज रात और कल सुबह खासकर पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं, रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और हवाई ढलानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पूर्वी तथा दक्षिणी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 16, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:17 पर सूर्योदय, शाम को 6:01 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। अपियालेनी ख्वायो में, अपियालेनी ख्वायो में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंपा कार्तिक जो बड़की नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री मनु कार्तिक के मकान अपियालेनी ख्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM। स्कूल लेने ख्वायो में 58 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री प्रेमदत्त रामदुआ जो विश्वजीत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अलका देवी रामदुआ के मकान स्कूल लेने ख्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 11 AM। पियती लेन कास्तेल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धन कुमारी चुनी पिताजी नाम रामचरण जो सरिता चुनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनके बेटे श्री हरीश चुनी के मकान पियती लेन कास्तेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। नंबर 56 आबेदुलाकाई क्यूपी प्रोड में 72 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्रीमुनीश्वर द्वारका जो धीरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले MBC के कर्मचारी थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान नंबर 56 आबेदुलाकाई क्यूपी प्रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। रुद्बा 54 में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री बसंतराव बापामा जो वसंत नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान रुद्बा सैकाथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल मां की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। डेकोम रोड कारोलिन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रवि शांति भोजा पिताजी नाम जरी जो शांति भोजा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान डेकोम रोड कारोलिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाजिलो ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM।

Lauraté Road, Montagne Blanche, mais. Lauraté Road, Montagne Blanche, mais. 35 साल की, 35 years old, श्री अरविंद मानकू जो चिकोल नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान लौगाते रोड मोताय ब्लॉन्श से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताय ब्लॉन्श की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 2 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक सैक्वा और आसपास के इलाकों में एमिल बासे, सेंट मारी, इम्पास सेंट मारी, रूट बासा नंबर 1 और 2, मौसलमान लावाले और सोफिया लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सभी श्रोतागण को अनीता का प्रेम सहित प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप 819 किलोहर्ट्ज़ से जुड़े हुए हैं, जहां आप भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम का श्रवण कर रहे हैं। श्रोतागण, एक सुभाषित इस प्रकार है कि जो व्यक्ति सुभाषितों अर्थात श्रेष्ठ वचनों का रसास्वादन करके आनंद और प्रेरणा का अनुभव करता है, ऐसा पुण्यात्मा एवं सज्जन पुरुष संसार में सर्वत्र नहीं मिलता, वह अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं और प्रथम भजन की ओर बढ़ते हैं।
3: गजानन

भक्तों, मनुस्मृति में कहा गया है कि यत् कर्म कुर्वोतस्य स्यात् परितोषन्तरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वित विपरीतम् तु वर्जयेत्। अर्थात जिस कार्य को करते हुए मन में संतोष, प्रसन्नता, उत्साह हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत जिस कार्य को करते हुए मन में भय, शंका और लज्जा हो, उसे छोड़ देना चाहिए।

प्रियजन, जो व्यक्ति हर समय दूसरों में कमियां खोजता है वह धीरे धीरे अपना सम्मान और शांति दोनों खो देता है। निंदा, क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। दूसरों की

भक्तजन, कहा गया है कि माते व्रक्षते पिते भीते नियुक्ते कांटे चाभिरमयत्यपनीय खेदम लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। अर्थात विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हित के मार्ग में लगाती है, पत्नी के समान थकान दूर कर प्रसन्न करती है, यश को चारों दिशाओं में फैलाती है और लक्ष्मी अर्थात समृद्धि प्रदान करती है। सचमुच कल्पलता के समान विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं कर सकती।

श्रोताओं, धीर और दृढ़ व्यक्ति प्रशंसा या निंदा, सुख या विपत्ति तथा जीवन मरण किसी भी परिस्थिति में न्याय और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होता।

अर्थात परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने सिद्धांतों और सत्य का मार्ग कभी ना छोड़े। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपके साथ एवं ध्यान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, आमदे सरकार से जुल्मत हुई काफूर है, क्या जमीन क्या आसमान हर सिमट छाया नूर है। सामईन कराम, वो मकान बड़ी बरकतों का खजीना है जहां दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। उस मिट्टी की क्या बात है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पाकीज़ा जिस्म वाले खैरुल अनाम की जाय विलादत होने का शर्फ बख्शा। वो मुबारक मकान हर साल माह रबीउल अव्वल को पीर के दिन खोला जाता है। लोग उस मुकद्दस मकाम पर बरकतें लेने के लिए दाखिल होते हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां हाजिर होकर जिक्र व अज़कार करते और मीलाद शरीफ की महाफिल सजाते।

नामुकम्मल हैं। सामईन गरामी, इसी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी आज की महफिल शब नशरियात अख्तताम पजीर होती है। महफिल तो ख़त्म हो रही है मगर दिल अब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहर में डूबा हुआ है। बस यही इल्तिजा है कि ऐ परवरदिगार आलम हमारे दिलों को भर दे इश्क़ मुस्तफ़ा से, हमारी ज़बान को मुअत्तर कर दे ज़िक्र मुस्तफ़ा से, हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर दे सीरत मुस्तफ़ा से, हमारी सांसों को महका दे नाते मुस्तफ़ा से, और हमारी आखिरी कामयाबी हो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इन दुआओं के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, शब बख़ैर।

0: घरी मिला इबकत रात के ठीक 9 बजे बाद तू सुनता एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन
1: कंटीन्यूअस म्यूजिक
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
4: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
0: सब संगत लोग के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो लोग के मनपसंद चैनल एएम मोड पर रेडियो मॉरिशस और एफएम मोड पर रेडियो मनोरंजन और सब कल के स्वागत करते हैं। आज मंगलवार पहला सितंबर साल 2026 सितंबर के महीना में चले निशा हे और बेशक हम करते लोग के साथ अभी से लेके रात के 11 बजे भोजपुरी का प्रोग्राम मन करता को भी भोजपुरी गीत सुने के जगह पर सकबा टेलीफोन करे या फिर हमने टिकटॉक पेज पर सकबा एसएमएस करे टाइप करिए आगे क्लिक करिए रेडियो मॉरिशस भी टाइप करिए टिकटॉक पेज रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सबको के स्वागत बा। मंगल की रात है तो अभी गमटवा होते रही जलसा की रात बा गमट की रात बा खूब नाचब सा गाव सा कमरवा डुलावब सा तो चले पहल का गाना है सुरेश की आवाज़ में दिल धक धक करे रहा आपका ही धक धक करे रहा चले एक साथ सुरेश सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के संगत चालू के नाम

दिलवा धक धक करेरा और दिलवा तो धक धक करे जान जान जिंदा है सर हाँ कि नहीं हाँ और संगत्या लोग इतना जान ना सकी जब गमट के बात हो रहा था सब कोई खुशिया गमट करके नाचे के गावे के झूमे के कौन से संगत्या जो नहीं खुशिया गमट करके बोला था हाँ तो बेशक ऐसे ही गमट करते रहिए और उनके साथ देते हैं रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर संगीता हम अनुकर जन्मदिन बाज तधे मना प्यार आशीर्वाद उकर घर वाला उकर लड़का लोग उकर भाई जो साउथ अफ्रीका में हुआ सब हमन परिवार के नाम त बेशक आई अगला गीत और कहते दुल्हिन के दादी संगीता हमने गीत और खातिर हई गीत चलावते इस क्रिश्चियनो मेसी खातिर और उनके साथ वो तो धीरेन्द्र बिस्ता तुलसी राकेश फिर हगी चली मिलियोनियर की ओर से और माँ इंद्रानी बिहारी जोन कौच मिली थे और है गीत हमें चलावती सा सुनीता बुदोई खातिर हेलो लवना लेडी जागो और रवि बंगारू है गीत और खातिर और तोहर पत्नी करुणा खातिर साथ में मिस्टर प्रदीप उनके साथ देव था निजम बहादुर तपन कुमार माला यूश वजराज रवि बंगारू हितेश बंसी विक्टर परवीन साहिल जवीना तनुजा अर्जुन साई केदू वियडो गीत और खातिर

Hai kita cerita tu isah Manjula Kauli sir kenal. Hai Manjula, namaste. Akash Chetan BM ke saath Devat Dhawan. Akash ji, kaise ho samachar? आशा करते हैं सब ठीक ठाक. हाँ जी, सब ठीक ठाक बा. और त्रिलोक के साथ देवतेजा रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन पर टिकटॉक पेज भी हमने लाइव प्रसारण हुआ था. तो चलो अगला गीत सुनब जा, दुल्हन के दादी. और एक गीत आजकल खूब क्रेज मचा हुआ था, सब कोई है गीत के बढ़िया ही पसंद कर रहा था. एक गीतों के बोल ऐसा बा एकदम चकाचक. तो चलो एक साथ सुनब सब कि दुल्हन की दादी का बोलतवन है गीतवा में.

सिकुड़न से ही पानी काफ़ी नहीं बा तो सिद्धि ब्रव्य मांग कर रहा था जनता लोग से कि पानी ज़ाया नहीं करे कि पानी का आश्रय नहीं करे कि हर एक बूंद जरूरी है पानी की। पानी ही जीवन है, जीवन ही पानी है। पानी नहीं तो कौन सी कर सा, पानी से बिजली बनेना, पानी से घर के काम काज हो रहा, पानी से ढेर कुछ हो रहा, तो पानी का आश्रय नहीं करिया है ठीक बा। पानी भरे गई थी बाहर गौरी की आवाज़ में गीता चरप सा चलाओप सा मिशन रोड मिशन क्रॉस रोड लाल माटी के रविराज सिन्हा बिचुक की और सक पत्नी स्वयं प्रभा बिता प्रत्यक्ष और सब बिचुक परिवार के नाम अमृता दुंगूर है गीत और खतीर और बिता अभिषेक खतीर कविता अनु है गीत और नाम शगुन है गीत और नाम त्रिकाल शक्ति है गीत और नाम ललिता ललिता जी है गीत और खतीर चलावती सा और है गीत चली रीता सीतालु की ओर से है गीत चली कर लड़का लो खातिर शैलेश स्वस्ती अनुष्का और कर बहिन रेणुका खातिर और बिना भी उनके साथ होता है। हेलो बिना नमस्ते सुस्वागतम चले सुने गीत पानी भरे गई जी।

संगठन के जो सीसीटीवी टीवी कैमरा है कर महत्व बहुत ही है वो खाली सीमा में नहीं डाला सीसीटीवी कैमरा सब अपन घरों में डाले अपन तेरास में अपन नाकुजिन में या घर के पीछे भी कह के आजकल ढेर मना घर में लिखा था इसे आदमी हेर के चोरी कर रहा था तो अपन सुरक्षा खाते परिवार की सुरक्षा खाते एगो सीसीटीवी कैमरा जरूर लग गई है जाए बहुत जरूरी है और इसे अपन प्रताप सिंह कनेक्टे करे और जहाँ भी रह दूसरा देश में भी काम में भी हुआ था सकबर दिन के पोता बम ऑन करके देखे कि घर में कौन चीज हुआ था कोई घर में हेरा था कि नहीं तो बड़ा ही खतरनाक जमाना है जाना जरूर सीसीटीवी टीवी कैमरा जरूर लग गई है जो बहुत जरूरी है आज के जीवन में अगला गीत हमर बीच के पास बा है गीत चलाओ थी सर अनिता लाल जी खातिर अंसर इकबाल गीतों नाम जैनब रोशन सेबास्टियन के साथ देवधवन और बिपिन भी बोलक फेसबुक में ओके गीतवा नहीं मिलल तब बा गीतवा हमर बिस के पास बा चरावत ऐसा भी है माला बोलते नमस्ते हाँ माला हम ठीक हैं तू कैसे हुआ बॉडी गर्ल है गीत तोरों नाम बहुत बहुत प्यार के साथ तो चल एक साथ सुन अब जा अभिमन्यु अभिमन्यु हरिपोल के चुन गावतवन हमर बिस के पास बा

अब अपनी बात करब सर थोड़ा सुन व्यंजन के बारे में। जब कोनो तकारी पकावत है सर तो कर में करी के पत्ता डालब सर दस्ती छरेला। करी पत्ता यानी कि कागपुली गुमोरशन पत्ता है जो हर भोजन में जाला, चाहे वेज बनावत हो या नॉन वेज। तो करी पत्ता जो है वो खाना में खुशबू और स्वाद बढ़ावेला और ये सेहत खातिर बहुत ही फायदेमंद है। एक में एंटीऑक्सीडेंट बा और एक में ढेर पोषक तत्व बा। पाचन ठीक करेला, दिल के डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करेला और बाल और त्वचा खातिर बहुत ही जरूरी है। काहे फूले जब खेबर तो तुहर बाल लंबा होई और त्वचा साफ रहेला चमकीला। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के सहारा देवेला। और जैसे कि बोली कि करी पत्ता के पारंपरिक रूप से कई घरेलू नुस्खा में भी इस्तेमाल होला। तो ज़रूर जब कोनो भी तकारी पकईब ऐसे मसाला में पकावत हो सिपा आलू बैगन मसाला सिपा आलू बैगन मसाला सिपा होगाए पकावत हो सुइया के या दाल पकावत हो या कोनो चीज़ भी तो करी के पत्ता लाहो से डाल दिया आ हा हा और तकरिया एकदम सौंधा हो जाए। लड़का लोग जाने ना कुछ या करी पत्ता लड़का लोग नहीं जाने रहा हो पर लड़का लोग के बताइए कि जब जेबा जेपिस खेने तो लड़का लोग के संगे जाके लड़का लोग एक दिन सखी अपन से देबुए करके कहे कहा कि ना भी रहा तो लड़का लोग सखी अपन से देबुए करे हो कि नहीं। रात की 9 बज के आधा हुआ था तू सुना था रेडियो मॉन्शस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी का प्रोग्राम और जय प्रताप सिंह के साथ लाइव प्रसारण चला था मुका से। साथ में हमने की ब्रॉडकास्ट चला था टिकटॉक पेज अब रेडियो मॉन्शस पर भी। तो ढेर कोई हमने की देखा था बहुत बहुत धन्यवाद ढेर कोई सुना था शुक्रिया। चला अगला गीत सुनब जा और अगला गीत है माँ बाप के मोर गीता गजाधर की आवाज़ में। गीत विद्यानी सी चैन खातिर और रोशन खातिर भी और बहुत बहुत प्यार से सुनतवन सन लव श्री राम जोन और इंदिरा की ओर से गीत चली राजेश उगर और सब उगर परिवार के लिए। और हे गीत आज चलावती स श्यामा माहेराली के नाम जो उनके साथ जुड़ल बा। फिर रेहाना हवन फिनिक्स से बहुत बहुत धन्यवाद साथ देखा खातिर जलीराज जियाद खातिर भी एक गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ। सुमन जलसा ग्रुप भी उनके साथ देवत हवन तो चला गीत सुने माँ बाप के मोर।

और माँ बाप के मोल जिन है तो बड़ा अनमोल है। माँ बाप की कोई नहीं इसकी मोल लगाई और माँ बाप जितना बनने क्या खातिर करेला इदिना में कोई कोई खातिर नहीं करी जितना को माँ बाप से बनने क्या खातिर करी। अब जरा बॉलीवुड रिलीजेस की ओर बढ़ब जा है। सप्ताह के महीना तो शुरू कर बार कब से महीना कौन कौन फिल्म रिलीज हो के बाद फिल्म रिलीज हुई मिर्जापुर बहुत जल्द साथ में हैवान। मिर्जापुर में तुलिकबा पंकज त्रिपाठी और अली फजल के और हैवान फिल्म में रही अक्षय कुमार सैफ अली खान और कलाकार। फिर आई फिल्म दायरा कर में रही करीना कपूर कुणाल केमू प्रीति जिंटा और फिर ववान फिल्मों के नाम है। एक में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के दिग्विजय। तो ये सब फिल्म रिलीज हुई है सप्ताह के महीना में और ज़रूर बड़ा पर्दा पर सब फिल्म सब पर देखे। अभी सुनब जा मच्छी मरुआ हमर नाम गीत चलावत इस एक व्यक्ति की माता जी के नाम इंद्राणी बिहारी और अनिशा ज्योत साहब गीत और नाम देवीना राम बर्च गीत और कथित सेविया एंजल गीत और नाम और विद्यानी सिचन हेलो है गीत और खतिर चलावती सब बहुत बहुत प्यार के साथ। और अभी जितना कोई नाइट शिफ्ट में काम करता तब वो को आज बोलते जैसे अस्पताल बा

आज दुनिया भर में पर्यावरण के लेके सब कोई चिंतित बा। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, और जब ग्लोबल वार्मिंग होता तब क्लाइमेट चेंज भी होता, और हाल में देख ली सर कि क्लाइमेट चेंज से कौन ची होल नेपाल में एगो अवालांश जो हर मोटाई पर से टूट के गिरल, और जब गिरल तब कितना गांव के अपन चपेट में लग ऐसा भूल जाता कि 1,000 लोगन के मौत हो गल बा, और कितना कोई डिस्पारित हो गल बा, लापता नहीं बल कहाँ हुआ सर। तो ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ था। प्रदूषण जब करी था सर, जब पोल्यूशन करी था सर, एक लिफे होला हमने के लॉन्ग विगर में क्लीमा पर तैसन प्राकृतिक प्रकोप होला, ऐसा बुझा था नेपाल में जोनल जैसे सुनामी आल बा। ई कहे थे अवालों शर्मा पर एगो भूस्खलन, और कितना कोई कर में मारा गल बा। और है जो ग्लोबल वार्मिंग है चारों ओर होता है, खाली नेपाल में नहीं दुनिया भर में, और हिंद महासागर में सुनल बा कि नवाम दिशा में इतना गर्मी करी कि जो हमने के कोहाय है उस अकेला मरे लगी। तो बहुत चिंता की बात है कि जब हिंद महासागर में जब गर्मी करी इतना, ये एलनिनो के प्रभाव है और प्रदूषण के, तो जब ढेर गर्मी करेगा तो कोहायलों के मृत्यु होगा, कोहायलों के मृत्यु होगा तो टापू लोग खतरा में पड़ जालन सर। तब भगवान से प्रार्थना करब जाए कि ऐसी स्थिति ना हो, मेरी कोहाल ना मरी और इतना गर्मी नहीं हुई। पर दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग बोला था कि वैज्ञानिकों को बोला था, और जितना में थे वो लोग बोला था उनसे कि इंडियन ओशन में जब नवम दिशा में गर्मी के मौसम आए तो अवरी रहता एक दूसरे की थी गर्मी मारी, ऐसा गर्मी कबू न दिखल गल बा न कबू दिखल जाए, ऐसे उनके अनुमान बा। तो खातिर सब ये कमती करे खातिर हम हमेशा मांग कही जा सके पॉल्यूशन नहीं छा करे कि नहीं छा प्रदूषण करे कि पर्यावरण। तो चले पर्यावरण पर गीत सुनब जा बहुत बहुत प्यार के साथ, और सुनन चितंग के गीत तोहर नाम उदय दरी नाम के बेच पोस से, फिर है गीत चरी केशव विलक के नाम, किशन गुड़िया, प्रीतम राजमीला और सब संगत्यालु खातिर।

अगर कोई इंसान के स्वास्थ्य अच्छा बात तो कोई लंबी आयु होला, पर अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रही तो कैसी लंबी आयु हो रहा। अच्छा स्वास्थ्य करे का अच्छा स्वास्थ्य में रहेगा थे चेहरा होम मेड खाना खाए के, जन घर में अपन हाथ से खाना बनेबा तो तू जनबा कितना मात्रा में तेल नमक के इस्तेमाल करत हो, भाड़ा खा के खेबा तो नहीं जनबा कर में कितना तेल बा या घा बा कोलेस्ट्रोल बा, पर अपन हाथ से कुछ सैंपल लेकिन कदुआ कौन दे कदुआ मसाला में पका दे रहा, दुगो पाता पका दे रहा, पो लामुन की चटनी तो आराम से खा ले बार पौष्टिक खाना। अब बाहर में जाए तो खेवा के गाते खाए की है कि नमक दस्ती बा कि तेल देर कोई कि कबू कबू बाहर के खाए कि जब खाना खालन से तो गास्ट्रो हो जा रहा। तो ये सब समस्या अक्सर बच्चे का तेर अच्छा स्वास्थ्य में रहे का तेर ज़्यादा से ज़्यादा होम मेड खाना खाइए। अगला गीत स्वास्थ्य कर अच्छा भाई गीता चलाते से कृष्ण तो गीत राम के और पत्नी प्रतिमा और बेटी रिया खातिर और है गीत चली दिशा के नाम और चंद्रानी भी उनके साथ देवतन संजय हरी चले गीत और खातिर संजय बिहारी भी साथ देवत हवन और चंद्रानी की प्रोग्राम बड़ी अच्छा लगा था। तो चंद्रानी है गीत तोहरो नाम स्वास्थ्य जिक्र अच्छा बा

हमने की बड़ा आदमी लोग हमेशा ये बात बोलो बाकी बेजुबान जानवर लोग के नहीं मारे की चेहला वो लोग में भी प्राण बा वो लोग के भी जीवन बा वो लोग के भी दर्द होला। देखिए ऐसे ढेर कोई बिना भेद के कुत्ता के लात से मारे रन से ये बहुत बहुत बहुत अच्छा बात नहीं है कि कुत्ता के जब मरबो से तो कुत्ता थोड़ा शराबी तक प्रॉब्लम हो। कुत्ता बेजुबान बकर मुँह नहीं बताया कि बेचारा के तो काहे ढेर कोई का जो नहीं काहे सिकान खोजन सर कुत्ता के होश से मारे रन सर या लाते लात मारे रन सर। अगर नहीं सकते कुत्ता पोसे तो कुत्ता का ही आने लपन लगी। कुत्ता हो एक में प्राण बा है कौन में जीवन बा ओकरो भूख प्यास लगेगा तब जब कुत्ता जब भूखा था ओके भूख लगल बा या प्यास लगल बा तो ढेर कोई लात से मारे रहा छी। ऐसा वो व्यक्ति लोग बाई दुनिया में ना क्या कर भैया बड़ी मूवी आदमी आजकल सब कोई तो मूवी नहीं हुआ पर अच्छा आदमी वह पर मूवी आदमी लोग बाबी लिख नहीं सके से कुत्ता के मारे रन सर वो बेजुबान कहाँ जाना था बेचारा था भूखा था उसका भूख लगल बा या प्यास लगल बा पर जब व्यक्ति कोई ना गर्म पानी दे के एक देखी गर्म पानी दे झील देवे रन सर और कुत्ता ब्लेस चला जरा सोचा अगर तुहरा पर कोई गर्म पानी भीगी या तोरा कोई रात से मारी तो तोरा कैसे बुझाई। तब वैसे ही कुत्तों में भी प्राण बा एगो पाप है जो व्यक्ति कुत्ता के बेजुबान के मारे रहा अत्याचार करे रहा तो ये एक बहुत बड़ा पाप है एक कर्मा बुलाला और एक दिन जब भगवान के जाप से था हमने के न्याय हुई। तो कोनो भी काम करे से आगे बेजुबान पर अत्याचार करे से आगे सोचिया कि लाहो से भगवान ने के सब आक्षण देखा था। और रात की 10 बजे तक चल सुनब जा भी नीरज गुप मधु के गीत कर ली और रह गीत चरावती सर खासम खास सायरा दाहू खातिर फिर हैगी चरी बिंदिया के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ इंदिरा चिंताराम बेटा चंदन बहु प्रिया बिता जाय बहु पूनम ऑस्ट्रेलिया से वंजा और रंभा लास्ट से

तीन गो बेटी एक घर होला और सब शिव परिवार इटली में हवन सा हमने के सुना था बन जा बहुत बहुत प्यार के साथ विशाल मंडप भवन इटली में कर पत्नी कर बेटी और कर सब परिवार के नाम सब मंडप परिवार मावताबा के मिस्टर मंगल हमने के साथ देखो थोड़ा लॉन्ग चिबुक राजा और जस्वा के नाम चली जस्वा के उसे का महाराज कुमारी और बेटी जो मॉरिशस में बा विदेश में बा तो सुदेश जस्वा गीत और खातिर लॉन्ग चिबुक राजा नानो खातिर भी संजीव प्रवीण भैरव श्याम मंगल और राजमाना खातिर भी जो हमने के बहुत बहुत प्यार से सुना था शास्त्री बनमाले गीत तोरो नाम तो ये सब श्रोता लोग गीत सुन तो नीरज मधु की गावल गीत कर ले नहीं काली गीतों के नाम है काली ओके आली

0: 7 days a week, 24 hours a day. Live. This is Radio Marxist.
1: Continuous music.
2: RM free.
3: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमर

0: और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
1: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
2: रात के 10:06 हुआ था 50 सेकंड। यह तो हम पसंदीदा रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन एमबीसी के दुगो रेडियो चैनल पर चलाता तो लोग के पसंदीदा प्रोग्राम रोजाना के प्रोग्राम में ही भोजपुरी तड़का रात के 9 से 11 एक घंटा होगा। अब एक घंटा बाकी बा मन करता को भी भोजपुरी गीत सुने के तो फोनिंग करिए कर जाओ दे विद्याक और अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत सुनिए जा। अगला गीत जो जो भोजपुरी वो इस गीत आगे दे और गीत चलिए अमृता गणेश के नाम रह पीता हूँ बहुत बहुत प्यार के साथ फिर रागिनी के साथ देवतन पूर्णिमा पक्की राय गीत थोड़ो नाम और ये गीत चलाते ही सती ना बुदना के और सकल घरोला गुड्डू को बेटी और सब बुदा परिवार के नाम और है गीत चलाते ही संजना के नाम अगर मंगे तर और कर होने वाला सास और ससुर जी खातिर चले साथ से नवजा भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज की बर्तन से जो जो
3: जो जो जहाँ जाए बेतु जो जो जो जहाँ जाए

ऐसे मान्यता है कि लड़का लोग में भगवान वास करेला, लड़का लोग मासूम रहेला, नादान रहेला, तो विदेशना दजोफ ना बोझे तो लड़का लोग पर बुनाविनी हाथ नहीं उठे, लड़का लोग जब मूवी करी तो लड़का लोग के चला समझाए कि अब हाथ उतने छोड़िए ना, लड़का लोग तान रहे, लड़का लोग सबकी ब्लेसे भी हो जाए। तो चल अगला गीत सुनब जा, कमीना दोस्त अविना रामदारायण गैरे वन अविनाश रामदायन और रोशन सरा सिंह कमीना दोस्त और गीत चली आशा जानू खातिर रैरन को तेज ममा कुमारी फिर शुभम दीदी आरती जीजा जी और सब जानू परिवार के नाम रोजीदावन हाईलैंड से इब्राहिम पोटवी से राफिक मोहित तायक से और हाफिज अवन लाविनिया सैम्पियर से उनके साथ देवोथवन फिर जैनब और सब पूरे परिवार शामुनी शो में कहने के रोजीदा हवन हाईलैंड से और राफिक मोहित तायक से इब्राहिम पोटवी से बाहर आबू हवन बाकवा से तो चला सब संगत चालू खातिर है गीत सुनम चा कमीना दोस्त।

जीवन में कभी कभी ऐसा को मोड़ आवेला जब इंसान अकेले पड़ जाला। वो महसूस करेला कि कोई के खुशी नहीं रहेला, कोई के नहीं चाहेला और उस जिंदगी से परेशान हो जाला। तो उस समय ओके छना अपन आप से बोले कि अगर कोई अंक नहीं चाहेला तो भगवान अंक चाहेला, हमारे माँ बाप अंक चाहेला, हमारे भाई बहन अंक चाहेला। जिंदगी में कभी दिखवाजी नहीं हुई, कभी हिम्मत नहीं हारे के जिंदगी में उतार चढ़ाव होला। जिंदगी जो है सबकी जिंदगी में कभी अप्स एंड डाउन्स होला, पर कभी कभी इंसान इतना दिखवाजे हो जाला कि अपन आप के अकेला महसूस करेला। तो ऐसा विचार मन से निकाल दिया कि तोरा कोई नहीं कुछ है, तोरा दुनिया में ढेर कोई बात जो तोरा कुछ है, तोरा माँ बाप, तोरा जन्म दिल लगभग, तोरा संगतिया लोग। अब सब संगतिया नहीं पर कोनो कोनो संगतिया अच्छा रहेला तो लोग तोरा खुशी रहे रहो कि नहीं। और इस दुनिया में सबके अहमियत बात सबके लिए पहुँचता हूँ उस बात ठीक बा। ऐसा में तू सुनने तो के का हम बोलत हैं भोजपुरी बॉयज के गाना है और गीत चलाओ दिशा कासम का सबनी के दोस्त नील की ओर से कर पत्नी शिवानी का तीर। और नील बोला था अपन पत्नी के कि अपन पत्नी से बहुत बहुत प्यार करेगा अपन जान से भी ज़्यादा। ओए होए क्या बात है। नील और शिवानी आप रह शुम करिए और साथ में लोगों को संगतिया बा रेसा भाई। तो शिवानी और नील तो की जोड़ी ऐसे ही राम सीता लिखा रही, कृष्ण राधा लिखा रही और ऐसे गमट करते रहिए सर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। तगला गीत भोजपुरी बॉयज की आवाज़ में शिवानी और नील खतीर शुम करने के दोस्त रेसा के नाम।

रात के 10:18 हुआ था। तू सुना था रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस AM मोड पर और रेडियो मनोरंजन FM मोड पर 94.96, 98.2 FM पर और रेडियो मॉरिशस 8.19 किलोहर्ट्ज़ पर। तो लोक संगति अजय प्रताप सिंह हैं। अभी रात के 11 बजे रे बोल बोले और अब वो कहानी सुनाओ। तो लोग कहानी के शीर्षक है वफादार कुत्ता। तो जाने रह सकी दुनिया में मैंस बेस्ट फ्रेंड है ओकर डॉग, यानी कि मैंस बेस्ट फ्रेंड इज इज डॉग, ले मेयर अमी दे लम से सो शियन हो कि नहीं। तो एगो गाँव में रामू नाम के एगो किसान रहता हल, ओकरा कर लगे मोती नाम के कुत्ता रहल। मोती बहुत समझदार और वफादार रहल। वो हरदम रामू के घर और खेत के रखवाली करता हल। और एक रात रामू जकर परिवार गहरी नींद में सुतल रहल, वही समय कुन एक दुगो चोर घर में घुस आल। मोती चोर के आहत सुन के जोर जोर से भूखे लगल। तो ओकर आवाज़ सुन के रामू के नींद खोलकर रामू बाहर निकल के देखलक तो चोर भागे लगल। गांव के लोग भी जुट गल और चोर के पकड़ लेलन जा। रामू मोती के बहुत दुलार करलक और कहलक, तू हमार परिवार के बच्चे दा, तू सच्चा वफादार दोस्त हवे। उ दिन से गांव के सभी लोग मोती के बहुत सम्मान करे लगलन सा। तो कहानी की सीख यह संगत्यारो कि सच्चा दोस्त उ होला जे मुसीबत में काम आवेला। वफादारी या बहादुरी के हमेशा सम्मान करे के चाहे। और तोहर कुत्ता जो है वो केवल कुत्ता नहीं है, वो तोहर घर के रखवाली करेला। वो भैरव भगवान है और अपन कुत्ता के अपन लड़का लिखा पोष्य। ये कुत्ता जो है ये सबसे वफादार जानवर है दुनिया में। अब जरा सुनब जा मिस्टर जोस की कहानी। मिस्टर जोस रतवा के कहाँ जाता हो लिखिया अपन पालतू तो कहूँ अभी भुला के कहूँ चल जाई। मिस्टर जोस 20वीं दीपावली तो अगले वन और की छत से यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के मतलब सब स्टूडेंट्स के नाम और हमारे कॉलेज लोग के नाम जो बी ए फ्रेंच, एम ए फ्रेंच और पी एच डी फ्रेंच के कोर्स में हों सर, और साथ में सेंट ओबे SSS कॉलेज के वह सब स्टूडेंट्स अध्यापक दोस्तों के नाम और मुत्तु कुमार एंड सांगेरी SSS जो सोरी नाम में बा वहाँ के सब अध्यापक और स्टूडेंट्स लोग के नाम। तो चले एक साथ सुने मिस्टर जोस की कहानी। मन करता नाचे के कमरवा डुलावे के नाच गाव झूम कमरवा डुलावा हो आगे मिस्टर जोस अपन पालतू कहाँ छोड़ ले आगे मिस्टर जोस।

जिंदगी ऐसे ही रह रहा, कबो कबो खुशी बा, कबो गम बा, कभी विस्की कभी रम, कभी खुशी कभी गम। हाँ अच्छा बोली ना, कभी खुशी कभी गम, कभी विस्की कभी रम। तो प्रॉब्लम सब कोई की जिंदगी में आवेला। राम भगवान के परल इतना 14 वर्ष वनवास जाए के तो हमनी इंसान नहीं सा, हमनी पर कौन सी बीती हाँ कि नहीं। तो सबके जिंदगी में प्रॉब्लम आई थी जाती रहेला, पर जैसे हम बोली तो रहे कि चेहरा देखो वाजे नहीं हुई कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और अच्छा सोच बता। अच्छा होला भैया अपने गाची सोच बता, सब पेसिमिस्टिक विचार आए तो हर मन में दिकवास हो जाएगा। जिले जिले जिले तू जिले और प्यार से जिले, दो दिन के जिए के बाद कौन त्राकाली हो तो। अरे भाई जाए दे जिसे जाता त्राका कितना ले भैया, कितना त्राकाली हो बोला था त्राकाली बता तो हर सर के जन जन बार बार उसे की सब झड़ जाए। अब देखो बोलता भाई मामू को कोसो से भी कैसे जाए। चला गीत सुने उमेश दोहू की आवाज़ में झीले झीले। अरे गीत फरीदा जी के नाम फिनिक्स से वन। हाय फरीदा, और फरीदा बहुत प्यार से सुनता वन और प्रोग्राम के एंजॉय करतन बतन प्रताप जी आसान नहीं भाई पापा सिरा भी कूल है। तो फरीदा चले गीत तोहर खातिर, और जितना कोई बिरात के उनकी सुनता सब कोई के नाम, जितना कोई इंटरनेट के जरिए सुनता है, कोई मोबाइल पर सुनता थे, कोई रेडियो के जरिए जहाँ तक हमकी आवाज़ पहुँचाता था, गीत तो के नाम झीले झीले।

और भाई नील बड़ा जोर नाचता, भौजी शिवानी भी नाचता संगे संगे, भाई रेजा भी, ओहो देखा है देखा, भाई नील तू तो जाने ना नाचे भैया, भौजी भी जाने ना नाचे, भाई रेजा भी नाचता, ए हे जिले जिले जिले जिले। हाय कहते नचाए नील।

इसी नचते गाते रहिए और हम के साथ झूमते रहिए रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। और अब पीमा के बारे में बात करें, अब सर तब पीमा जाने तकारी के जो है वो स्वादिष्ट बना हुए रहा और पीती पीमा बा गो पीमा बा पीमा कारी बा। और एक बात थोड़ा बताओ, अगर तू खुश रहे तो पीमा कारी के तरकारी बनाए के तो जब पीमा कटबा पीमा कारी तो का सब बिया निकाल दिया, ओके धो के तब तरिया बिल्कुल तीता नहीं रही। आजकल पीमा कारी बहुत मौसी बाजार में मिल रहता तो ज़रूर जब पीमा कारी खोए तो बिना तीता खा के पीमा कारी खाए के तब पीमा कारी के ओके काट के ओका सब बिया निकाल के धो के नीमन से तब ओके पकैया डाल दिया चोली प्याज से प्याज डाल के आ हा हा। और जब पीमा की बात हो रहा था पीमा के जो है अचार बनेरा पीमा के चटनी बनेरा हो कि नहीं है तो ढेर कोई खुश पीमा खाए के। और भारत में जेब तो जितना पीमा के और खुशियन से खाए के का बोलबा और तो लोग एगो स्टाइल है वो लोग की कुछ जैम है पीमा के इस्तेमाल करे के हैं। और हम यहाँ मॉरिशस में ढेर कोई पीमा खुशियाँ खाए के ढेर कोई नहीं खुशी रहे, इस सब डिपेंड है तो लोग के टेस्ट पर पीमा जरूरी है। गो सलाद बनेरा चटनी बनेरा पीमा नहीं रही

कोण चटणी कोण सलाद बनवता. सुधीर राम खेळावन गावत वन छोटका पीमा और हे गीत चलावती सर बिंदिया के नाम बिंदिया के अवसर घरोला राकेश जी के नाम और हई गीत चरावती इस विमल बुदोई के उससे कर पत्नी और सब परिवार के नाम और हई गीत चरी नंदिनी खातिर नंदिनी के उससे कर माँ कर पिताजी और को छोटा भाई खातिर और इस समय जितना कोई भी ड्राइव करे था कहूँ जात हो या कहूँ आवत हो फिर कोई अभी अनुजिल पर नींद नहीं लगा था हई गीत तलो के नाम और फिर कोई भी गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी आपको शिक्र रहता है तो गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी के साथ हो जाएगी गीत छोटका पीमा

बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये हम नहीं बोलते हैं, नीरज गुप मधु बोलता सबसे बड़ा रुपया। हे गीत के संगे वो छोटर का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात की 9 बजे से अभी हमी के साथ दिला जाए तो लोग के फोन कॉल से SMS खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। टिकटॉक पर हमने खातिर हमने की देखी खातिर शुक्रिया। ठीक 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए और नितिशा से सुन बस सुनहरी पर प्रोग्राम रात के 12 बजे ने और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे ने नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बुधवार की रात की, रात के 9 बजे से 11 बजे ले यही दुगो चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम रही भोजपुर।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सभी श्रोताओं को नीतूषा का प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, कुशल मंगल है। तो आइए आज सुनहरे पल में उन्हीं यादों को फिर से ताजा करते हुए आपको ले चले हैं 60s, 60 के दशक। और 60 के दशक यानी कि साल 1960 से लेकर 1969 तक कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने रहे, सब तो आपको सुना नहीं पाएंगे, लेकिन चुन चुन कर जो आपके मन को खुश कर जाए वही कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की। साथ दीजिएगा।

जब 60 माने कि 60s के दशक की बात करते हैं तो वो भारतीय संगीत सुनहरा दौर था जिसने शास्त्रीय भारतीय धुनों को पश्चिमी संगीत के साथ जोड़ा। इस दौर में मेलोडियस गाने, विविध वाद्य यंत्रों माने कि इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग और भावनाओं को गहराई से व्यक्त करने वाले बोल प्रमुख थे, जिससे भारतीय सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान मिली।

गाने हो तो ऐसे, धुन हो तो ऐसी, और बोल माने की जो लिरिक्स थे वो तो कमाल के ही थे। वैसे श्रोताओं, 60 के दशक की बात कर रही है तो जो शुरुआती दौर था, इस दशक ने भारतीय संगीत को शास्त्रीय, जैसे कि हमने कहा, और पश्चिमी शैलियों के फ्यूजन से बदला। 60 के दशक के गाने अपनी मधुर धुनों के लिए जाने जाते थे, जिसमें शास्त्रीय भारतीय संगीत का गहरा प्रभाव था। इस दशक के संगीत में तबला, सितार, सारंगी जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ साथ

पश्चिमी वाद्य यंत्रों जैसे गिटार, पियानो और ऑर्केस्ट्रा का भी प्रयोग किया गया और इसी दशक के संगीतकारों ने भारतीय संगीत में कई नई धुनों को जन्म दिया जिससे आज भी भारतीय संगीत समृद्ध है।

हमेशा कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, और गोल्ड जो है कभी पुराना होता नहीं है। ये जो पिटारा है गानों का, आज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनहरे पल कार्यक्रम में आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। वैसे 60s के दशक के बॉलीवुड संगीत को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे साहब जैसे महान गायकों का स्वर्ण युग था, जिन्होंने अपनी आवाज़ों से दर्शकों तक राज किया। ये संगीत अपने दिल छू लेने वाली धुनों, रोमांटिक गीतों और भावनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है, जिसके उदाहरणों में अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, या फिर दीवाना मुझसा नहीं जैसे गाने शामिल हैं। अगर अभी शुरुआत कर देना तो पूरी रात ऐसे गाते गुनगुनाते बिता देंगे। श्रोताओं, 60 के दशक की जो खासियत रही वो रहे उनके महान गायक, जैसे कि हमने कहा रफ़ी, लता, मुकेश, किशोर जैसे गायकों ने अपनी सुरीली आवाजों से हिंदी सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी। उनके गानों में भावनात्मक गहराई और सरलता थी जो आज भी श्रोताओं के दिलों को छू जाती है। प्रेम और भावनाओं का वर्णन करने वाले गीत इस दशक के संगीत की पहचान रही। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, और 60 के दशक का बॉलीवुड संगीत एक ऐसा खजाना है जो आज भी कई लोग के दिलों में जीवित है। ये तो हम सब मानेंगे श्रोताओं कि 60 के दशक में गाने मेलोडी से भरे होते थे। हर गाना अपने राग और सुर की खूबसूरती से दिल को छू जाता था, चाहे वो रोमांटिक डुएट हो या फिर सोलफुल सुलू। उसमें एक नरमी या यूं

कहीं स्वीटनेस, जो मीठापन था, वो कभी पुरानी नहीं हो सकती। रफी साहब उनकी आवाज में रोमांटिक सॉफ्टनेस और जज्बात का दरिया था, तो लता जी तो सुरों की मलिका थी, जिनकी आवाज एक दुआ प्रार्थना की तरह लगती थी। मुकेश साहब की क्या बात, दर्द भरे और सोलफुल गानों के लिए मशहूर। किशोर कुमार मस्ती हो, रोमांस हो और वर्सटैलिटी का आइकॉन, और आशा भोसले जिन्होंने कैबारे, रोमांटिक और क्लासिकल सभी स्टाइल्स में अपनी छाप छोड़ी।

गायकों के अलावा जो संगीतकारों की कला थी वो तो अद्भुत ही थी। 60s में म्यूजिक डायरेक्टर्स ने फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई दी। शंकर जयकिशन जो स्टाइलिश और ग्रैंड ऑर्केस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे, तो मदन मोहन गजलों और सोलफुल मेलोडीज के उस्ताद रहे। एसटी बर्मन फोल्क और सोलफुल म्यूजिक के जादूगर। नौशाद साहब क्लासिक बेस पर अमरत्व प्रदान करना जानते थे और रोशन साहब कवाली और गजल स्टाइल के लिए एकदम ही प्रसिद्ध थे। और उनके अलावा जो शायरी और लिरिक्स की खूबसूरती उस जमाने के कैसे भूल सकते हैं, शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी जैसे लिरिसिस्ट गीतकार, उन्होंने शब्दों को कविता बना दिया। उनके गाने बस सुनाई नहीं देते थे बल्कि दिल में उतर ही जाते थे।

या फिर क्लासिकल बेस्ड, राज कपूर, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी, वाहिदा रहमान, साधना, आशा पारेख, इन सब के लिए लिखे गए गाने उनकी पहचान बन गई। शमी कपूर का तो कहना ही क्या था, उनके डांस नंबर्स ने यूथ को एक नया स्टाइल दिया।

तो जब बात हो रही है 60s के दशक का, तो उनके गाने आज भी बजते हैं रेडियो पर, टीवी पर दिखाए जाते हैं, शादियों में गाए जाते हैं और नए सिंगर्स उन्हें अपने अंदाज में कवर करते हैं। मतलब वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था, एक अमर याद बन चुका है। संक्षेप में, 60s का दशक भारतीय सिनेमा संगीत के लिए एक स्वर्ण युग था, जिसने भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शुभरात्रि, प्रणाम।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Welcome to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodhanandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस
2: दिस इज रेडियो मॉरिशस।
3: निंग हाओ
4: अस्सलाम वालेकुम
1: किमची मॉरिशस
5: नमस्कार
6: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम
7: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்
8: ரேடியோ மொரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா

0: This is Radio Marxist.
1: 您好。
2: Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodarandariki hrudayapurvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: This is Radio Voices।
2: नमस्कार
3: ஸ்ரோதரந்திரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
4: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
5: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: This is Radio Voices।
2: निंग हाँ, Assalamualaikum।
3: किम चुमरिशियस।
4: नमस्कार।
5: श्रोतरंदर की हृदय पूर्वक नमस्कारम।
6: उंगलाने वरकम वणक्कम।
7: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: दिस इज रेडियो मॉरिशस।
2: अस्सलाम वालेकुम मॉरिशस।
3: नमस्कार
4: श्रोतृंदर की हृदय पूर्वक नमस्कार।
5: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
3: ரேடியோ மாரிஷஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபி கா।